फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूर में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण की अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता तब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम हार्वर्ड के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेलवेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती
0: वंदन वार।

लीजिए सुनिए चिंतन। वाणी में मधुरता, व्यवहार में विनम्रता और हृदय में करुणा, यही सच्चे धर्म की पहचान है। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर प्रसारित किया जाएगा श्री रामचरित मानस गान का भाग 268। संगीत सरिता के अंतर्गत आज सुबह 6:45 पर और शाम को पुनः 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला वर्षा चौमासा। कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल। इसका भाग दो प्रसारित होगा, प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत की। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:00। 7:30 पर हम हेराही प्यार के। सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2:00 त्रिवेणी। आलेख एवं स्वर नेहा आगरकर का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। नए गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर। आज सुबह 9:30 पर और रात्रि 9:30 पर पुनः आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा संगीतकार जयदेव पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज। फिल्म संगीत का दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग दो प्रसारित होगा सुबह 10:00। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 11:00 विविधा में सृजन भारती के अंतर्गत संपन्न कार्यक्रम का संपादित अंश आप सुनेंगे। सहभागी हैं काउंसलर और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुमिति ओझा, प्रोफेसर नयन वर्मा और विभा सिंह। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। यादों की महफिल 12:05 पर और 1:00 आप सुनेंगे सुरीला सफर। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 पर। दिन में 3:00 मनचाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक सुनिएगा तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर की है, रूपांतर जोहरा मिर्जा का है, निर्देशक लोकेंद्र शर्मा। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों की, फिल्म निर्देशक लेखिका नाटककार पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत का भाग 3 प्रसारित होगा। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। शाम 5:00 छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा। 6:35 पर संध्या रंजन। 7:00 सैनिकों की शौर्य गाथा में आप सुनेंगे महावीर चक्र कृष्णा नाइक सोनवणे की शौर्य गाथा। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज, गिटार कलाकार सुनील गांगुली। रात्रि 8:00 हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटक अदाकार, लेखन लक्ष्मीकांत शर्मा, निर्देशन FC माथुर का। रात्रि 9:00 कार्यक्रम आपके लिए। 10:00 छाया गीत, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात और रात्रि 11:00 विविधा का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे थे झरोखा।
लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान में किष्किंधा कांड आज भाग 268।

सुग्रीव को बालीवत के अपने निश्चय का आश्वासन देते हुए श्री राम ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए। जेन मित्र दुख हुई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र का धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से विमुख कर अच्छे मार्ग पर ले जाए। अपनी सामर्थ्य भर सदैव मित्र के हित के लिए कार्य करे और विपत्ति के समय 100 गुना अधिक स्नेह करे। जो सामने तो ठुकुर सुहाती करता है, कोमल प्रिय वचन बोलता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे व्यक्ति का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये शूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। श्री राम के श्रीमुख से मित्र और कुमित्र के लक्षण सुनकर सुग्रीव के मन में वैराग्य का संचार हुआ और उन्होंने सब कुछ त्याग कर आजीवन श्रीराम का सेवक होकर रहने की कामना प्रकट की।

0: आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

प्रस्तुत है श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। इनसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार। वर्षा चौमासा श्रृंखला को लेकर संगीत सरिता कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं शुभा मुद्गल जी के साथ। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: और फिर से हम उसी घटा और बदरिया में खो जाने के लिए उत्सुक हैं। कल आप बात कर रही थी शुद्ध मल्हार की, और उसी समय आपने ये भी कहा था कि मेघ मल्हार भी कहा जाता है।
1: जी।
0: तो ये राग मेघ और मल्हार दो अलग चीजें हैं या दोनों एक ही राग है, या ये इसका क्या स्वरूप है?
1: अक्सर ये माना जाता है कि मेघ और मेघ मल्हार को एक ही राग मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेघ पृथक है, मेघ मल्हार पृथक है, और चूंकि ये कार्यक्रम बहुत से लोग सुन रहे होंगे, गुणीजनों से तो मैं क्षमा मांग ही लूं कि यदि कुछ ऐसा कह दिया जो जिसमें त्रुटि है, और संभव है, संभव क्या मतलब वास्तव में त्रुटियां होंगी ही, तो उनसे मैं पहले से क्षमा मांग लूं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शायद संगीत सीख रहे हों, उनके लिए मैं ये भी बताना चाहूंगी कि गुरुमुख से तो ये सीखा जाता ही है, साथ में अन्य बहुत ऐसे शोध करने वाले लोग रहे हैं, शोधकर्ता रहे हैं, जो कि जिन्होंने मल्हार पे बहुत अच्छे ग्रंथ हाल फिलहाल में भी लिखे हैं। एक ऐसा ग्रंथ है डॉक्टर गीता बैनर्जी द्वारा लिखा हुआ मल्हार दर्शन के नाम से, उसमें उन्होंने बहुत विस्तृत जानकारी दी है कि मेघ और मेघ मल्हार किस तरह से पृथक हैं। मेघ जो है वो प्राचीन रागों में माना जाता है, और इसमें ये ऐसा भी डर रहता है कई बार कि इसमें जो स्वर प्रयोग में आते हैं तो वो कई बार मधमाद सारंग के आसपास भी चले जाते हैं।
0: जी।
1: दूसरी बात ये कि उसमें मेघ मल्हार में दोनों निषाद भी लगाए जाते हैं। फिर मेघ में आंदोलित ऋषभ जो म का एक कण लेके आता है वो बहुत आवश्यक होता है, उससे मेघ

0: शायद ज्यादा महत्व दिया हो, तो उसके हिसाब से भी गाना पड़ता है। यानी मेघ मल्हार की जो शक्ल आपको बताई गई है उसको तो ध्यान में आप रखते ही हैं, साथ में उस शक्ल को भी ध्यान में रखते हैं जो कि रचनाकार ने दी है, जिस जो वाग्यकार ने बनाई है। क्योंकि हर यही तो हमारे संगीत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नजरिए अलग अलग हो सकते हैं। आप एक ही राग को अलग अलग लोगों के अनुभव से देख सकते
1: ये
0: हैं।
1: ये अपनी अपनी प्रतिभा का आविष्कार होता है। जैसे मेघ मल्हार का हम चलन भी सुनेंगे, और जो बात आप कह रही थी कि आंदोलित ऋषभ म का कर्ण लेकर आता है, वो भी तो समझाइए ना।

0: वाह, लेकिन जब केवल मेघ गाया जाए तो उसका चलन भी तो अलग होगा। आप जो बंदिश सुनाने वाली हैं वो मेघ मल्हार में है या मेघ में?
1: जी, मैंने मेघ की एक बंदिश आज प्रस्तुत करने के लिए चुनी है
0: जी।
1: और इसका साहित्य मुझे बहुत मजेदार लगा।
0: साहित्यिक पक्ष तो हमें ढूंढना ही है इसका।
1: देखिए क्या इसमें कहा गया है। देखो माई सावन दूल्हे आयो,
0: सावन को दूल्हा के रूप में। हाँ,
1: तो इसे देखिए क्या धूमधाम है दूल्हे की
0: जी।
1: देखो माई सावन दूल्हे आयो, चार मास को लग्न लिखायो। तो आपकी जो चौमासे की बात थी, आपके जो कार्यक्रम का शीर्षक है उसकी भी बात आ गई।
0: हाँ।
1: कि ये चार दिन की ही प्रीत है, चार मास की ही प्रीत है। तो चार मास को लग्न लिखायो।
0: हाँ।
1: क्योंकि उसके बाद तो फिर हेमंत ऋतु शिशिर इत्यादि सब आ जाते हैं। तो चार मास को लग्न लिखायो, बदरन अंबर छायो, बिजरी चमके बगला बराती। जो पक्षी होता है वो बारात में आया है। बिजरी चमके बगला बराती, कोयल शब्द सुनायो, दादुर मोर पपैया बोले, इंद्र निशान बजायो। तो बैंड की कोई जरूरत नहीं है।
0: इंद्र महाराज, जो इंद्र ही को ये प्रतीक रूप में माना जाता है, और ये कहा गया है कि बरसात के या वर्षा के जो स्वामी हैं, देव भगवान जो कोई देवता है तो वो इंद्र देवता है। तो अब वही है जो बाराती है और वही बजा रहे हैं इसका, तो बैंड बाजे की तो जरूरत,
1: कोई जरूरत
0: है ही
1: नहीं है।
0: और बहुत खूबसूरत सी बात कि बाराती बनकर बगुला आया है। अगर हम देखें तो आज बरसात होती है और अपने पंखों को ऐसे सिकुड़ कर सफेद सफेद रंग के बगुले पेड़ों के ऊपर ऊंचाइयों पर जमे हुए बैठे हुए दिखाई देते हैं
1: जी।
0: तो बहुत ही खूबसूरत ये रचना है और हम इसे जरूर सुनेंगे।

देखो माई, सावन दूल्हे आयो, बंदिश बंदिश के बोल और इसकी रचना, सांगीतिक रचना मन में गूंजती रहेगी जरूर। शुभाजी, हम कल फिर मिलेंगे और श्रोता मित्रों, इसी के साथ आज रुकते हैं। नमस्कार।

0: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संग

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय चैनल
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रूपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाली नियमित मासिक हस्तांतरण की अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किश्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सदो पख्तियार और लोगोच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। पेरू में एक पर्यटक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 13 लोगों की मौत हो गई। विमान में सवार पर्यटक प्रसिद्ध नाजका लाइंस को देखने के लिए हवाई यात्रा कर रहे थे। ये प्राचीन भू आकृतियां हैं जिन्हें पेरू के मूल निवासियों ने सदियों पहले रेगिस्तान में बनाया था। ये विमान पेरू की एयरलाइन एरोडियाना द्वारा संचालित किया जा रहा था और इसने पास के शहर इका से उड़ान भरी थी। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य पदकों समेत कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जसवीन लंबोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगांस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबले में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहेन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रिन मॉर्निंग ड्वेलर को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माही, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मेडिकल सुविधाओं की दृष्टि से जबलपुर को प्रदेश का आदर्श मॉडल बनाया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अब तक 5,24,048 विद्यार्थियों ने कॉलेजों में प्रवेश लिया और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा। प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को भी मिले रजत पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी, जिनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। नीट पीजी 2026 के लिए कुल 273,183 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.5% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। परीक्षा लगभग 340 शहरों और 1300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। प्रदेश में जबलपुर की मेडिकल यूनिवर्सिटी को अब मध्य प्रदेश के एम्स के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल जबलपुर में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन का 11 लाख पौधे लगाने के महाअभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मेडिकल सुविधाओं की दृष्टि से भी प्रदेश का सबसे आदर्श मॉडल जबलपुर में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बाद में मीडिया से चर्चा में कहा कि नगर निगम जबलपुर अगले वर्ष मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
1: जबलपुर को भविष्य में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की दृष्टि से इंदौर, उज्जैन और भोपाल के बाद जबलपुर मेट्रोपॉलिटन बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और उम्मीद करेंगे एक साल के अंदर हम इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में बढ़ाएं। साथ साथ भविष्य में फर्नीचर क्लस्टर या आसपास का इमारती लकड़ी का अच्छा मार्केट भी है, फर्नीचर बनाने वाले अच्छे कारीगर लोग हैं, इसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता, इसलिए फर्नीचर क्लस्टर भी जबलपुर में बनाया जाएगा।
0: उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश प्रणाली ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विद्यार्थी केंद्रित, पारदर्शी एवं तकनीक आधारित प्रवेश व्यवस्था के परिणाम स्वरूप इस वर्ष अब तक सर्वाधिक 5,24,048 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। 31 जुलाई की स्थिति में 2001 महाविद्यालयों में 7,51,123 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया, जिनमें 6,60,981 विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया तथा 5,24,048 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस वर्ष 65,840 अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है, जो 14.4% की उल्लेखनीय वृद्धि है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर रोडमैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कल देवास में बताया कि देवास जिले के लिए यहां की मिट्टी और मिट्टी में मौजूद तत्व, जलवायु और पानी के साथ अनेक चीजों की उपलब्धता को देखते हुए हमने एक रोडमैप तैयार किया है।
3: भारत सरकार का जो कृषि विभाग है उसके सहयोग से यहाँ की मिट्टी, मिट्टी में मौजूद तत्व, यहाँ की जलवायु, पानी और बाकी चीजों की उपलब्धता को देखते हुए आदर्श कृषि कैसे हो सकती है यहाँ और किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है, उसका पूरा एक रोड मैप तैयार किया, उसका एक प्रस्तुतिकरण हुआ है और उसकी सिफारिशों के आधार पर अच्छी किस्म के बीज, फसलों के साथ हार्टिकल्चर के क्लस्टर पर आगे काम करेंगे और फिर उन क्लस्टर में भी एफपीओ और बाकी के सहयोग से प्रोसेसिंग की गतिविधियां शुरू हो, उस पर हमने व्यापक पैमाने पर चर्चा की है।
0: प्रदेश में कल से विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हुई। आगामी 7 अगस्त तक चलने वाले सप्ताह के दौरान विभिन्न जन जागरूकता एवं स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मंदसौर, झाबुआ, आगरमालवा, बैतूल और नीमच सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी कल से विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत कई गतिविधियों का संचालन आरम्भ किया गया। 7 अगस्त तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम इस अभियान के तहत आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर नीति योजना के प्रभाव को और अधिक व्यापक बनाने तथा शेष पात्र पथ विक्रेताओं तथा इसकी पहुंच को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा कल से 15 अगस्त तक विशेष पीएम स्वनिधि पखवाड़ा शुरू किया गया है। यह अभियान प्रदेश के सभी जिलों नगरी निकायों में एक मिशन मोड कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जाएगा। इस अभियान की थीम स्वनिधि से समृद्धि आत्मनिर्भर शहरी मध्य प्रदेश की ओर निर्धारित की गई है। अभियान के माध्यम से वित्तीय समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण, स्वरोजगार संवर्धन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार विवरण के अनुसार मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के ट्राइगन मॉर्निंग डिवेलो को हरा कर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में 5000 मीटर में भारतीय धावक गुलवीर ने कांस्य पदक जीता। पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों के शॉटपुट के F57 वर्ग में सोमन राणा ने स्वर्ण पदक जीता। अन्य एथलेटिक्स स्पर्धाओं में ट्रिपल जंपर प्रवीण चित्रवेल ने रजत पदक और सेल्वा प्रभु ने कांस्य पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। जूडो में सागर की यामिनी मौर्य और वेटलिफ्टिंग में अजय बाबू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बधाई दी है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में आज 24 घंटों के दौरान राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी और श्योपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पिछले 48 घंटों के दौरान मालवा निमाड़ क्षेत्र, विशेषकर इंदौर और उज्जैन संभाग के कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में गायक किशोर कुमार की जयंती के अवसर पर आज से 4 अगस्त तक खंडवा गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा के ग्राम आंवला से चवली तक 4 लेन किए जाने वाले उज्जैन झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग का आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। छिंदवाड़ा जिले में ग्रामीण नल जल योजनाओं के संचालन एवं प्रबंधन विषय पर कल एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैतूल जिला मुख्यालय पर कल कृषि उपज मंडी बड़ोरा में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और मैहर शासकीय संगीत महाविद्यालय में कल मैहर मल्हार संगीत सभा का शुभारंभ किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मेडिकल सुविधाओं की दृष्टि से जबलपुर को प्रदेश का आदर्श मॉडल बनाया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अब तक सर्वाधिक 5,24,048 विद्यार्थियों ने कॉलेजों में प्रवेश लिया। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर, प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को मिले रजत पदक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

शक इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज में गुलजार का लिखा गीत था, तर्ज बनाई थी वसंत देसाई ने। अगला गीत सुनिए उजाला फिल्म से, आवाज है लता मंगेशकर की, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

स्कूल मास्टर इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद के युगल स्वरों में। प्रदीप का लिखा गीत है, वसंत देसाई का ही संगीत।

भूले बिस्तरे गीत कार्यक्रम की अब आखिरी प्रस्तुति सट्टा बाजार फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज में गुलशन बावरा के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

लीजिए, हम हाजिर हैं कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के लेकर। आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। आपको सुनवा रहे हैं सबसे पहला गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ों में, हम राज। इस फिल्म से साहिल लुधियानवी की रचना, तर्ज बनाई है रवि ने।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी, कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आँखों में इशारा हो गया।
4: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार की। अगला गीत रवि के संगीत से सजा साहिल लुधियानवी की रचना है, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज है, फिल्म का नाम वक्त।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: खयाम के संगीत से सजा मजनू सुल्तानपुरी का लिखा गीत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। सुनिए फिल्म का नाम है मोहम्मद, मोहब्बत इसको कहते हैं।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के। मेरी सनम इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वरों में, मजनू सुल्तानपुरी का लिखा गीत है, ओपी नैयर का संगीत।

0: क्षमापण लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: जब जब फूल खिले इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आँखों में इशारा हो गया।
4: छोटी छोटी बातें, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में, शैलेंद्र के बोल अनिल बिस्वास का संगीत।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सहेली से लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई है।

सहेली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की अब यहीं संपन्न होता है।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
3: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
4: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और NEET PG 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
2: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉट पुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जोयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल। रिकॉर्ड शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंके। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today. Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Keralam. Weather department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across 6 districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to 4th position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will launch the nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. More from our correspondent.
6: Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers, youth clubs, schools, colleges, universities, NGOs, youth wings of industry associations and more than 125 spiritual organizations will also join the program virtually. Under the campaign, weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. The activities will include sports events, walkathons, meditation sessions, cultural programs, awareness campaigns, Nukkad Natak's, discussion forums, art competitions and community engagement programs. The initiative aims to inspire youth to stay away from substance abuse and encourage them to become ambassadors of positive social change in their communities. With Soumya Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
5: Prime Minister Narendra Modi has said the potential of youth becomes a driving force only when they find the right opportunities and the right direction to dream big with confidence to realize their goal. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Center, Vivek Smarak, in Mysuru, Karnataka yesterday. The Prime Minister highlighted that today the youth in India are leading the world's third largest startup ecosystem, Atmanirbhar Bharat

लीजिए श्रोताओं, हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। नई सुबह की सुनहरी किरणों के साथ, वैसे बादल भी छाए हुए हैं, कई जगहों पर सूर्य की किरणें भी निकल कर आ रही हैं, लेकिन प्रकृति तो हमारे आसपास ही है, तो इस प्रकृति का मुस्कुराता आंचल आपका स्वागत कर ही रहा है। आइए ताज़ी हवा में गहरी सांस लें, कुछ पल योग और व्यायाम को दें और पूरे उत्साह के साथ इस नए दिन का स्वागत करें। इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम चित्रलोक।

स्पेशल 26 इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। एमएम करीम और केके की आवाज़ों में इरशाद कामिल की रचना थी। संगीत बद इस गीत को किया था एमएम करीम ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले आपको बता दें कि आज है फ्रेंडशिप डे। फ्रेंडशिप डे की आप सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन उन दोस्तों के नाम है जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को मुस्कुराहटों से भर दिया। अगर किसी अपने से कोई गिला शिकवा रह गया हो तो आज उसे प्यार से मिटा दीजिए। एक प्यारा सा संदेश भेजिए या एक फ़ोन कीजिए। समय मिले तो मिलकर आइए, क्योंकि सच्ची दोस्ती से बढ़कर कोई अनमोल रिश्ता नहीं होता। दोस्ताना फिल्म का गीत विशाल डडलानी, श्रेया घोषाल की आवाज़ों में साथियों ने साथ दिया है। अनविता दत्त ने इस गीत को लिखा है और विशाल शेखर ने संगीतबद्ध किया है।

जाने तू या जाने ना, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे दयाल, सतीश, सायोनारा, दर्शना भार्गवी और साथियों के स्वरों में। अब्बास टायरवाला ने इस गीत को लिखा था, एआर रहमान ने संगीतबद्ध किया था। अब वक्त है कार्यक्रम में एक अंतराल का।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ
1: गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम चित्रलोक। हाफ गर्लफ्रेंड इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं एमी मिश्रा और अनुष्का शहाणी की आवाजों में। कुणाल वर्मा ने इस गीत को लिखा है, एमी मिश्रा का संगीत है।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर। अगला गीत द गर्लफ्रेंड फिल्म से हिशाम अब्दुल वहाब की आवाज है। इस गीत को संगीतबद्ध भी हिशाम अब्दुल वहाब ने किया है। गरिमा ओब्राह का लिखा गीत है।

0: जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। पीकू फिल्म का गीत। इस गीत के कलाकार जो हैं, गायक कलाकार, संगीतकार और गीतकार अनुपम रॉय हैं।

श्रोताओं आज 9:30 पर आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा संगीतकार जयदेव पर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले हैं और इस कार्यक्रम को पुनः आप सुन पाएंगे रात्रि 9:30 पर। और हम आपको आगे बता देते हैं कि 10:00 आप पिटारा के अंतर्गत सुनेंगे बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत फिल्म संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग दो प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। और आज सुबह 11:00 विविधा में सृजन भारती के कार्यक्रम के अंतर्गत संपन्न संपादित अंश सुनेंगे। सहभागी हैं काउंसलर और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुमति ओझा, प्रोफेसर नयन वर्मा और विभा सिंह, और इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और अब कार्यक्रम चित्रलोक का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान और मोहित चौहान का गाया, जयदीप साहनी के बोल हैं, सचिन जिगर का संगीत, फिल्म का नाम शुद्ध देसी रोमांस।

0: बड़ी बीमारी हो गई, कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
1: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आंखों की आंखों में इशारा हो गया।
3: श्रोताओं, विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत बेशरम फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की आवाजें। राजीव बंडवाल ने इस गीत को लिखा है, ललित पंडित ने सजाया है संगीत से।

श्रोताओं आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा उजाले उनकी यादों की। फिल्म निर्देशक, लेखिका, नाटककार पद्मभूषण

0: होता है, एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

जयदेव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि संगीत की दुनिया में उनका स्कोर 100% है। आप जयदेव की कोई भी ऐसी रचना नहीं ढूंढ पाएंगे जिसमें उत्कृष्टता ना हो।

0: होता है, एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

गजलें हों या कविताएं, जयदेव की संगीत रचना का विस्तार हर विधा तक पहुंचा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के कुछ पद उन्होंने संगीतबद्ध किए, इन्हें गाया मन्ना डे ने।

0: बिछधारे ना ना ना बिछधारे ना जाओ शाम पैया परू बिछधारे ना जाओ शाम पैया।
1: फिल्म घरौंदा की रचना जो साबित करती है कि आधुनिक ढंग के गीत बनाने में जयदेव पीछे नहीं थे।

जयदेव की संगीत रचनाएं हमें सुकून देती हैं, हमारे मन में शांति का एक राग छेड़ देती हैं ये संगीत रचनाएं।

0: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप सेन साहब। पिछले भाग में हम

0: ने आपके कुछ गीतों पर, आपके संगीत पर चर्चा की थी। तो आइए आज फिर से आपकी संगीत यात्रा पर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिलीप साहब, बात हो रही है आपके संगीत रचना पर। आपने इतने गीत अब तक बना दिए हैं, तो 90 के दशक में आप लोग जब लाइव म्यूजिशियंस और क्रिएटिव सिटिंग्स के जरिए गाने बनाते थे,
1: हाँ।
0: और किसी एक साज वाले से गलती हो जाती थी तो पूरा गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता था, इस
1: जी,
0: तरह से काम हुआ है,
1: हाँ।
0: इसमें क्या तकलीफें आती थी?
1: देखिए, आज जो टेक्निक है, ये क्लिक पे रिकॉर्ड होता है।
0: हाँ
1: पहले वो क्लिक ले लेते हैं, टक टक टक टक, हर प्रोग्राम
2: के विरुद्ध 90% कार्य पूर्ण कर चुका है। सागर जिले में वर्ष 2026-27 में ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द के उपार्जन के लिए राज्य शासन द्वारा उपार्जन नीति में आंशिक संशोधन किया गया है, जिसके तहत मूंग का उपार्जन कृषकों के उत्पादन का 60% तक किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही स्लॉट बुक करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त और मूंग एवं उड़द उपार्जन की अंतिम तिथि 20 अगस्त निर्धारित की गई है। कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा बीते दिनों मूंग एवं उड़द उपार्जन कार्य की समीक्षा की गई। उप संचालक कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि विपणन वर्ष 2025-26 में ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द का उपार्जन कार्य जिले में निर्धारित 22 केंद्रों पर किया जा रहा है। जिले में कुल 17,284 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है, जिसमें 13,995 किसानों द्वारा उपार्जन के लिए स्लॉट बुक किए गए हैं। स्लॉट बुक किए गए किसानों में से 9,269 किसानों से 45,957 क्विंटल मूंग एवं उड़द की खरीदी की गई है। इनमें 38,640 क्विंटल मात्रा रेडी टू ईट ट्रांसपोर्ट होने के उपरांत 31,039 क्विंटल का परिवहन किया जा चुका है। जिले में मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त और सक्रिय है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने निर्देश दिए हैं कि जमीनी स्तर पर सही डेटा एकत्र किया जाए और पोर्टल पर उसकी एंट्री समय पर हो। महिलाओं की प्राथमिक जांच पूरी गंभीरता और पर्याप्त समय देकर करें। पिछले दिनों बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में प्राथमिक स्तर पर गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की समय पर पहचान, स्क्रीनिंग और शीघ्र उपचार की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में सागर, दमोह और पन्ना जिले के 35 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण समन्वयक डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त 35 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अब अपने अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों एवं स्वास्थ्य संस्थानों में महिलाओं की नियमित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करेंगे। इससे रोग की प्रारंभिक अवस्था में पहचान, समय पर उपचार और सर्वाइकल कैंसर से होने वाली जटिलताओं और मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिलेगी। बीते दिनों जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर के प्रांगण में जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी उप निरीक्षकों का दीक्षांत समारोह सम्पन्न हुआ। इस समारोह में 43 नव प्रशिक्षित अधिकारियों ने 2 माह के कड़े बुनियादी प्रशिक्षण के सफल समापन पर राष्ट्र सेवा की शपथ ली। नव प्रशिक्षित अधिकारियों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने विश्वास व्यक्त किया कि वे अपनी संपूर्ण निष्ठा के साथ कानून के शासन को बनाए रखेंगे और राष्ट्र सेवा में उत्कृष्टता का नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। पिछले दिनों युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की जिला सलाहकार समिति की प्रथम बैठक अपर कलेक्टर अविनाश रावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माय भारत की गतिविधियों, वार्षिक कार्य योजना, विभागीय अभिसरण और युवाओं के अधिकतम पंजीयन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी विभाग 7 दिनों में माय भारत के लिए अपने अपने नोडल अधिकारी नामित करेंगे। जिले के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पात्र अभ्यर्थियों का माय भारत पोर्टल पर अधिकतम पंजीयन सुनिश्चित किया जाएगा और प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में माय भारत नोडल शिक्षक और कैंपस एम्बेसडर की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर माय भारत पंजीयन शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में स्वास्थ्य, खेल, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और अन्य जनहितकारी अभियानों में माय भारत स्वयंसेवकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। सागर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे सागर जिले की चिट्ठी, आलेख विनोद आर्य का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण, मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सामुदायिक गान शिक्षण पाठ।

आज हम जो गीत आपको सिखाने जा रहे हैं उसका भावार्थ है, भारतवर्ष सांस्कृतिक दृष्टि से सदा से एक रहा है, आगे भी एक सूत्र में बंधा रहेगा और हम मिलजुल कर देश का विकास करेंगे। विकास के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को हम अपनी एकता के बल पर अवश्य ही दूर करेंगे।

0: क्या होता है, ऐसे ही कोई नहीं स्टार बन जाता, कुछ तो काबिलियत होती है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से लता दीदी का उन्होंने आएगा आने वाले से कई पहले गाने गाए थे, पर जैसे उनका महल का गाना आया तो दीदी को लाइमलाइट में आना था
1: जी,
0: तो आज इसी तरीके से सिंगर की जो जिंदगी है, कोई ना कोई गाना बना देता है,
1: बस उस पल का इंतजार होता है।
0: हाँ।
1: जैसे आपकी जिंदगी बनी सुरमा भोपाली से, आईना से,
0: हाँ, मगर पहचान बनी ओले ओले से।
1: चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
0: एक गाना मुझे आर्य बर्मन जी का, मतलब एक गाना था चिंगारी कोई भर के,
1: अमर प्रेम का,
0: अमर प्रेम का एक गाना है। ये गाना मुझे दिल को इसलिए छूता है कि उसकी जो लय है, चिंगारी कोई, वो इतना लय, दबी हुई लय में गाना है। मगर जो बख्शी साहब ने लिखा, जो किशोरदा ने गाया और जो कंपोज हुआ, मैं समझ रहा हूं कि बस ये आइडियल चीजें हैं, ये हमारी स्कूल है। इसी गाने के हिसाब से मेरा टेम्पो मैंने रखा था, मेरा हम तुमसे ना कुछ कह पाए, हमने भी यहीं से एक टेम्पो लिया था। मैं चाहूंगा कि ये चिंगारी गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: तो दिलीप जी, आपने जैसा कि कहा कि आर डी बर्मन साहब का ये गीत या किशोरदा की आवाज या आनंद बख्शी के बोल, क्या इन सभी लोगों से मिलना आपका हुआ कभी?
1: नहीं, किशोरदा के साथ तो ऐसा है, मेरा मुलाकात, किशोरदा उस वक्त जिंदा थे,
0: और आर डी बर्मन
1: और
0: साहब से या
1: आर डी जी के साथ तो इसने काफी काम किया। किशोरदा का तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक फिल्म थी हमारी, अमित जी गा रहे थे, अमित कुमार।
0: अमित कुमार?
1: तो अमित कुमार क्या किया, हमको नीचे बिठा के काफी देर तक आए नहीं। तो दादा उस वक्त दो बार घूमे, दादा घूमे तो मैं खड़ा होकर उनके पैर छूने के, बोले नहीं, नहीं, नहीं, चंद साहब के लड़के बहुत मतलब, वो जो उनका स्टाइल है, अमित नहीं आए, अमित नहीं आए। इतने में अमित नीचे आए तो उनको बोला, देखो अमित, ये नॉर्मल संगीतकार नहीं है, ये बहुत बड़ा खानदान है, इनको वेट नहीं कराने का, टाइम से रखो। टाइम दिया तो टाइम, अभी इतनी देर से बैठे हैं, नहीं है, आइंदा ध्यान रखना। वो मेरी मिट्टी, और हमारा एक गाना गाने वाले थे सुरमा भोपाली, मगर वो किसी कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं गा पाए, तो फिर वो गाना मोहम्मद अजीज ने गाया। तो ये जो लीजेंड लोग हुए ऐसे ही नहीं हुए। और गाना जब कोई चलता है, मैंने कहा ना कि सिंगर जो होता है वही उसको लेके चलता है, तो जितना अच्छा कंपोजिशन, जितनी अच्छी लिखावट थी, उतनी अच्छी फील भी इस गाने में, जो मुझे तो अच्छी लगी, शायद ऑडियंस को भी लगती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसे गाने हैं जिन्हें कभी भुलाया ही नहीं
1: और
0: जा
1: उसके
0: सकता
1: बाद में
0: है।
1: मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको, बख्शी साहब के साथ जब मैं काम करने लगा, पहली फिल्म उन्होंने की मेरे साथ तू चोर में सिपाही,
0: जी
1: तो जिसका वो गाना था, हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, वो पिक्चर मेरी चली। फिर उसके बाद में एक पिक्चर थी हमारी भीष्मा, तो उसमें गाना उनका, बाकी गाने तो चले मगर एक गाना उनका बहुत चला, वो मेरे सीने में दिल मेरा डोले के पिंजरे में पोपट बोले। क्योंकि मैं देखिए जिन जिन लोगों के साथ मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ, कैफी आजमी साहब के साथ मैंने पिक्चर की थी जाना दिल से दूर,
0: जी
1: और नीरज साहब के साथ मैं पिक्चर की जाना दिल से दूर, विजय आनंद जी की, जो देवानंद जी की लास्ट पिक्चर थी एज ए हीरो, वो
0: हाँ
1: किसी कारण रिलीज नहीं हो पाई। विजय आनंद जी की भी लास्ट पिक्चर थी वो, और जिसमें नीरज साहब के गाने थे, कैफी आजमी साहब के गाने थे, एक गाना था उसमें, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर।

0: गया,
1: बहुत सुंदर
0: था
1: था जी।
0: कदम कदम पर इम्तहान, हर इम्तहान से गुजर गया। ये कैफी साहब का लिखा हुआ था और नीरज साहब का लिखा हुआ था।

0: मेरे नू।
1: क्या बात है।
0: इसका अंतरा सुनिए आप। आंखें बरसे बदरा बरसे, अग्नि ना कोई बुझाए,
1: वाह वाह सुन।
0: हाय।

0: तो ये बहुत भाग्यशाली रहा। फिर मैंने इनके साथ जावेद अख्तर साहब के साथ फिल्म की अर्जुन पंडित, जिसका एक गाना हमारा काफी पॉपुलर हुआ, हर कदम पर कोई कातिल है कहाँ जाए कोई। फिर असद भोपाली साहब के तो साथ की मैंने सुरमा भोपाली, माया गोविंद जी के साथ एक मैंने काफी काम किए, जिनमें एक हमारी पहली सीरियल है जिसको टैप टोन में नंबर वन का अवार्ड भी मिला है, वो थी फिल्म रमेश सिप्पी जी की किस्मत।
1: किस्मत,
0: हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है।
1: गीतकार माया गोविंद के साथ आपने काम किया है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम महिला गीतकार हैं, तो माया गोविंद
0: एक, माया जी के अलावा एक रानी मलिक जी थी,
1: रानी मलिक थी जी,
0: बहुत अच्छी राइटर थी, काफी गाने उनके हिट हुए, मगर उनका एक गाना मेरे साथ काफी बड़ा हिट रहा, वो गाना था फिल्म मेहरबान का, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते,
1: बहुत सुंदर गाना,
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। ये सोनू निगम जी का एज ए सिंगर फिल्म में खुद का गाया हुआ पहला गाना था।
1: अच्छा।
0: इससे पहले उन्होंने अताउला के गाए थे, अच्छा जैसे लादी लिया तूने, रफी साहब के वर्जन गाए थे, मतलब एक होता है ना कि जिस गाने की मोहर लगे कि पहला गाना एज ए सिंगर
1: वो ये था। हाँ, तो क्या अनुभव रहा सोनू निगम के साथ काम करने का? आज तो वो इतने बड़े कलाकार के रूप में है, वो पहला गीत गाते समय क्या उनका वो रहा?
0: नहीं, वो गीत दरअसल उसका था भी नहीं, जब ये क्योंकि सोनू जी वहाँ काम करते थे और बच्चे ही थे, तो गुलशन जी को वो बोलते थे कि यार एक बार मुझे दिलीप सैन समीर सैन के यहाँ साथ में गाना है। तो गुलशन जी आए मेरे पास, बोला यार दिलीप जी एक काम करो, ये गाना जो बन रहा है ये सोनू से गवा लो। मैं कहा सर मिथुन चक्रवर्ती है, आयशा जुल्का, मिथुन जी की चेहरे पर ये आवाज़ थोड़ी पतली लगेगी, मैं जाता हूँ शब्बीर या मोहम्मद अजीज़ कोई हो। नहीं, आप सोनू से गवाइए, बेचना तो मुझे ही है। फिर सोनू ने गाया, सोनू ने इतना अच्छा गाया, और सोनू के अंदर एक बात बहुत अच्छी है, वर्सेटाइल सिंगर तो है ही वो, मगर उसके अंदर एक कोई कुदरत की ऐसा जादू है कि उसको अगर बोल दो ना कि इसके अंदर ये भाव चाहिए तो भाव वो पैदा कर देता था। तो सोनू जी में बात तो है, तभी तो देखो आज सुपरस्टार है वो।
1: जी जी जी, तो एक गाना सुन लेते हैं, और कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है इसी पिक्चर में, धीरे से

0: इतना गहरा अनुभव आपका रहा है, इतने सारे कलाकारों के साथ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सभी के साथ आपने काम किया है और बहुत सफल गाने आपने दिए हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपकी चॉइस या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की चॉइस अलग रही हो और आपको एडजस्ट करना पड़ा हो और कोई फिर एक बहुत ही शानदार गीत निकल कर आया हो?
1: नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत नसीब वाला रहा हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे काम पे के साथ साथ मेरी बातों पे बहुत भरोसा करते थे और उनको ये लगता था कि ये आदमी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा।
0: जी
1: फिल्म लाइन के अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट हैं उनमें 19-20 चल जाता है
0: जी जी
1: कि आप शाहरुख खान लग रहे हो, आप फलाने लग रहे हो, आप बहुत अच्छा गीत लिख रहे हो, ये कर रहे हो, बट सिंगर आप किसी को नहीं बोल सकते। सिंगर जब तक आप सुर में नहीं होंगे तब तक आप यहाँ दिल में नहीं लगोगे।
0: सही क्या?
1: दुनिया में अगर कोई सुकून की चीज है जो बगैर पैसे के मिलती है वो है संगीत और वो है गाना। अगर आपके मिजाज का गाना अगर आपको मिल जाता है, आप गाते हैं तो हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सुनने को भी अगर आपको मिल जाता है तो भी आपको सुकून मिलता है।
0: जी,
1: तो इसमें आप

0: नहीं बोल सकते, तो ऐसा क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट है राइटर के लिए जो मुझे देते गए, मैं आज भी किसी को नहीं बोलता हूँ कि फलाना राइटर है या फलाना। सिंगर के लिए जब मेरे पास कोई बात आती है तो मैं जरूर कह देता हूँ कि भाई मुझे सिंगर वो दो जो मुझे समझ सके और मैं उसे समझ सकूँ, क्योंकि मेरी कोई जाति दोस्ती या दुश्मनी तो होती नहीं सिंगरों से। मैं सुन लेता हूँ, हाँ इस बच्चे में ये टैलेंट है, अच्छा कोई 19-20 होता भी है सिंगर तो हम उसको सपोर्ट करके बाकायदा वहां तक पहुंचाते।
1: तो दिलीप सेन साहब, जब आज के समय में तो ऐसा हम सुन ही रहे हैं कि ऑटो ट्यून जो टेक्निक आ गई है, वहां थोड़ा सा आवाज 19-20 को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जिस समय आप संगीतकार बने थे, जब कड़ी मेहनत का जमाना था, रियाज का जमाना था, क्या कभी कोई कलाकार की आवाज 19-20 हो जाती थी? क्योंकि आपने तो बहुत सारे
0: नहीं,
1: कलाकारों के साथ काम किया है।
0: मैं बहुत नसीब वाला रहा हूं कि देखिए, कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम, सुनिधि, अपना जसविंदर नेरुला, ऋचा शर्मा, अपना
1: अनुराधा
0: अनुराधा
1: पौडवाल जी
0: जी,
1: हैं, अलका याग्निक।
0: अलका जी, साधना सरगम जी, कविता जी, ये पंकज उदास जी, और मना अपना पंकज के अलावा मेरे साथ विनोद राठौड़ जी, मुकेश जी, नितिन मुकेश है, मोहम्मद अजीज है, शब्बीर जी, अनवर, इवन अपना शंकर महादेवन, अपना ये क्या बोलते हैं सुखविंदर, बाली ब्रह्म भट्ट,
1: अरे क्या
0: जॉली
1: बात।
0: मुखर्जी, ये जितने सिंगर मुझे जिस वक्त मिले, पैमिला जैन, अपना सुषमा श्रेष्ठा जो,
1: पूर्णिमा के नाम से
0: पूर्णिमा
1: हैं।
0: जी, और कोई सिंगर छूट नहीं जाए भाई, किसी को बुरा ना लग जाए, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट श्वेता सेट्टी, ये जितने अलीशा चिनोई, मुझे जितने भी सिंगर मिले या जिनके साथ काम करने का मौका मिला, वो चित्रा जी और हरिहरन जी, ये इन्होंने मुझे हद से ज्यादा प्यार दिया, और मेरी गरिमा को या मेरी पोस्ट को एक रिस्पेक्ट दी जो मैं चाहता था, वो उस वक्त वैसा ही करते थे, चाहे वो कुमार सानू जी रहे हो, सोनू जी रहे हो, क्योंकि नो डाउट जब ये कोई भी गाना बनता है तो वो नया होता है, शब्द भी नए होते हैं, धुन भी नई होती है। अब सिंगर क्या होता है कि सिंगर जब आता है तो ये लोगों की एक बड़प्पन ये रहा है कि जब ये मेरे पास आते हैं तो ये सिर्फ मेरे लिए ही आते हैं, सुरेश वाडेकर जी हुए, फिर वो उस दिन दूसरा कोई काम नहीं लेते हैं,
1: जी
0: वो इसलिए नहीं लेते कि भाई दिलीप सेन के यहाँ कितना टाइम लग जाए, और ऐसा नहीं कि मैं सिंगर को कोई तंग करता हूँ,
1: नहीं, वो
0: उनको
1: बात नहीं है, वो
0: वो उनको
1: रिस्पेक्ट
0: पता है कि एक ड्यू रिस्पेक्ट
1: और
0: कि
1: कला
0: यार
1: के
0: वहां
1: प्रति,
0: जाएंगे तो वो भागने का काम नहीं करना
1: और
0: है,
1: कला के प्रति समर्पण।
0: समर्पण के नहीं यार, वो जब तक दिलीप सेन, समीर सेन मुतमिन नहीं होंगे, जब तक वो परफेक्ट नहीं बोलेंगे, हम उनके यहाँ से दूसरा गाना गाने जाएंगे नहीं।
1: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल, सुनिए।
1: कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है जो दीदी ने मेरे दिल से गाया था, होठों पे बस तेरा नाम है,
1: तुझे चाहना मेरा काम
0: काम
1: है,
0: है जी।
1: फिल्म ये दिल लगी का गीत, बहुत सुंदर गीत है
0: जी
1: दिलीप
0: जी
1: सेन
0: जी
1: साहब
0: जी
1: ये,
0: जी
1: तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आपका परिवार संगीत सम्राट तानसेन की परंपरा से जुड़ा हुआ रहा है और
1: नहीं, हम केसर सेन की औलादे हैं, मतलब केसर सेन जी उनके शिष्यों में गिने जाते हैं
0: जी, तानसेन के शिष्यों में गिने जाते थे। तो और आपके पिता जमाल सेन साहब भी जाने माने संगीतकार रहे और आपके घराने की जो विरासत के कारण आपके गानों में एक जो इंडियन क्लासिकल बेस और पक्के सुरों की जो गहरी समझ दिखाई देती है आपके गीतों में, आपकी संगीत रचनाओं में। लेकिन साथ ही हमने देखा कि आपके कुछ गानों में देसी तरीका भी अपनाया गया है, जहां पर टेबल पर धुन थपथपाते हुए भी गीत कुछ आए हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे है?
1: नहीं देखिए, एक चीज याद रखिएगा, फोक जो है अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि फोक कहते हैं किसको है
0: जी।
1: फोक कहते हैं आमद को, एक चीज आमद होती है। तो इसी तरीके से हमारी जो माताएं बहनें उस जमाने में, आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गढ़रणत भवन सुं आयो विनायक, करो ये नसीती विन धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारिया जी। वो इस तरीके से करके जॉइंट करती थी, रहती थी। तो वहां से ये फोक ट्यूने निकली। जैसे रेशमा जी के लिए कहते हैं कि रेशमा जी ने फोक से ही शुरुआत की, और वो भी राजस्थान से हैं, मेहंदी हसन साहब भी राजस्थान से हैं। तो जितने भी लोग राजस्थान के कल्चर में पैदा, क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, इनका सबका एक अपना कल्चर है। और फोक जो है, फोक हमारी आत्मा है, क्योंकि हर जगह राग तो चलती नहीं है, तो फोक ही होता है। मगर फोक कहीं ना कहीं, फोक में क्या होता है कि उतार चढ़ाव नहीं होता, वो एक ही ट्यून होती है, वो एक ही जैसे सा है तो उसी सा में चला जाएगा वो। फिर उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे करके कर लो, तो हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने भी जैसे के
0: कई गीतों में आपने ही प्रयोग किया?
1: नहीं, पर मैंने एक, मैं बहुत अविनाश करके हैं, गुजरात के बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं
0: जी,
1: जिनका काफी हिट गाने हिट हुए। उनका एक गाना था, मैं किया ते गामना गोरी राज अचको मचको कारेली। हमने थोड़ा सा उनसे एडॉप्ट किया उस गाने को, मेरी चोली के टूटे सब धागे अचको मचको का करुणा। तो ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत फोक का सहारा ले लेते हैं, बट कोशिश ये करते हैं कि अपनी ज्यादातर की कंपोजिशन खुद की हो,
0: कहीं से उठाकर नहीं ली गई हो, ताकि वो
1: फोक तो आप किसी का भी ले सकते हो। अब नौशाद साहब का अमूमन ज्यादातर के अगर गाना सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फोक चुने के आसपास के नजर आएंगे, बाकी वो अपनी कंपोजिशन करते हैं। वैसे नहीं, नैयर साहब हुए, उन्होंने पंजाब के फोकों को काफी इस्तेमाल किया, तो वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर को हम उठा के दे रहे हैं। अरे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, जहाँ हमें हर प्रांत की भाषा, हर प्रांत का पहनावा, हर प्रांत का संगीत, हर प्रांत का खाना पीना, इतनी वेराइटियां दुनिया में कहीं नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इसलिए हमें तो गर्व है इस बात का कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतवर्ष में पैदा हुए हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो आप काम ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी के अंदर कुछ अच्छी बातें जाए। आप काम ऐसा करो कि लोग बाग आपको जब भी बाजू में से निकले तो लोगों में बोले, नहीं आ रही है ये दिलीप सेन जा रहा है, या नहीं आ रहा है ये दिलीपिया जा रहा है, ऐसा नहीं, ये दिलीप सेन जी जा रहे हैं या दिलीप जी जा रहे हैं। आपके नाम के आगे पीछे जी लगना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: जी तब लगेगा जब जी वाला काम, दूसरों का दिल जीतोगे
0: जी। चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं, कौन सा गाना?
1: अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते,
0: बहुत सुंदर गाना,
1: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
0: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आपकी पांचवी पीढ़ी फिल्मी दुनिया में कदम रख रही है और आपको दादा साहब फाल्के जनरेशन पुरस्कार 2012 में मिला, इसके बारे में हम जानना चाहते।
1: देखिए, दादा साहब फाल्के के लिए मैं क्या बोलूंगा, पूरी दुनिया जानती है कि पितामह रहे हैं
0: जी,
1: जिनकी वजह से आज हम सब रोटी खा रहे हैं। उनके नाम का अगर आपको कोई छोटा सा पर्चा भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चार जनरेशन को मिला था, मतलब जमाल सेन से सोहेल सेन तक,
0: अच्छा,
1: चार पीढ़ी को के एक सम्मान मिला कि भाई इतना लंबा मतलब
0: सफर
1: जो कपूर खानदान का रहा है या सेन परिवार का
0: जी,
1: संगीत में रहा
0: जी,
1: है।
0: जी,
1: और पांचवी पीढ़ी में अभी मेरा पड़पोता समर जो सोहेल का बेटा है।
0: अरे वाह, मतलब सोहेल तो आ ही गए हैं, सोहेल सेन के बेटे भी आ गए
1: बेटे भी
0: हैं।
1: आने वाले हैं अभी जल्द। जी
0: जी, तो बहुत ही शुभकामनाएं हैं आपको और आपके परिवार को। और नए गायकों, नए संगीतकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, जितने जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरा उन लोगों से एक ही कहना है कि देखिए, इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को देख के और उसकी चीज की तारीफ करके आप उस जैसा मत बनो, उसके साथ कोई मिलती जुलती सी चीज अगर आप बनाते हो तो उसमें आपकी अलग एक तारीफ बनती है। और हमें अपना जो हिंदुस्तानी संगीत है उसको खोना नहीं है, जो आज लुत्फ होते जा रहा है। मगर मुझे उम्मीद है कि शायद ये नई जनरेशन जो आ रही है, हमें थोड़ा संगीत सीखना चाहिए, संगीत की मालूमात रखनी चाहिए, शायरी की मालूमात रखनी चाहिए, कविताओं की मालूमात रखनी चाहिए, भाषाएं में जिनमें देखिए कविताएं आनी चाहिए, शायरी उर्दू। जरूरी नहीं है कि आप उर्दू पढ़ें, मगर कम से कम जैर जबर तो हो, आप तलफ्फुज तो सही करा सकें। तो ये जो चीजें हैं सिंगर के लिए भी जरूरी है, म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी जरूरी है। आप जरूरी नहीं है कि 100 रागे हैं या 50 रागे हैं या बेसिक दो चार पांच, क्योंकि आजकल भैरवी, यमन कल्याण, भोपाली या पहाड़ी या समझो शिवरंजनी, इस टाइप के जो चार पांच रागे हैं वो थोड़ा बहुत उसका अनुभव हो, कॉर्ड से गाना बनाइए, मगर कम से कम आप अपनी मेलोडी को मत जाने दीजिए, जो आपकी धरोहर है
0: उसे रखिए,
1: उसे आप कायम रखिए। क्यों कि आज हमारा हिंदुस्तान जो हमारी सभ्यता से ही पहचाना जाता है,
0: जी,
1: हमारी संस्कृति से हमारा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, हमारी पूजा पाठ से, हमारी इबादत से हिंदुस्तान पहचाना जाता है, क्योंकि हम अनेकता में एकता में पहचाने जाते हैं कि हमारे सर्वधर्म सम्मान है। हम हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हर संगीत की हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे यहाँ जितने प्रांत है उतना ही हमारा अलग अनूठा संगीत है, प्यारा संगीत है। आप किसी भी प्रांत का संगीत ले लीजिए, आपका दिल खुश होगा, पूरा प्यारा सा गुलदस्ता है हमारा संगीत का।
0: बिल्कुल सही कहा। बस जाते जाते एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं।
1: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है, मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
0: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दिलीप सेन साहब, जाते जाते कि आप एक शास्त्रीय बंदिश हमें अगर सुना दें तो हमारे श्रोता भी खुश।
1: मैं आपको एक वो चीज सुनाने जा रहा हूँ कि जो आज तक शायद आप लोगों ने नहीं सुनी हो।
0: जी,
1: शिव तांडव तो आपने सुना ही है। जैसे कि जटा कटा जटा टच प्रभावता वितस्थले वीरो विलंब विलंब बुदंग तुंग मार जटा टवि गल ज्वल प्रभाव वितस्थले, ये शिव तांडव हो गया
0: जी।
1: कि हनुमान तांडव जो है कि हनुमंत के लपेट दिल अंगूर के झपेट दिल दुष्ट को।

0: ලෙදර පෙට චකලන්න බජනක චරත දත කොත කටකට කිරිසෙන පොට පොට පොටි පොටි පාන කපි කුහ කිල්ල කර කිල්ල ජුහ ජිල්ල කර පඩි පිළි බිල්ල කර කට රක දෙනින්ද තහෙතේජ කො කුමාර කරි කො බෙසුමාර විර ලකන කුමාර ජුකි ජරි කිරවන් පෙර සුතරම කො උජරු රකුමස කො අනියරු ජන පෙජ මහ ගුරු රණ කො රකු කුල මණ්ඩල ප්‍රචණ්ඩ බැරි දන්න මුන දන්න උමන නසකන නහ කල කො බුබත සරත කො න වෙලෝ අල බෙලෝ න රෙලු රූප රෙලු චල රක සනි කර කො ආනසක්ත කිරිත උමන්ඩි කල ගනි ජන්ඩි පති සෝ කමන්ඩි කුල කන්නේ දිනේ කර කො ඒ ඉස් තරිකේ සේ පුරා හනුමාන් තාණ්ඩව
1: හැ
0: जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है जो मेरी आवाज में रिकॉर्ड है और इसी से ये जो रैप बना है वो बोलते हैं ना लोग प्रदेश का है कहीं का नहीं, ये हमारे छंद है आज से 10,000-20,000 साल पहले के ये छंद है जो हम डांस में यूज करते हैं इसे तूने मुझे देखा नहीं मैंने तुझे देखा नहीं चाय भी पिलाऊंगा खाना भी खिलाऊंगा चले मेरे साथ तेरे बाप को मिलाऊंगा
1: अच्छा
0: इससे आप कुछ भी रैप बना सकते हैं तो ये रहा और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के इसलिए आपके पूरे परिवार को आकाशवाणी को विविध भारती को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां नमस्कार
1: बहुत खूब और आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया इसके लिए आपका तहे दिल से विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार
0: धन्यवाद
2: तो ये था संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग संपादन सहयोग अंबालिका सिंह विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

0: विविधा के सभी सुनने वालों का स्वागत है। दोस्तों, आज के विविधा के अंक में प्रस्तुत है सृजन भारती के अंतर्गत संपन्न हुए कार्यक्रम ए जिंदगी गले लगा ले, इसके संपादित अंश। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे प्रोफेसर नयन वर्मा, समुपदेशक एवं मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक डॉक्टर सुमति ओझा और फिल्म लेखिका विभा सिंह।
1: नमस्कार, सृजन भारती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो सृजन भारती है उसका शीर्षक है ए जिंदगी गले लगा ले। आम जिंदगी में जो तनाव होते हैं और दबाव होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और ये सब सोचते हुए आज का ये विषय रखा है ए जिंदगी गले लगा ले। मैं सबसे पहले मेहमानों का परिचय कराना चाहूंगा। हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर नयन वर्मा। प्रोफेसर नयन वर्मा फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और संगीत में भी उनकी बहुत ज़बरदस्त दिलचस्पी रही है। 1993 से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और 11वीं और 12वीं के छात्रों को नीट और जेई मेंस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। उसके अलावा डॉक्टर सुमति ओझा मौजूद हैं जो कि बहुत जानी मानी काउंसलर हैं और पिछले कई सालों से इस दिशा में काम कर रही हैं। मुख्य अतिथि विभा सिंह हैं जिन्होंने हीरा मंडी जैसी सीरीज लिखी है और इसके अलावा और भी बहुत सारे फिल्मी दुनिया से जुड़े काम किए हैं। आज ममता झा मौजूद हैं, इसके अलावा बहुत सारे हमारे साथी मौजूद हैं, तो हम आपस में बातचीत करेंगे, सवाल करेंगे और चीजों के निदान भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अब ममता सिंह के हाथों ये मंच और ये माइक्रोफोन।
2: नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से। हम सबसे पहले डॉक्टर सुमति ओझा से हम जानना चाहते हैं। सुमति जी, बताइए कि आजकल लोग समाज में शारीरिक स्वास्थ्य पर तो चर्चा करते हैं लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को जैसे इग्नोर कर देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचना उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
3: आपका सवाल बहुत ही एप्ट है। मतलब आज के जमाने में हम देखते हैं कि लोग अपना सिक्स पैक दिखाने बहुत आसानी से बाहर निकल के दिखाते हैं, लेकिन जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम है जी, तो उसे छिपाते हैं
2: जी।
3: सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ये जो थॉट प्रोसेस है ये बदल रहा है, थैंक्स टू दीपिका पादुकोण, क्योंकि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है फिल्मी दुनिया में, मानती हूँ,
2: और चर्चित
3: और मेरी फेवरेट भी है। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने कहा वाह, ये कुछ इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया सोसाइटी की तरफ। और साथ में उनकी माता जो है, मम्मी जो बैठी थी, उनके चेहरे की तरफ मैं देख रही थी जब वो अपनी कहानी बता रही थी। इट नीड्स, मतलब एक स्ट्रेंथ चाहिए, जिससे कहते हैं ना कि एक आत्मशक्ति टू टेल और ये बताना और पब्लिक डोमेन में रखना कि मेरी बेटी इस प्रकार से, इस दौरे से गुजर रही थी। वो उन माओं में से नहीं थी जो ये कहे कि तुम ये बताओ मत वरना आपके करियर को क्या होगा, आपसे शादी कौन करेगा, ये सवाल उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आया। उन्होंने बेधड़क इस बात को एक्सप्रेस किया और ये बताया कि जब कभी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसके लिए अगर सहारा या हेल्प या जो कहो, एक्सपर्ट ओपिनियन जो आप ले सको, तो उसे एज अर्ली एज पॉसिबल, जिसे कहते हैं कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ये कहावत है इंग्लिश में, तो जल्द से जल्द उसका एक उपाय ढूंढ लो। और आई थिंक उसके बाद बहुत से लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर भी ये बताना शुरू कर दिया कि वो भी इस प्रकार से, इस तरह के डिप्रेसिव फेज या जो भी इमोशनल इश्यूज है, इसको बताने में वे झिझकते नहीं थे।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मानसिक स्वास्थ्य पढ़ाई से सबसे ज़्यादा खराब होता है, कमज़ोर होता है, और PCM फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे घबराते हैं और यही करियर का बेस भी होता है। और हमारे साथ फिजिक्स के प्रोफेसर नैन वर्मा जी हैं, तो हम नैन जी से पूछना चाहते हैं कि फिजिक्स को लेकर लोग बहुत घबराते हैं स्टूडेंट्स, और उनके मन में होता है कि फिजिक्स कैसे करें कि रटना ना पड़े।
4: इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप साइंस लेते हैं सो बेसिकली आप शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड से ही अपना मन बना चुके हैं कि मुझे साइंस लेना है, तो मेरे हिसाब से पहले तो आप मेंटली तैयार होके आते हैं
2: जी।
4: तो जब आप 8th या 9th स्टैंडर्ड में होते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कभी कि आप मॉब साइकोलॉजी की वजह से आ रहे साइंस में, लेकिन अब जब आपने साइंस लिया है तो देयर इज नो टर्निंग बैक। तो उसकी पढ़ाई कितनी डिफिकल्ट है ये आपको पहले से ही समझ के आना है। अपने स्कूल लेवल पे फिजिक्स थोड़ी इंटरेस्टिंग बनानी चाहिए, बिकॉज बच्चे बहुत वीक बैकग्राउंड के साथ आते हैं, सॉरी टू से, बट जब हम बच्चों को 11th 12th में पढ़ाते हैं तो 8th 9th 10th में फिजिक्स ऐसे पढ़ाया जाता है कि जो जब बच्चा रियली में साइंस लेता है तो उसको 11th और 12th में जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है जैसे स्पेनिश या तो जर्मन पढ़ रहे हैं। तो अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 6th या 7th स्टैंडर्ड में उसके फिल्टरेशन हो जानी चाहिए कि जो बच्चे साइंस पढ़ना चाहते हैं आप उनको सिर्फ साइंस पे ही फोकस करने दीजिए। अभी जैसे उनको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, सिविक्स पढ़ाते हैं, अगर कोई सोशियोलॉजी लेना चाहता है तो आप उसको फिजिक्स बायो केमिस्ट्री मत पढ़ाइए। तो मेरे हिसाब से ये जो फिल्टरेशन है, अगर मेरी बात एजुकेशन मिनिस्ट्री तक पहुंच रही है तो जो भी ये फील्ड में एक्सपर्ट्स है वहाँ तक पहुँच रही है। तो अभी जैसे NEPR है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें अपने यहाँ पे बहुत ब्रिलियंट लोग हैं जो इसके बारे में सोच सकते हैं। डेफिनेटली इट इज़ वेरी सैड पार्ट ऑन आवर सोसाइटी कि ये एज में बच्चों को काउंसलर्स की ज़रूरत पड़े। मेरे हिसाब से ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, और उसके लिए अपनी सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए। इंडिया इतना बड़ा देश है, अपने स्टूडेंट्स की बाहर डिमांड है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि वो बच्चे वापस क्यों नहीं आते जब US जाते या जो भी है। तो मेरे हिसाब से इसकी रेक्टिफिकेशन स्कूल लेवल से होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक्स ऐसे डिज़ाइन होनी चाहिए कि जब बच्चा PCM या तो PCB लेता है तो उसको फिजिक्स में डर नहीं लगना चाहिए। और एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, आपने सिर्फ PCM की बात कही, PCB और PCM नीट के बच्चे और JEE मेंस के बच्चों का फिजिक्स का पोर्शन अलग होना चाहिए। अभी जो बच्चे इंजीनियर्स बनना चाहते हैं उनको आप मशीन्स सिखाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाओ, ये सब बातें परफेक्ट है, लेकिन जो बच्चा नीट पढ़ता है आप उनको ये सिखाओ कि थर्मोमीटर कैसे यूज़ करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर यूज़ कैसे करते हैं, लेज़र कैसे यूज़ करते हैं, इकोकार्डियोग्राम क्या होता है, MRI मशीन क्या होती है, CT स्कैन मशीन क्या होती है। ये बच्चे जब फर्स्ट ईयर MBBS में जाते हैं तब ये मशीन देखते हैं, उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता है, तब जाके वो सीखते। तो मेरे हिसाब से स्कूल लेवल पे इसकी रेक्टिफिकेशन करनी चाहिए।
2: यहाँ पर हम आपसे ही ये जानना चाहते हैं नयन जी, तो ये जो दोहरी पढ़ाई का प्रेशर है तो इसके बारे में आप कुछ कहिए कि क्या पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है।
4: अगेन यहाँ पे एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप उनको ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के तौर पे और उनके मार्क्स के ऊपर अगर आप एडमिशन दे रहे हैं तो आपको उनका बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर कम करना चाहिए। और अगर उनको बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स के ऊपर ही अगर एडमिशन दिया जाए तो ऑब्जेक्टिव अभी दोनों चाहिए। तो एक बात समझनी चाहिए कि साल में 365 डेज ही होते हैं, हम लोग एक टेंडर एज के साथ डील कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा मासूम होते हैं, उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये डबल प्रेशर है। जब हमारे टाइम पे जब पढ़ाई होती थी तो 11th 12th के मार्क्स पे एडमिशन्स होते थे, तभी भी लोग इंजीनियर बनते थे, तभी भी डॉक्टर बनते थे, अभी इनफैक्ट वो लोग बहुत ही सक्सेसफुल है सोसाइटी में। तो ऐसा बिल्कुल मानने की ज़रूरत नहीं है कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देंगे तो ही बच्चा एकदम स्मार्ट है। हाँ, आप बिल्कुल सिलेबस ज़्यादा रखिए, लेकिन बच्चे दोनों जगह पे पिसते हैं, ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। अभी के एजुकेशन सिस्टम बोलूँ तो 11th 12th का पोर्शन साथ में होता है, बोलने को 24th मंथ्स है लेकिन बच्चों को मिलते हैं सिर्फ 18 महीने। उसमें टीचर्स पे भी ये प्रेशर रहता है, उनको पोर्शन ख़त्म करना होता है, बच्चों को छुट्टियाँ नहीं मिलती है। बाद में जैसे दिसंबर मंथ आता है उनको जनवरी फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन करना होता है, तभी उनका बिल्कुल टच छूट जाता है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम से। वापस बच्चे जब मार्च में ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई शुरू करते तो पूरा मोमेंटम चला जाता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चे ना यहाँ के रहते ना वहाँ के रहते, तो ये मैं बिल्कुल ये बात से इत्तेफाक रखूँगा कि दो में से एक जगह पे प्रेशर काम होना चाहिए उनको।
2: सही बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। अब हम सुमति जी के पास आते हैं। सुमति जी, हमें बताइए कि परीक्षा के दौरान, परीक्षा के कारण स्टूडेंट्स को घबराहट, टेंशन, डिप्रेशन होता ही है, साथ में पेरेंट्स को भी होता है, तो ये कई बार बच्चों को पैनिक अटैक आता है, तो इसको कैसे दूर किया जाए और माता पिता की, पेरेंट्स की, घर वालों की क्या भूमिका होती है उस समय?
3: सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आई एम श्योर कि काफ़ी पेरेंट्स चौंक जाएंगे कि इनका जो 50% स्ट्रेस है ये पेरेंट्स की तरफ से आता है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है।
2: बिल्कुल,
3: ये कहना गलत होगा कि सिर्फ बच्चे स्टडीज की वजह से पैनिक अटैक आता है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन. और घर पर जो हम वो माहौल क्रिएट करते हैं
2: जी.
3: जो हम बातें करते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस उन्हें बताते हैं, वो जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ बच्चों को हम ये कह दें कि तुम अपना बेस्ट दो और बाकी का छोड़ दो, तो आई थिंक उन्हें भी ये एहसास हो जाता है कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो घर से तो कोई ओपोजिशन नहीं आएगा. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. समाज और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ये दूर की बात है, लेकिन घर पर स्पेशली फादर, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि काउंसलिंग के दौरान जब मैं बुलाती हूँ तो सिर्फ मदर आती है, फादर नहीं आते हैं.
2: अच्छा.
3: क्योंकि वो जानते हैं कि देयर विल बी अ लिस्ट और वो चेंज होना नहीं चाहते हैं. और मैं बच्चों की तरफ हूँ बिकॉज दे आर सो इनोसेंट, दे आर रेडी टू चेंज. और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पेरेंट्स बदलना नहीं चाहते हैं. वो अपनी रिजिडिटी के साथ चलते हैं और वो कंपेयर करते हैं और ब्लेम गेम शुरू होता है घर में. देयर इज नो कॉमन मैसेज फ्रॉम मदर एंड फादर. एक कहता है बेटा चलेगा जो भी हो, दूसरा कहता है कि नहीं, अगर तुमने ये पढ़ाई नहीं की तो तुम्हें ये कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा,
2: बिल्कुल
3: तुम डॉक्टर नहीं बनोगे. तो हमारे घर पे ऐसा हो जाता है ना कि हम बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, उन्हें बनने नहीं देते हम. वी आर ऑलवेज क्रिएटिंग कि आप डॉक्टर बनो और ये बनो वो बनो. तो आई थिंक समवेयर देयर इज, मतलब वो कहते हैं ना इंटरेस्ट का क्लैश हो रहा है. और आप कहेंगे कि द थ्री इडियट फिल्म वॉज द बेस्ट फिल्म दैट रियली डिपिक्टेड कि किस तरह से आप उनके इंटरेस्ट को आप बदलना चाहते हो और किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. तो आई वुड से कि घर पर जो पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, स्पेशली अगर कोई प्रॉब्लम अगर घर पर दिखता है तो. एटलीस्ट वंस अ मंथ पेरेंटल वर्कशॉप्स, टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स, ये ज़रूरी है. क्योंकि क्या है ना कि हम पेरेंटिंग ये एक स्किल है
2: जी.
3: जैसे एक सर्वाइवल किट होता है तो ये भी एक स्किल्स किट है. हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया. अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इंफॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन अराउंड. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत ज़रूरी है. वंस पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह से एक रैपो रखना है, किस तरह से इनके साथ बात करना है. आप एक 2 साल के बच्चे के साथ जैसे व्यवहार करते हो आप 5 साल के बच्चे के साथ नहीं कर सकते. आप 15 साल के बच्चे के साथ उस तरह से नहीं कर सकते. तो हाउ टू हैंडल दीज इश्यूज ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी.
2: बिल्कुल.
3: क्योंकि एक टीचर आज सिर्फ 20-25 स्टूडेंट्स के साथ नहीं रहती है.
2: जी जी.
3: क्लास में आई थिंक देर आर अबाउट 80, 90, 100, 120. किस तरह से वो उन्हें हैंडल करे और किस तरह से पहचाने कि इसको कोई प्रॉब्लम है.
2: जी.
3: इट्स वेरी इजी कि आप डिस्टर्ब करते हैं क्लास में तो टीचर कहती है काउंसिलर के पास चले जाओ. बच्चा आता है और सोचता है कि मैंने क्या किया. He doesn't know कि क्यों मुझे भेजा गया है. और वो तो टीचर के बारे में बोलना शुरू कर देता है. आपको पता नहीं टीचर कैसी है, उसी का काउंसलिंग करो. और अक्सर मैं
2: सही बात है, बिल्कुल.
3: और कभी बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं कि मैम मेरे पेरेंट्स ना उनकी काउंसलिंग करो आप पहले, सबसे पहले, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा. और मैं उन्हें बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं जब पेरेंट्स को बुलाती हूँ तब मुझे दिखता है साफ
2: जी.
3: कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है. सो आई एम फीलिंग दैट द चाइल्ड इज अ पुअर विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस
2: जी.
3: और जब मैं पेरेंट्स को बुलाती हूँ मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. क्योंकि सबसे पहले वो चेंज होना नहीं चाहते, वो बहुत बड़ी लिस्ट लेके आते हैं और मैं कहती हूँ कि वो लिस्ट को आप मत दिखाओ मुझे
2: जी.
3: आप ये बताओ मुझे कि आपके बच्चे के कुछ 5 अच्छी क्वालिटीज क्या है. और वो नहीं बता पाते हैं.
2: क्या बात है ये तो
3: सोचने लगते हैं
2: बिल्कुल
3: और जब मैं कहती हूँ कि आप मुझे पांच इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताइए तो दोनों मिलके शुरू हो जाते हैं कि आपको पता नहीं ये कैसा है आपको पता नहीं ये क्या नहीं क्या बोलता है और बच्चा मेरे सामने देखते रहता है यू नो और फिर मैं उसको अलग से बुलाती हूँ और फिर आई हैव टू काउंसल हिम कि ये माँ बाप ऐसे ही होते हैं डोंट वरी एक फेज है निकल जाएगा तो मुझे ये करना पड़ता है
2: तो एक नई बात सामने आई है सुमति जी ने कहा कि टीचर्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं तो नयन जी आप बताइए इस बारे में आप क्या कहेंगे
4: यहाँ पे ऑडियंस में मेरे स्टूडेंट भी बैठे हुए तो मैं जब तक जानता हूँ मेरा हमेशा स्टेटमेंट यही होता है कि मैं एक 45 years plus, 50 years plus professor हूँ तो मैं expect नहीं कर सकता कि 16-17 साल का बच्चा मेरी maturity पे आके सुनेगा मुझे तो मुझे उसके जैसे बच्चे बन के पढ़ाना होता है और जितने भी मेरे students हैं वो ये पक्का जानते हैं कि नयन सर एकदम हंसते खेलते पढ़ाते हैं डांटते हैं उनका गुस्सा शायद 30 सेकंड का होता है और उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अभी 30 सेकंड में शांत हो जाएंगे एंड मुझे उनको सिर्फ एक ही चीज बोलनी होती है कि आपके सामने एकेडमिक पेरेंट बैठा है मतलब आई एम योर एकेडमिक फादर तो ये मैं बिल्कुल समझता हूँ और मैं उस फिलोसॉफी को लाइफ टाइम फॉलो करता आया हूँ तभी शायद मैं इधर अभी तक ये फील्ड में हूँ और आई एम श्योर काउंसलर तक जो कंप्लेंट जाती होगी उसमें मेरा नाम नहीं होगा
2: क्या बात है भैया आपके नाम पे तालियां ऐसा कोई ट्रिक है जिससे जल्दी से फिजिक्स को पढ़ा जा सके आसान बनाया जा सके बतौर प्रोफेसर
4: डेफिनेटली है एग्जांपल तो आपके सामने खुद ही बैठा हुआ है मैं खुद गुजराती मीडियम का बच्चा था तो जब मैं 11th स्टैंडर्ड में गया सर वेलोसिटी वर्ड बोलते थे मुझे समझ में नहीं आता था मैं पापा के सामने जाके रोता था झगड़ा करता था कि आपने मुझे इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं डाला पापा एकदम पैट्रियोटिक थे बोले बस हम लोग इंग्लिश के स्लेव्स थे इसलिए मुझे तुझे नहीं डालना था इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम इन 2 months यू विल लर्न इंग्लिश इसकी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है जब मैं बचपन में बड़े बड़े लोगों को पढ़ता था लकीली हमारे टाइम पे टीवी सब नहीं होता था तो ग्रैंड फादर और फादर हमको बोलते थे कि वैकेशन में अच्छी बुक्स पढ़ो तो विवेकानंद जी को पढ़ता था न्यूटन जी के थियोरीज पढ़ता था आइंस्टाइन पढ़ता था फिनमैन पढ़ता था तब जाके बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि न्यूटन वॉज अ फिजिसिस्ट न्यूटन वॉज अ मैथमेटिशियन एक्चुअली स्पीकिंग तो फिजिक्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि फिजिक्स कभी भी पढ़ा नहीं जाता है फिजिक्स लिखा जाता है तो जो बच्चे 8th-9th में भी हैं अभी और शायद उनके पेरेंट्स अभी मेरे सामने बैठे हैं तो जब आपका बच्चा फिजिक्स पढ़ता है वो बात ही गलत है फिजिक्स लिखने का सब्जेक्ट है तो आपका फियर अगर 8th-9th से ही दूर हो जाएगा तो ये फियर ही नहीं रहेगा फियर सिर्फ अपने दिमाग में होता है और कोई चीज नहीं है तो अगर आप फिजिक्स पहले से लिखें पढ़े नहीं तो ये अपने आप याद हो जाता है क्योंकि फिजिक्स में 80-90% फॉर्मूले होते हैं अगर आप वो फॉर्मूले रटोगे तो फॉर्मूले कहीं ना कहीं आपको डीच करेंगे अगर आप उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपके हाथ का कोऑर्डिनेशन आपके दिमाग के साथ होना चाहिए आज सुबह कोई मुझे 2 बजे भी बोले कि नयन आपको लेक्चर लेना है तो क्योंकि मैं कांस्टेंट बोर्ड पे लिखता हूँ फॉर्मूले लिखता हूँ तो मेरी गलती होने वाली ही नहीं है लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि आप ये पर्टिकुलर गाने के लिरिक्स बोलो तो मैं उसमें डेफिनेटली गलती करूंगा क्योंकि वो मैं गा रहा हूँ मैं तो फिजिक्स लिखने का सब्जेक्ट है पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है अगर आप ये बेसिक चीज पे हो सके तो जब भी आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है स्कूल में और जब आप फिजिक्स लेते हैं तो आप तभी से ये आदत बच्चों को डालिए गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस फिजिक्स इज मैथ्स न्यूटन रोट द बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका सो ही वॉज बेसिकली अ मैथमेटिशियन आइंस्टाइन जी ने और जिसने भी जितने भी बड़े बड़े फॉर्मूले लिखे इट इज प्योर मैथ्स अगर आपको मैथ्स नहीं आती है मतलब आपको फिजिक्स नहीं आती है
2: क्या बात है बहुत सही बात कही है और एक नई बात कही है कि फिजिक्स लिख के पढ़ना है सिर्फ पढ़ना नहीं है हमारे जो दर्शक हैं उनको भी हम जोड़ना चाह रहे हैं तो एक स्टूडेंट है वो लॉ कर रही हैं और आए अपना परिचय दें और आकर सवाल पूछना चाहें
5: नमस्ते टू एवरीवन माय नेम इज तनुषा एंड आई एम डूइंग लॉ हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारा स्ट्रेस होता है सो हाउ डू वी डील विद दैट स्ट्रेस व्हिच इज नॉट जस्ट एकेडमिक रिलेटेड वो बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हो सकता है कि कुछ घर का प्रेशर हो या कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर एनीथिंग फॉर दैट मैटर
3: सबसे पहले जो पैनिक अटैक है इट इज एक्चुअली एक तरह की एंजाइटी है जो बहुत इंटेंस हो जाती है तो उसको हम पैनिक अटैक कहते हैं अब एंजाइटी और फियर में एक फर्क है. एंजाइटी एक ऐसा इश्यू है जहाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, आप जंगल से जा रहे हैं, वहाँ कोई शेर नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो, इसको एंजाइटी कहते हैं.
2: जी.
3: जब शेर सामने आ जाता है और आप डरते हो, तो ये नेचुरल और नॉर्मल कहा जाता है, इसको फियर कहते हैं. घर पर अगर कॉन्स्टेंटली माहौल ऐसा है कि जो नहीं हुआ उसी के बारे में बातें करते हैं, आपने पढ़ाई नहीं की तो आप फेल हो जाओगे, आप रसोई नहीं करते हो तो ससुराल में आपको डांट पड़ेगी.
2: बिल्कुल.
3: प्रिवेंटिंग एन एक्सीडेंट एंड एक्चुअली क्रिएटिंग एन एंग्जाइटी स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंटिंग. ये माहौल जो बार बार मैं बता रही हूँ, एंड आई फील सो सैड कि इस बच्चे के जो क्लीन स्लेट बन के आया था और आई थी,

0: उसके ऊपर लिखने का जो काम है वो पेरेंट्स करते हैं और वहीं से शुरू होता है सारे प्रॉब्लम्स. तो ये एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग का जो एक स्टोरी है ये आपके अंदर का स्क्रिप्ट है. आप बार बार अपने आप से क्या कहते हो, अगर ये नहीं किया तो ऐसा होगा, अगर ये वो नहीं किया तो ऐसा होगा, और ये स्क्रिप्ट बाहर सुनाई नहीं देता है. आप अपने आप अंदर इतना दोहराते हो उसको कि वो एक रियलिटी बन जाती है आपके लिए, और फिर एक्चुअल सिचुएशन आने से पहले ही आपको वो पैनिक अटैक. मतलब ये बॉडी भी वैसी मैजिकल है, आप उसको जैसे समझाओ ना वैसे ही चलता है ये.
1: क्या बात है, तो बहुत सही बात.
0: वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द राइट मैसेज टू योर बॉडी कि क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी, इट्स नॉट क्रिमिनल टू फेल. आप किस तरह से बातें करते हो अपने आप से, ये इम्पोर्टेंट है. और फिर ये जो एंजाइटी अटैक्स आते हैं इसके लिए काउंसलिंग डेफिनेटली वर्क्स, लेकिन समय पर अगर आ गए आप तो, वरना आपका ये पर्सनैलिटी बन जाता है. फिर आप एडल्टहुड में भी इसी तरह से कंडक्ट करते हैं और अपने बच्चों के लिए भी आप वही फैक्टर बन जाते हो. एंजाइटी, एंग्शियस पेरेंट्स क्रिएट एंग्शियस चिल्ड्रन. तो आपको ये जहन में रखना जरूरी है कि मैं हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बात करूंगी. एंड कीप योरसेल्फ ऑलवेज प्रिपेयर्ड. मैं ये नहीं, प्लान बी होना जरूरी है, प्लान सी होना भी जरूरी है आजकल. तो प्लान ए फेल्ड, नो प्रॉब्लम, प्लान बी इज इन प्लेस. और इफ यू आर आस्किंग मी हाउ डू वी हैंडल एंग्जाइटी, वी टेल देम कि आप ब्रीदिंग टेक्निक्स पे ध्यान दो, मेडिटेशन, योगा. ये सिर्फ 60 प्लस के लिए नहीं है, आज के जमाने में एक 5 साल के बच्चे के लिए भी है. इफ यू लर्न हाउ टू हैंडल योर ब्रीदिंग, आई थिंक यू कैन कॉन्कर एंग्जाइटी अटैक.
1: नैन जी, हमें आप ये बताइए कि 10-12 घंटे कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं फिर भी उनके मार्क्स उतने नहीं आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 6-7 घंटे में ही उम्दा अपना परफॉर्मेंस दिखा देते हैं.
2: अभी जैसे काउंसलर मैडम ने बताया, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तफाक रखता हूँ. सी, सब लोगों के पास 24 घंटे होते हैं, तो आप अपने दिमाग को कितना पॉजिटिव रखते हैं और कैसे पढ़ते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. अगर आपने अपने मन में पहले से कोई सब्जेक्ट के लिए डर बना लिया है, मतलब आप पहले से अपने ब्रेन को समझाते कि ये मेरे से नहीं होने वाला है, ये मेरे से नहीं होने वाला है, बाद में बच्चा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एकदम सौतेला व्यवहार करता है तो वो उसे होता ही नहीं है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं या तो जो भी कॉलेज में जाते हैं, मेरे हिसाब से आजकल का पूरा जो इंडिया का टाइम टेबल है, इट इज़ नॉट मोर देन 6-7 आवर्स. कोई भी स्कूल में कॉलेज में इतने से ज़्यादा नहीं बिठा सकते. आपकी 7-7.5 घंटे की मेडिकल साइंस के हिसाब से साउंड स्लीप होनी चाहिए. तो पेरेंट्स ये बिल्कुल ऑब्जर्व करें. अगर कोई बच्चा सुबह 1-2 बजे पढ़ता है तो माँ या तो पापा को ये खुश होने की जरूरत नहीं कि मेरा बच्चा कितना पढ़ाकू है, बहुत पढ़ता है. दैट्स अ रॉन्ग प्लानिंग, बिकॉज योर ब्रेन इज नॉट अ मशीन, योर ब्रेन ऑल्सो नीड्स रेस्ट. तो आपके 6 घंटे शायद जो भी क्लासेस में जाते हैं या कॉलेज में जाते वो हो गए. 7.5-8 घंटे की पक्की नींद गिन लीजिए. आपकी लाइफ में 1 घंटा आपको जो भी स्पोर्ट्स पसंद है, जो भी, वो बिल्कुल होना चाहिए. इट मे बी वॉकिंग, इट मे बी स्विमिंग, इट मे बी साइकिलिंग, इट मे बी क्रिकेट, इट मे बी फुटबॉल. तो मेरी हर एक पेरेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चा कोई एक खेल खेलता है, 1-1.5 घंटा जाता है, तो आप उसको बिल्कुल मत रोकिए, बिकॉज दिस इज द स्ट्रेस बूस्टर, दिस इज वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप अगर बाकी के 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो देर इज नो रीजन दैट यू फॉरगेट इट, बिकॉज यू आर कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी एंड यू आर स्टडिंग इट. When you study it out of pressure and when you study it out of entertainment, definitely आपके पढ़ने में फर्क होता है. See, as far as brain is concerned, some people are gifted. Let us not compare that way कि कोई बच्चा 3-4 घंटे पढ़ लेता है उसको याद रह जाता है. ठीक है, उसका ग्रे मैटर वैसा है, उसके न्यूरॉन्स वैसे हैं, राइट. कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा बचपन से जैसे, तो बच्चा ओवर थिंकिंग करता है. तो पेरेंट्स को सबसे पहले ये बिहेव करना होता है. कभी आपके बीच में भी अनबन होती है, वो ठीक है, आप अपने तक रखें, बच्चों तक ये सब चीज़ें नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको देखते हैं, आपको आइडल मानते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर खुशी खुशी कोई चीज़ पढ़ते हो, खुशी खुशी जो भी चीज़ करोगे उसमें डेफिनेटली रिजल्ट आना है, डेफिनेटली रिजल्ट आना है.
1: तो यहाँ पर इंजीनियरिंग के एक छात्र बैठे हैं, वेदांत, परिचय दें वेदांत, और जो भी सवाल करना चाहते हैं पूछें.
3: नमस्ते, मेरा नाम वेदांत सावंत है और अभी मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मेरा हो गया है, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हूँ. तो मुझे सवाल पूछना है कि अब जब मैं मेरे सीनियर्स को देखता हूँ,

0: जो थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में जो एआई का ट्रेंड आ रहा है जॉब मार्केट में, उसके वजह से बहुत सारे जॉब रोल्स भी कम हो रहे हैं। और बात आती है अपस्किलिंग, अपस्किलिंग तो अपस्किलिंग जब हम शुरू करने जाते हैं, एक और नई चीज़ मार्केट में आ जाती है, तो हम ये करें कि वो करें, बहुत कन्फ्यूजन में फंसे रहते हैं और उसके वजह से एक भी चीज़ ढंग से कर नहीं पाते। तो ऐसा बहुत लोग के साथ होता है, मैं भी खुद खुद ये चीज़ फेस कर रहा हूँ। तो आपका क्या राय रहेगी इस पर?
1: आप इस जनरेशन के हो, इसलिए आपके लिए सारी एक्टिविटीज़ एक मॉल की तरह है। हम जब
0: क्या बात
1: छोटे
0: है।
1: थे ना, तो हम एक टूथब्रश लेने जाते थे तो एक ही मिलता था, हम बड़े खुश थे। आज देखो क्या क्या नहीं है मॉल में, तो कन्फ्यूजन इज़ इंक्रीजिंग। लेकिन एक तरफ से ये अच्छा भी है, आई वुड से यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, है ना। लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि आपके पास चॉइस बढ़ गए, लेकिन आपको डिसीशन मेकिंग स्किल्स जो है ये आपके बहुत पुअर हैं। तो इसमें मैं कहूँगी कि आप पहले तो डिसाइड कर लो कि आपका गोल क्या है। जब आपका गोल ही बहुत एक्सेंट्रिक है, या रियलिटी के आसपास भी नहीं है, या फिर आप मल्टीपल गोल्स लेके घूम रहे हो, ये नहीं तो वो नहीं तो, उसने किया तो मैं भी करूँगा, इसने किया तो इसमें बड़ा पैसा है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आप नायन सर से भी मिलकर बात कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि वो जानते हैं आपको कि आपकी पढ़ाई का स्किल क्या है, एकेडमिकली हाउ आर यू। पेरेंट्स से ज़्यादा शायद वो आपको एडवाइस दे सकते हैं कि किस तरह से आप अपने पाथ को अपने गोल की तरफ ले जा सकते हैं। अब गोल मिले ना मिले, मैं मानती हूँ एज अ काउंसिलर, डेस्टिनेशन जो भी हो, जर्नी एंजॉयबल होना चाहिए।
2: क्या बात है,
3: सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात आपने
1: वरना क्या
3: कही।
1: हो जाएगा, आप डेस्टिनेशन तो पहुंच जाओगे, इतने थक जाओगे आप कि आप उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात ये मैं कहूंगी जो मेरे जहन में रह गया है, और मेरा एक सौभाग्य रहा कि मैं एक मिस्टर बच्चन के साथ एक इंटरव्यू कर चुकी हूँ, और उन्होंने
3: जी जी
1: बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि एक इवेंट में वो पार्ट लेना चाहते थे, उन्होंने बहुत मेहनत की। जिस दिन इवेंट था उस दिन सुबह उन्हें बुखार आ गया, तेज बुखार, वो पार्ट नहीं ले सके, खूब रोए। और आई थिंक ही वॉज इन डून स्कूल, तो उनके बाबूजी आकर उनसे कहे कि बेटा मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो और भी अच्छा है। तो वो समझ नहीं पाए, वो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, तो कि मन का ना हो तो उसकी इच्छा है। तो कभी कभी एक सबमिसिव लाइफ जीना भी, वो भी जी कर देख लो, यू माइट गेट द बेस्ट, यू
3: जी
1: डोंट नो। हमारा जो एफर्ट है वो 100% होना ज़रूरी है, लेकिन हर बार आपके ही मन का जो एआई प्रोग्राम किया या आपने जो सोचा वो शायद ना भी हो, हु नोज, अनदर डोर विल ओपन। तो इस विश्वास के साथ आप जीते हो तो आई डोंट थिंक यू विल बी स्ट्रेस्ड आउट। मैंने अपने सेशन में कभी पेरेंट्स जब आते हैं तो मैंने मदर को पूछा है कि पिछले 6 महीने में लास्ट आपके हस्बैंड ने आपका कब प्रेज किया,
3: जी
1: आपने बहुत अच्छा खाना बनाया हो, और उन्होंने कहा वाह क्या खाना बनाती हो, ये कब कहा। तो दोनों नीचे देखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पापा कहते हैं कहने की जरूरत क्या है, जब 2 बार मांग के खाता हूँ इसका मतलब अच्छा ही है।
3: बढ़िया।
1: नाउ हियर आई वुड लाइक टू से कि सारे पेरेंट्स को मैं कहूँगी और टीचर्स को भी कि प्लीज ट्राई टू प्रेज योर चिल्ड्रन।
2: क्या बात,
1: छोटी छोटी
3: सही बात
1: बातें होती है, नॉट रिलेटेड टू स्टडी, कि 90% आ गए तो वाह वाह, ऐसे नहीं। उन्होंने कुछ भी किया हो, आपके लिए कुछ कपड़े फोल्ड करके रख दिए हो, प्लेट्स रखे हो टेबल पर, या फिर कुछ अच्छी बातें कही हो, तो अपने शब्दों में आप जब उनको प्रेज करते हैं ना, व्हाट इज रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड। आप उसको रिवॉर्ड करते नहीं हो और सोचते हो कि टेकन फॉर ग्रांटेड, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट।
3: मतलब बच्चों के सामने उनकी प्रशंसा बहुत ज़रूरी है। हर घर में एक दूसरे की प्रशंसा ज़रूरी है, लेकिन बच्चों की प्रशंसा ख़ास तौर से ज़रूरी है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। अब हम नैन जी से जानना चाहते हैं कि जो जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं कॉलेजेस में, तो एनसीईआरटी की बुक्स की क्या अहमियत होती है, और साथ में ये भी बताइए कि इम्तिहान में के पहले किस तरह से छात्र रिवीजन करें कि वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सके, मतलब कि मार्क्स उनके अच्छे आ सके।
4: अभी बच्चे जो भी संस्थान में जाते हैं पढ़ने, वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे उनके एग्जाम्स होते हैं और वो अपलिफ्टमेंट होता है ये पहले एक चैप्टर पे, बाद में दो चैप्टर पे, बाद में चार चैप्टर पे। ना एज फार एज एनसीईआरटी बुक्स आर कंसर्न, जब आप कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो नीट हो या जेईई मेंस हो, उसका बेसिक बुक ही एनसीईआरटी है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में जो इन्फॉर्मेशन होता है उसकी एक एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक लाइन में से शायद 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसका डीप स्टडीज तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी बुक्स इनफैक्ट आई वुड से बहुत, मतलब बहुत नॉलेजेबल लोगों ने लिखी हुई है, बहुत अच्छे बुक्स हैं। बट एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ MCQs, द फुल फॉर्म इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आप एनसीईआरटी बुक को सिर्फ बेस नहीं बना सकते हैं, दिस इज जस्ट अ रीडिंग बुक। उसके बाद में एप्लीकेशन जब आता है तब आपको ज्यादा से ज्यादा MCQs सॉल्व करने चाहिए। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप अपना काम डिवाइड कर लें। अगर आपको फिजिक्स के 300 क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप रोज के 40-50 कीजिए। देखिए वैसे भी आपके पास टाइम लिमिट है, आप एक मिनट से ज्यादा नहीं ले सकते फिजिक्स के एक एमसीक्यू में। अगर आप जेईई के लिए प्रिपेयर करते हो दो मिनट से ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो सबसे पहले आप जब भी घर पे प्रैक्टिस करते हैं हमेशा टाइमर लेके बैठे, और वो टाइमर कभी भी मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ वॉल क्लॉक या तो रिस्ट वॉच होना चाहिए। एज टीचर्स हम लोग भी जब क्लास में एंट्री करते हैं, आप कभी भी हमें फोन करिए 7-3 या तो 7-4, हम रिलीजियसली फोन को हाथ नहीं लगाते। बिकॉज सीधी सी बात है, बच्चा जो दिखेगा वो करेगा। आज मैं बच्चों को बोलता हूँ मोबाइल फोन यूज मत करो, तो सामने सबसे पहले हमें वो बंद करना चाहिए। तो जब आपके बच्चे आपके सामने पढ़ते हैं, आप खुद अपना मोबाइल फोन भी दूर रख दीजिए, टीवी भी बंद कर दीजिए। जब अभी डैडी खुद आईपीएल देखते हैं और बाद में बच्चे को बोलते हैं तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है तुम पढ़ाई करो, तो बच्चा एक अजीब तरीके से आपको देख के आपके अपने रूम में चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क होता है, पापा व्हाट आर यू डूइंग। सो सबसे पहले मैं बार बार काउंसलर मैडम से इत्तेफाक रखूंगा कि योर किड्स फॉलो यू, सी यू नो यू आर देयर रोल मॉडल्स। तो एनसीईआरटी बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आपके पास आपके टीचर्स जो भी अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं उनको पता ही होता है कि MCQs के कौन से बुक्स अच्छे हैं। आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं, मान लीजिए आपके पास 6 घंटे बचते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे मैथ्स करें। हो सकता है आपको मैथ्स वास्ट है उसके लिए 2.5 घंटा लगे, तो आप उसको 2.5 घंटा दे दीजिए, केमिस्ट्री को 1.5 घंटा दे दीजिए, फिजिक्स को 2 घंटा दे दीजिए। वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, इट इज अ वेरिएबल थिंग। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन है इंजीनियरिंग कॉलेज का हो चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, आपका एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है। सो MCQs की प्रैक्टिस रोज करें, और अगर आप उसको रोज का रूटीन बना लेंगे, अब जैसे हम रोज सोते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज लंच लेते हैं, रोज नहाते हैं, मैं स्टूडेंट्स को कभी कभी ये बोलता हूँ कि ये आजकल के जमाने में आया हुआ ये वर्ड है स्ट्रेस। यहाँ पे जितने भी नॉलेजेबल लोग मेरे साथ में पैनल पे बैठे हुए हैं, 30 साल पहले मैंने ये वर्ड कभी नहीं सुना था। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये वर्ड सुना था, देयर इज अ चैप्टर इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। आजकल हम लोग जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ भी हो आपके हाथ में छाले आ गए स्ट्रेस की वजह से, आपको हार्ट अटैक, अभी हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, वो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, समझ में आ रहा है आज अभी मुझे बहुत ज्यादा पसीना होता है, नहीं नहीं स्ट्रेस की वजह, अरे बाबा मेरा इंटरनल हीट उतना है। तो स्ट्रेस वॉज नेवर अ वर्ड 30 years back, 25 years back, 20 years back, अभी मुझे लग रहा है ये वर्ड इतना ज्यादा रूटीन हो चुका है। हो सकता है मेडिकल एक्सपर्ट शायद ये वर्ड यूज करते हो और वो टाइम पे शायद ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ हो। मुझे सिर्फ यंग जनरेशन को इतना ही बोलना है कि जब कोई चीज नई आती है, कोई नई चीज इन्वेंट होती है, हम लोग पहले लैंडलाइन फोन पे थे, फिर पेजर आया, फिर मोबाइल फोन आया, तो हम लोग वो नई नई टेक्नोलॉजी सीखते गए कि नहीं। तो जैसे आप टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो नेचुरली उसके बारे में सीखना भी होता है। इंजीनियर्स लोग सीखते हैं, वो सब डिजाइन करते हैं, तो आपको किस बात का स्ट्रेस है? आज बच्चा PCB ले चाहे PCM ले, उसको फिजिक्स करना ही करना है, चाहे उसको पसंद हो ना हो। एक सिंपल सी बात है, आपके आजू बाजू में जितना भी फिजिकल वर्ल्ड है, चाहे आप वो गाड़ी ले लो, चाहे मोबाइल ले लो, जितनी भी चीजें ले लो, वो सब में फिजिक्स है। वो सारी चीजें आपको यूज करना पसंद है, लेकिन वो चीजों के बारे में आपको सीखना नहीं है। मतलब एक टायर पंक्चर हो जाएगा तो आप मैकेनिक को ढूंढोगे, आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक जन इंजीनियर होना चाहिए या तो डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन अगर आपने साइंस लिया है तो अपनी इच्छा से लिया है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसके लिए हार्डवर्क कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस आपके पास आना ही है। आपने ऐसा सब्जेक्ट लिया कि जिसकी बहुत डिमांड है और उसकी डिमांड कभी नहीं जाने वाली है, आप बस थोड़ा उसके पीछे हार्डवर्क डालो और सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा आपको।
3: यहाँ दर्शकों में भावना इस समय बैठी हैं और तो वो कुछ पूछना चाहती हैं।
5: मैं भावना हूँ, यहाँ पे इंजीनियर हूँ। तो अब दिक्कत ये हो रही है मेरे साथ, जैसे बोलते हैं कि जैसे पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, तो दोनों बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो बड़ा बच्चा था वो बचपन से काफी ब्रिलियंट रहा, वो छोटा थोड़ा सा उससे एवरेज है। उसके मन में ये आ जाता है कि भैया ने इतना किया है तो पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशन मेरे से उतनी इक्वली होगी, जबकि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके लिए बिल्कुल लिबरल हूँ, लेकिन वो अपने आप से जो प्रेशर ले लेता है, सिबलिंग प्रेशर को कैसे डील करें और बच्चा खुद से ले रहा है स्ट्रेस।
1: ऐसे सिचुएशन में हम बच्चे को बुला के पूछते हैं कि पेरेंटल प्रेशर है या नहीं, क्योंकि आप समझते हैं कि प्रेशर नहीं है और मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अक्सर ऐसे होता है ना कि कम्युनिकेशन वाइज वी डोंट शो द प्रेशर, बट हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं उसमें वो प्रेशर दिखाई देता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि सब तरीके से आपने पॉजिटिव कम्युनिकेट भी किया हो, लेकिन बच्चे के अंदर वो शायद एक फीलिंग आ जाती है, इट्स वेरी नॉर्मल, तो कुछ समय तक वो रहने वाला है। सो आई वुड से एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट, कोई हार्म नहीं हो रहा है उसको, कोई नुकसान नहीं हो रहा है और वो अपना नॉर्मल सब कुछ कर रहा है, मतलब ये कभी कभार वो जर अगर बात बता भी देता है तो उस समय आपको उसे हैंडल करना है ये बताकर कि सब सेम नहीं होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं जहाँ बच्चे अलग अलग हैं लेकिन उन्होंने अलग अलग अपने फील्ड में शाइन किया हो। हम काउंसलिंग में कहते हैं कि इसको किड ग्लव्स के साथ हैंडल करना है। किड ग्लव्स मतलब इसके प्रति थोड़ा और ध्यान देना होगा, या आउटशाइन करने के लिए कुछ ऐसा गलत कदम ना उठाए। समटाइम्स इट हैपन्स कि अटेंशन सीख करने के लिए या आपका अटेंशन ज्यादा मिले उसकी तरफ, इस तरह से भी आप कुछ व्यवहार कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जब बात कोई आता है ना बाहर से और आप उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं या उनके जो अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो वो यंग पर्सन जो बैठा है ना वो सुनता है, लेकिन हम भूल जाते हैं वो, क्योंकि हम फ्लो फ्लो में बहुत कुछ भूल जाते हैं। इसने ये किया, उसने ये किया, उसको ट्रॉफी मिल गई, अभी इसने ये किया और उसका कुछ नहीं बोलते हम, तो वो समझ जाता है। ये माइंड ऐसा है, लेकिन एज अ पेरेंट आई वुड से ये दिमाग में रखना जरूरी है कि इफ ही इज नॉट देयर और आपने उसे प्रेज किया किसी के सामने, दैट्स फाइन
3: जी,
1: लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बार बार कि जब वो छोटा है वहां पर आप क्या बोलती हो और किसके साथ बात कर रही है।
3: जी जी,
1: ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
3: मुंबई का एक कॉलेज है नरसिमोजी कॉलेज, जिसकी प्रोफेसर ममता झा यहाँ आई हैं, वो कुछ पूछना चाहती हैं।
6: नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता झा पिछले 28 वर्षों से नरसिमोजी कॉलेज में हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। तो मेरा ये पूछना है आपसे सुमति जी से कि जो बच्चा 11वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा में होता है, जो पहले दृश्य में नहीं देखती थी, आजकल बहुत फिजिकल लड़ाई करने लगे हैं,
3: हिंसात्मक
6: हो गए हैं बहुत ज्यादा, और हमारे सामने लड़ते होते हैं और सरकार का नियम है कि हम बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते हैं, तो उस वक्त हमें लगता है कि हम क्या करें, हम अपने आप को इतना असहाय महसूस करते हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, एक तो ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि वो जो बच्चा, जैसे आपने कहा कि सबब से आता है या हमारे यहाँ विरार और वहाँ से आते हैं बच्चे, तो वो बहुत ही अकेलेपन में अपना पूरा 12th निकालता है और फिर डिसाइड करता है कि अब मुझे नहीं आना है, तो उस बच्चे के साथ हम कभी समझ भी पाते हैं, क्योंकि क्लास में 120 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसमें 6-7 महीना लग जाता है उस अकेले बच्चे को ढूंढने में भी, तो ढूंढकर जब तक होता है तब तक वो शायद कॉलेज आना भी बंद कर देता है या अपने आप में घुटकर रह जाता है। तो एक शिक्षक के नाते मैं उसकी उसको उसकी परेशानी को कैसे दूर कर सकती हूँ।
1: आजकल जो ये फिजिकल

0: वायलेंस दिखता है ये आपको शायद बहुत मतलब रोड पे भी दिखेगा आपको रोड रेज जिसे कहते हैं इनका टेम्परमेंट बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बिकॉज इनके साथ पॉसिबली ये है कि वट एवर मैंने डिसाइड किया वही होना चाहिए ये शेयर करना नहीं चाहते हैं या फिर टीम वर्क में पार्ट लेना नहीं चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अगर इफ़ यू एक्चुअली सी विदाउट रीज़न किसी ने अटैक किया हो आप पूछेंगे तो सही कि बात क्या थी अगर आपको लगता है कि बहुत मामूली सी बात थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटेंस वायलेंटली अटैक किया है आई थिंक दैट कॉल्स फॉर अटेंशन टू सेंड टू द काउंसिलर क्यों वहाँ पर फिर वो उन्हें संभाल लेते हैं कि किस तरह से अपने टेम्पर को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से वो लोगों के साथ बैठकर भी वो अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं
1: जी बिल्कुल सही कह रही हैं
0: और आपका दूसरा सवाल कि अकेले जो बैठते हैं ये मैंने भी देखा है इनफैक्ट वो आते हैं मेरे पास एंड दे फील कि उन्होंने ये गलत डिसीशन लिया इस कॉलेज में आकर ऐसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जो सेकेंड या थर्ड ईयर पर चेंज करके निकल गए हैं अगर वो खुद चेंज हो सकता है और विच इज़ वेरी डिफिकल्ट नहीं तो यहाँ पे प्रिंसिपल कॉलेज इन सब का हेल्प लेकर उसको हेल्प करना ज़रूरी है
2: अभी हमने देखा है कि बच्चों में 11th 12th के स्टूडेंट्स विपिंग करते हैं या विपिंग ही कहते हैं उसको जो इलेक्ट्रिक वाला है और फिर सडनली चूंकि सब जगह आप कैमरे लगे होते हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए तो वो उससे पता चलता है तो उसके बारे में हम कितनी भी काउंसलिंग करें काउंसलर्स के पास भेजे फिर भी एक ना एक दो ऐसे मिलते हैं तो उसके लिए क्या अलग से काउंसलिंग सेशन रखना चाहिए या किस प्रकार से क्योंकि उस इतनी कच्ची उम्र में अगर वो इस जाल में फंस रहे हैं तो आगे उनके सेहत पे मानसिक आर्थिक और हर तरह के सेहत पे असर पड़ सकता है
0: इस मतलब यही कॉलेजेस से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जहाँ टीचर्स ने पिकअप किया प्रोफेसर ने पिकअप किया कि ये क्लास में सुबह सुबह सोते रहता है लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो हम जान जाते हैं कि ये सोता नहीं है ही इज अंडर रिजल्ट ऑफ ड्रग्स ये मैंने ऑलरेडी फेस किया है और इनको काउंसलिंग और डी एडिक्शन सेंटर्स में भेज कर मदद लेना ज़रूरी है क्योंकि इट इज अ वेरी सीरियस इश्यू क्योंकि इनका जो सप्लायर जो होता है उसको पकड़ना ईजी नहीं है और ये फिर नारकोटिक सेल तक जाता है और कॉलेजेस चाहते नहीं है कि उनका कॉलेज नारकोटिक सेल के लिस्ट में आ जाए तो ये पेपर में आता है तो ये मल्टीपल इश्यूज हो जाते हैं सो वी क्वाइटली सेंड देम टू डी एडिक्शन सेंटर वहाँ पे वो सेशंस लेते हैं उनका ब्लड टेस्ट करते हैं क्योंकि बच्चा तो कहेगा कि मैं लेता नहीं हूँ द ओनली वे टू नो इज फ्रॉम ब्लड टेस्ट तो ऐसे केसेस बहुत आए हैं जिसको हमने डी एडिक्शन सेंटर कोकिलाबेन हॉस्पिटल में है जी, और जी. वहाँ वो डेफिनेटली उसको हैंडल करते हैं
1: बहुत सही बात आपने कही दर्शकों में कुछ छात्र बैठे हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं
3: मेरा नाम अक्षर है मैं इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा हूँ 12th में हूँ जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मेरा क्वेश्चन बच्चे कई बार ठीक से फोकस नहीं कर पाते और पढ़ाई का बोझ जमा होते जाता है फ्यूचर की फिक्र भी सताती है तो ऐसे में इससे कैसे डील करना चाहिए
0: मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप एक हॉलीडे पे जाते हो तो आप क्या तैयारी करते हो ऐसे ही चले जाते हो बैग उठाकर या फिर कुछ देयर इज सम प्लानिंग कितना प्लानिंग करते हो आप वहाँ वेदर क्या होगा आप चैट जीपीटी पे जाकर 10 सवाल पूछते हो अम्ब्रेला की जरूरत है स्वेटर पहनना है डबल लेयर पहनना है कितना पूछते हैं बट व्हेन इट कम्स टू स्टडीज वी डोंट वांट टू प्लान तो जैसे सर ने भी पहले बताया कि हर टास्क को छोटे छोटे टास्क में अगर डिवाइड कर दिया तो बहुत ईजी हो जाता है है ना कुछ तैयारियां हम पहले से ही कर चुके होते तो आई थिंक उस दिन हमें बहुत ये बोझ नहीं लगता स्ट्रेस नहीं लगता है और हम सबको करना होता है ये शायद वो ममता जी हो या मैं हूँ
1: बिल्कुल
0: या नयन सर हो वो भी पढ़ाने आते हैं तो यूं ही उठ के आते नहीं है सुबह वो सोचते हैं आज मुझे क्या पढ़ाना है
1: बिल्कुल
0: कितना वक्त पढ़ाना है कौन सी एक्टिविटी करानी है इन स्पाइट ऑफ सो मेनी ईयर्स तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जो भी एक्टिविटी है उसको आप डिवाइड कर दो एक टू डू जर्नल रखो ये जो फोन है ना इसको एक तरफ रख के एक जर्नल ही रखो इट वर्क्स वंडर्स इट विल बी अ गेम चेंजर इन योर लाइफ सुबह उठ के टू डू थिंग्स लिखना शुरू

0: कर दो. स्टीव जॉब्स करते थे, व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग सब कुछ प्लान होना जरूरी है. बट एक बात याद रखना, हर चीज प्लान के मुताबिक चले ये जरूरी नहीं है. तो आपके पास ये भी माइंडसेट होना चाहिए कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लूंगा मैं. बट आपके पास एक प्लान हो तो आप बहुत अच्छी तरह से उसको निभा सकते हैं, तो स्ट्रेस नहीं लगेगा आपको.
1: मैं अक्षर को सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि अक्षर अभी आपके पास ये एज में सिर्फ पढ़ाई और शायद एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है. हम जब बड़े लोग जब फोन यूज करते हैं तो फोन का एक अच्छा यूज भी है. इसमें हम लोग नोट्स लिख के रखते हैं कि आज मैं 7 बजे क्या करूँगा.

0: स्टे मोटिवेटेड. घर पे एक स्टडी बोर्ड बनाओ, स्टूडेंट्स को ये मैं खास बोलूंगा, घर पे एक स्टडी बोर्ड बनाओ, चार टास्क लिख के रखो, आज फिजिक्स का इतना होमवर्क है, केमिस्ट्री का इतना है, मैथ्स का इतना है, हो गया, अपने आप को स्माइली दो. हो सके तब तक उसको स्पिल ओवर मत होने दो, डोंट अलाउ इट टू गो टू द नेक्स्ट डे, बिकॉज आपके पास नेक्स्ट डे भी नया होमवर्क आने वाला है. हर दिन नया उगता है, हर दिन कुछ ना कुछ आपको काम है ही. एंड मेक योर सेल्फ सो स्ट्रांग. मैं बच्चों को फिजिक्स की लैंग्वेज में ये बोलता हूँ कि बी अ मैग्नेट सो दैट द थिंग्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. डोंट बी अ मैग्नेटिक मटेरियल कि यू आर अट्रैक्टेड बाय स्टूपिड पेटी थिंग्स इन लाइफ.
1: बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी बात है. तेजश्री जी कुछ कहना चाहती हैं?
2: मेरी बेटी है, 6 साल की है. सो मतलब आज अभी तक जो डिस्कशन चल रहा था वो काफी बड़े बच्चों के लिए था ये सब, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू स्टडीज और इट्स नॉट रिलेटेड टू करियर और समथिंग. ये जो अभी उसका जो एज है ना, कि बहुत सारे सवाल और ऐसे सवाल जो हमको अनकंफर्टेबल करते हैं, या उसको जब तक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है वो कन्विंस नहीं होती है, या ये फेज में मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उससे झूठ बहुत बोल रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी उसको डराना है तो मैंने पहले तो मैंने उसको ऐसे ग्रो अप किया था कि भूत होता नहीं है लाइफ में. वो मैंने उसको इतना अच्छा सिखा के रखा था कि अब मुझे उसको सुलाने के लिए बताना पड़ता है कि है भूत. तो मतलब दिस हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स थिंग विद मी टू हर, क्योंकि क्या होता है, कम्युनिकेशन इतना हम दोनों में बढ़ गया है ना. वो 6 साल की है तो मैं सच में परेशान होती हूँ उसके क्वेश्चंस को लेके, मरते हैं मतलब क्या है, या मतलब बहुत सारे सवाल. तो उसमें क्या होता है, हर चीज हम उसको उनको उतनी नहीं बता सकते, फिर भी मैं बताती हूँ. जैसे उसको लगता है, पुलिस ही नहीं होना चाहिए, मतलब पुलिस दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि उनको देख के उसको डर लगता है. कंफर्टेबल कैसे होना चाहिए ये रिलेशनशिप?
3: आप आई वुड से लकी हैं कि वो इतना बात करती है. बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं हमारी बच्ची तो बात ही नहीं करती है, पूछते भी नहीं है.
1: वो ज्यादा मुश्किल है.
3: So these are the formative years जहाँ बच्चा बहुत कुछ जानना चाहता है और जानना चाहती है. तो मैं कहूँगी you are very lucky, so don't feel unhappy. बात रही कि आप क्या जवाब देंगे, मेरा कहना ये है कि honest answers देना चाहिए. भूत है ये डराना ये सही नहीं है.
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि आपने देखा नहीं ये भूत को, तो आप कैसे कह सकते हो भूत है, है ना?
1: बिल्कुल सही बात है.
3: So अब कितना कहना है ये आपकी विजडम और इंटेलिजेंस पर निर्धारित है. लेकिन जहां तक जवाब देने का सवाल है, आई वुड से बी ऑनेस्ट, बट इतना भी डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं है जो उसके ऊपर से जाए. उतना ही दो जितना वो समझ सके. एंड ट्रूथफुल आंसर्स आर बेस्ट आंसर्स. तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप सही जवाब दो एंड बी हैप्पी दैट दे आर क्वेश्चनिंग. वेरी गुड.
1: बिल्कुल.
4: मैं जयंत पात्रिकर, वरिष्ठ उद्घोषक विविध भारती. अभी जो बात चल रही थी उससे जुड़ा एक सवाल है कि पिछले 20-25 सालों में एक शब्द कॉइन हुआ है, कॉन्शियस पेरेंटिंग. तो ये कहां तक कारगर सिद्ध हुआ है? हर बच्चे की अपब्रिंगिंग अलग तरह से होती है.
3: डेफिनेटली.
4: हाँ, तो उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग एक जैसे कैसे होगी?
3: एक जैसे पेरेंट्स की काउंसलिंग करते नहीं है. वन साइज डजंट फिट ऑल. हम कस्टमाइज करते हैं.
4: अच्छा.
3: मतलब पेरेंट्स को पहले पूछते हैं कि उनके घर पर कौन कौन है.
4: हाँ.
3: वो कहाँ तक किस माहौल में रहते हैं. कौन सा मतलब व्हाट प्रोफेशन.

0: जरूरी है. I can't create a war between husband and wife after counseling session.
1: ये बहुत सही बात कही आपने.
0: That's not possible. तो मैं चाहती हूँ वो हंसते हंसते निकले और second session आए.
1: जी.
0: तो my challenge is getting them for the second session. पहले मैं सिर्फ अंदाज लगाती हूँ, दूसरे में अपना कुछ उनसे पूछती हूँ, तीसरे में उन्हीं को accountable बनाती हूँ कि वही suggestion देते हैं. तो ये जानना बहुत जरूरी है आपका lifestyle क्या है. उसके बाद सो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट ऑफ एवरीथिंग.
1: जी. एक नन्ही छात्रा आई है, अपना नाम बताइए बेटा.
2: नमस्ते, मेरा नाम श्रिया है. नाउ आई एम इन 6th स्टैंडर्ड इन सेंट रॉक्स हाई स्कूल एंड आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि जब हमारे एग्जाम्स होते हैं जो हमारे मुश्किल सब्जेक्ट्स है जस्ट लाइक साइंस एंड हिस्ट्री, उसके जो बड़े आंसर्स रहते हैं उन्हें हम जल्द से जल्द और आसान तरीके से कैसे याद कर सकते हैं?
1: ये तो मुझे लगता है इसका आंसर नैन सर दे पाएंगे. कहिए नैन सर, बताइए. आप मुश्किल में पड़ गए हमें लगता है.
3: भले आज मैं टीचर हूँ लेकिन मेरे भी 2-3 नापसंदीदा सब्जेक्ट्स हुआ करते थे. मुझे सिविक्स कभी पल्ले नहीं पड़ी थी. मेरी एलजिब्रा बहुत अच्छी थी. ज्योमेट्री में मेरे हमेशा 10-12 मार्क्स आते थे, हालांकि मैं स्कूल में टॉपर था. तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, जब आप 10th स्टैंडर्ड के बाद अपनी करियर चूज करोगे तो आपके नापसंदीदा सब्जेक्ट्स निकल जाएंगे. एक ही सजेस्ट करूंगा कि जब आपको ऐसे क्वेश्चंस, जब मुश्किल वाले लगते कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस है, उसके कुछ कुछ वर्ड्स आप अंडरलाइन कर लो. तो वर्ड के आगे पीछे के वर्ड्स आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं. उसका जो मेन वर्ड होता है, जैसे कोई डेफिनेशन होती है, आपने उसका एक वर्ड दिमाग में याद रख लिया तो उसके आगे पीछे अपने आप सेंटेंस बैठता है. तो वो सारी चीजें आपकी वक्त के साथ निकल जाएगी. यू आर टू यंग सो डोंट वरी अबाउट दिस. राइट. सबसे मेन हैप्पी माइंड के साथ पढ़ो. ओके.
1: बहुत बहुत शुक्रिया नयन सर, आपने इतने अच्छे से जवाब दिया. दरअसल ये चर्चा ऐसी है, विषय ऐसा है, ऐ जिंदगी गले लगा ले, कि अंतहीन है. अब लेकिन आखिर में जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, और अपने श्रोताओं को बता दें कि विभा जी फिल्मी दुनिया में लेखिका हैं और कुछ सीरियल्स और फिल्में भी को प्रोड्यूस की हैं और डायरेक्ट भी करने की ख्वाहिश रखती हैं. तो विभा जी अब आप माइक लीजिए और बताइए आज की चर्चा से क्या कुछ निचोड़ निकलता है.
4: विद भारती के श्रोतागणों को मेरा नमस्कार. सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी. इतना बढ़िया सृजन भारती कार्यक्रम, इतने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा. सच कहूँ तो मैं तो यहाँ बैठ के सुनते ही जाऊँ. इतना अच्छा लगा, इतनी दिलचस्प बातचीत हुई है, इतना सीखने को मिला है. फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं था, मैं आज भी फिजिक्स सीखना चाहती हूँ.
1: क्या बात.
4: और आपने कहा कि मैं ऑनलाइन जा के सोचती हूँ कि मैं कुछ करूँ, बट यू सेड फिजिक्स इज राइटिंग. तो अब मैं वो अप्लाई करके देखती हूँ मुझे कितना समझ आता है. डॉक्टर रोजा ने जितनी भी बातें की हैं बच्चों के विषय में, पेरेंट्स के विषय में, आई विश कि ये बात दूर दूर तक फैले, सबको समझ आए, सब सुने. मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बच्चे को टीचर ने पूछा कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो उसने बच्चे ने बोला कि मैं खुश रहना चाहता हूँ. तो टीचर ने बोला तुम्हें सवाल समझ नहीं आया, तो बच्चे ने बोला आपको जवाब समझ नहीं आया.
1: क्या बात है. वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया.
4: तो ये मेरा नहीं है पर मैंने कहीं पढ़ा है, तो आप मेरे लिए तालियां बजा दिए, बहुत शुक्रिया. दूसरा ये कि असफल जब हमको लगता है कि हम अभी असफल हुए, तो क्या होता है कि हमको गुस्सा आता है, हम किसी को ब्लेम करना चाहते हैं, हम नाराज होते हैं. हिंसा की बात की आपने, तो ये सब होता है. नेगेटिव फीलिंग होती है, सबको ही आती है. हम भी कोई चीज़ हम चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ चाह रहे हैं वो नहीं हुआ, हम सब नाराज हो जाते हैं, तो वो तो होता ही है. पर उसको अगर हम चैनलाइज कर लें, इसमें भी फिल्मी जगत का हेमा मालिनी जी ने ये किस्सा बताया था कि वो टीनेजर थी जब वो अपनी पहली फिल्म के ऑडिशन के लिए गई थी
1: जी.
4: तो उनको प्रोड्यूसर ने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि तुम कभी हीरोइन नहीं बनोगी. इनको जब रिजेक्ट कर दिया था तो ये बहुत गुस्सा हुई थी और इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं एक फिल्म में तो हीरोइन बन के दिखाऊंगी, मैं इस प्रोड्यूसर को दिखाऊंगी. तो उनका जो गुस्सा है उन्होंने चैनलाइज किया पॉजिटिवली, ताकि वो किसी फिल्म में हीरोइन बनी. और उसके बाद तो स्वप्न सुंदरी हैं आज.

0: मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोफेसर वर्मा ने जो एक बात कही कि आप इलास्टिक होइए, स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस के पहले छोड़ना है छोड़ दीजिए, टूटने पे मत आ जाइए। पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, दोष दिया जाए या क्रेडिट दिया जाए, डॉक्टर रोज़ा कह रही हैं कि पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ऑपरेशन होता है बच्चों पे। तो मैं आखिर में एक चीज़ कहना चाहूँगी, मेरी एक फ़िल्म है जिसका डायलॉग है, फिल्म अनरिलीज्ड है अभी, भगवान को हम बोलते हैं कि आप बच्चे बनाते हैं तो साथ में एक मैनुअल क्यों नहीं बना देते कि बच्चों को कैसे पाला जाए। तो भगवान ने कहा कि हर बच्चा यूनिक होता है, अलग होता है, तो मैं अब बच्चे बनाऊं कि मैनुअल बनाऊं? तो बच्चे ने बोला कि मैंने भी भगवान से पूछा कि कम से कम बच्चों को एक मैनुअल दे दो कि माँ बाप को कैसे हैंडल किया जाए।
1: जी जी।
0: तो भगवान ने बोला हर बच्चे की तरह हर माँ बाप यूनिक होता है।
1: जी, क्या बात
0: तो
1: है, बहुत
0: अगर वो समझदार है तो उनको सुन लो, और अगर तुम ज्यादा समझदार हो तो उनको समझ लो। तो बस यही है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी, वक्त निकाल के आप आई, अपनी फिल्मी दुनिया की तमाम व्यस्तताएं होती हैं हम समझ सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नयन जी आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे विविध भारती की सृजनात्मक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत संपन्न हुए कार्यक्रम ए जिंदगी गले लगा ले, इसके संपादित अंश। इस कार्यक्रम में प्रतिभागी थे प्रोफेसर नयन वर्मा, समुपदेशक एवं मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक डॉक्टर सुमति ओझा और फिल्म लेखिका विभा सिंह। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया था ममता सिंह ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का विविधा कार्यक्रम संपन्न होता है।
3: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होंगे समाचार, कीजिए इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना ही इस अभियान का उद्देश्य है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत हर रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान

0: प्राण परीक्षा का सुचारू सुरक्षित पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वो अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे, साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति कल कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। मंगलवार को वे दक्षिण ओडिशा में तप्त पानी के पास माँ कांधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर केरलम में जारी तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर के साथ ही अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाल लेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल और आज आपके साथ मैं हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे उस खास दिन के बारे में जो आज है, जिंदगी का वो खास हिस्सा जिसके साथ हंसी भी खुलकर आती है और छोटी छोटी बातें भी यादगार बन जाती हैं। कुछ दोस्त रोज मिलते हैं तो कुछ दूर रहकर भी हमेशा दिल के करीब रहते हैं। मित्रता दिवस के इस खास मौके पर आइए अपने सभी दोस्तों को एक प्यारी सी मुस्कान और ढेर सारी शुभकामनाएं दें। इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं दोस्ती के रंग में रंगे कुछ बेहतरीन गीत। आगाज कर रहे हैं सुहाग फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह ने, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

की महफिल और हम बात कर रहे हैं आज दोस्ती की, दोस्ती से भरे गानों की। तो लीजिए ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी धुन बनाई है। फिल्म का नाम नसीब।

0: कहानी सुनानी।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस संदेश से पहले आपने सुना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म का गीत आवाजें थी डोमिनिक सेरेजो, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेजो की। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत कॉकटेल फिल्म से। नीरज श्रीधर और कविता सेठ ने इसे आवाजें दी हैं। इरशाद कामिल की रचना है, प्रीतम का संगीत।

तो साथियों, आज का ये दोस्ती से भरे गीतों का सफर आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। अपनी पसंद आपकी क्या थी और कैसा आपको ये पूरा प्रोग्राम लगा जरूर बताइएगा। इसी के साथ नेहा अगरकर देसाई को कार्यक्रम यादों की महफिल से दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में हम हर रोज आपसे एक इबारत के साथ मिलते हैं और आपको उन इबारतों से कुछ शब्द चुनने होते हैं। जी हाँ, वही शब्द जिनसे हम गाने सुनवाने वाले हैं, उनके कयास आपको लगाने होते हैं। तो चलिए जुड़ जाइए हमसे फेसबुक पर, ताकि आप

और हम कमेंट्स के जरिए आपसे संपर्क कर सकें और एक दूसरे की बातें जान सकें। हाँ हाँ, इबारत से जुड़ी बातें। कई श्रोताओं ने इस कौन से गीत बजने वाले हैं इस कार्यक्रम में उसका अंदाजा लगा लिया है, तो चलिए सबसे पहले हम इस इबारत को पढ़ देते हैं। तो आज की इबारत है, कलम सिर्फ लिखने का जरिया नहीं, जिम्मेदारी भी है। जो इसकी अहमियत समझते हैं वे इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करते, क्योंकि कलम का हर गलत इस्तेमाल उसकी गरिमा को थोड़ा और कम कर देता है। ये वही ताकत है जो विचारों को दिशा देती है, सच को आवाज देती है और समाज में बदलाव की नींव रखती है। इसलिए इससे निकला हर शब्द सोच समझ कर संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ लिखा जाना चाहिए। याद रखिए, शब्द मिटाए जा सकते हैं लेकिन उनका असर अक्सर हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए अपनी कलम को हमेशा सत्य, सकारात्मकता और इंसानियत का साथी बनाइए। तो कौन से हो सकते हैं वो शब्द जो आज की इबारत में भी है और आज के गीतों में भी? चलिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हम से मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाजें, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

जी हाँ, तो आपकी टिप्पणियों की भरमार लग चुकी है और हमारे एक साथी ने लिखा है, कलम की कमाल और कलात्मकता दर्शाती इबारत काल प्रवाह के कालांतर ने काल क्रम में कलम की कौशल कृत्य को सदैव आत्मसात किया है। इसकी रोशनाई से रोशन हुई सुप्त दीपशिखा की ज्योति को ज्वाला बना ज्वालामुखी तक अंजाम देने में सक्षम है। उपदेशात्मक सकारात्मक विचारपूर्ण सृजनशीलता बोध कराती संगीतमय सफर का इंतजार रहेगा। जी हाँ, तो ये सफर शुरू हो चुका है। एक साथी लिखते हैं, कलम और क्रांति एक जोड़ है जो सदियों से समाज को एक शिक्षा और ताकत देती है, आजादी देती है अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक तरीका। परंतु आजादी में अच्छे बुरे की समझ जरूरी है। जो हमें पसंद नहीं वो कलम से या जुबान से व्यक्त ना हो, ये दायित्व रहे आज के गीतों में। ये माटी, अच्छा इन्होंने गीत भी बताए हैं कि ऐसे गीत कुछ शामिल हो सकते हैं। एक साथी ने लिखा है, कलम कलम दवात वो वस्तु है जो बचपन में प्रथम कक्षा से ही नन्हे हाथों में देकर अपना भविष्य संवारने हेतु दी जाती है। कलम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बचपन से किताबों में पढ़ते और सुनते आए हैं कि आजादी की लड़ाई में कलम की विशेष भूमिका रही। आज भी हम अपनी बात कलम से ही लिख रहे हैं, लेकिन वो डिजिटल हो गया है। लिखने से याददाश्त अच्छी रहती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं। अच्छा हाँ, एक बात तो हम भूल ही गए कि ये जो पहला गीत आपने सुना, इस का जो शब्द था जो हमारी आज की इबारत में भी था वो था कलम। और आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं, बताइएगा कौन सा शब्द है। अनपढ़ फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खां ने इसे लिखा है, मदन मोहन का संगीत।

शायद इस शब्द का कयास लगाना थोड़ा सा जटिल महसूस हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हाँ यहाँ पे शब्द था समझा। जी हाँ, इबारत की लाइन है जो इसकी अहमियत समझते हैं, तो समझते से हमने लिया है समझ ये शब्द, और समझा इस गीत में शब्द शामिल था। और हमारे कई श्रोताओं ने लिखा है कि उनका पहला गीत शामिल हो चुका है। एक साथी लिखते हैं, शुरुआत में जब हम छोटे थे तब स्लेट और चौक से लिखना सीखते थे, फिर कॉपी और पेंसिल से लिखना शुरू किया, जब गलत होता था तो रबर से मिटा लिया करते थे, क्लास 6 से पेन मिला करता था वो भी स्याही वाला, स्याही खत्म होने पर फिर से स्याही भर लेते थे। वहीं एक साथी ने लिखा है, बोला हुआ भुलाया जा सकता है पर लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता। एक साथी लिखते हैं, कलम की ताकत का सीधा और मुख्य अर्थ वैचारिक क्रांति, सामाजिक सुधार और अज्ञानता के खिलाफ आवाज उठाना है। ये शाश्वत सत्य को रेखांकित करता है कि इतिहास गवाह है कि जो काम बड़ी बड़ी सेनाएं या तलवारें नहीं कर पाई, वो काम एक लेखक पत्रकार की कलम ने कर दिखाया है। कलम की ताकत असीमित है, लेकिन इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि इसे चलाने वाले का उद्देश्य क्या है। यदि कलम का उपयोग सकारात्मकता, न्याय और सत्य के लिए किया जाए तो ये समाज के लिए वरदान है, लेकिन यदि इसका उपयोग झूठी अफवाहें या नफरत फैलाने के लिए हो तो ये विनाशकारी भी हो सकती है। और इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, शब्द जरूर पहचानिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा। पतंगा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, इंदिवर के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली।
3: सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और साथियों, जैसा कि इस संदेश से पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था वही जो आप सभी ने सही पहचाना है, थोड़ा। तो थोड़ा शब्द हमारी इबारत में भी शामिल था। और कई लोगों ने लिखा है पिछले कुछ गीत को लेकर कि इसमें तो कई सारे शब्द हैं। तो शब्द तो कई सारे हैं, लेकिन हमारी इबारत से कौन सा शब्द जुड़ता है वो आपको पहचान कर बताना है। तो अब आप कयास लगाते रहें और हम आपको गीत सुनवाते रहेंगे। एक साथी ने लिखा है, कलम तलवार से भी ज्यादा तेज होती है, सोच बदल देती है, एक लाइन किसी का दिन बना सकती है और एक लाइन किसी की जिंदगी भी, इतिहास लिखती है, बड़े बड़े आंदोलन, क्रांति, संविधान सब कागज और कलम से शुरू हुए, दिल जोड़ती है, चिट्ठी, कविता, कहानी, दूर बैठे लोग भी कलम से करीब आ जाते हैं, सच बोलती है, जब आवाज दब जाए तब भी कलम सच लिखती रहती है। तो इसी तरह जो कलम का काम है वो बड़ा अनोखा होता है। एक साथी ने लिखा है कि हमारे देश में जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन्होंने हमें अपनी कलम के जरिए बहुत अच्छी शिक्षा दी है। अगर उनकी कलम में कहीं चूक हो गई होती तो शिक्षा का अर्थ ही शायद अर्थ ना रहता। पर चाहे लेखन कैसा भी हो, सार्थक होना चाहिए, चाहे कविता हो, साहित्य हो, गीत हो, चाहे प्रेम पत्र ही क्यों ना हो। अगर कलम में ताकत हो, अर्थात कहीं कोई खामियां ना हो, तो ये अच्छा रहता है। तुम इन्होंने और भी कुछ गीतों के भी इन्होंने सुझाव दिए हैं कि ये गीत आज हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इनमें से कोई गीत आज बजने वाला है। नदिया के पार, इस फिल्म से सुनिए ये गीत, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजें, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

किसी श्रोता ने बड़ी अच्छी सी पंक्तियां लिखकर भेजी हैं, चलिए पढ़ते हैं। लेखनी जब हाथ में आती, मन की हर धड़कन कह जाती, जो शब्दों में ना ढल पाए, स्याही बनकर कागज पर छा जाए। लेखन केवल अक्षर नहीं, जीवन का मधुर सफर यही। कभी हंसी की मीठी धुन है, कभी आंसू की मौन लगन है। लेखन से विचार संवरते, बिखरे सपने फिर निखरते। सच की लौ जब इसमें जलती, अंधियारी राह भी उजली लगती। कलम की अपनी एक कहानी, बदल दे दुनिया बदले जवानी। शब्द अगर हो प्रेम से भरे, हर दिल में विश्वास उतरे। आओ ऐसा लेखन करें, मानवता का दीपक धरें। हर पंक्ति में हो सत्य का मान, यही लेखनी का सच्चा सम्मान। बड़ी ही खूबसूरत पंक्तियां ये थी। साथ ही एक साथी ने बड़ी मजेदार बात लिखी है। इन्होंने लिखा है, जब मैं कागज कलम लेकर बैठता हूं तो मुझे नींद

साथी के साथ ऐसा होता है तो आप लिख सकते हैं ताकि हमें भी पता चले कि ऐसा करने वाले अब ये लिखने वाले साथी और मैं ही हैं या और भी ऐसे साथी हैं जिन्हें किताबें और लेखनी हाथ में लेने पर नींद आती है। चलिए तब तक सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में दोस्ती फिल्म का ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: जी हाँ, इस गीत में जो शब्द था वो था आवाज, और इससे पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था दिशा। और हाँ बिल्कुल, आप में से कई श्रोताओं ने इसका सही जवाब भी दिया है। एक साथी ने लिखा है, जज की कलम से कोई बरी होता है तो कोई फांसी चढ़ता है, गुरु की कलम से हम साक्षर होते हैं और माता पिता की कलम से ढाढ़स बनता है। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। एक साथी लिखते हैं, कलम रिश्ते को तोड़ देती है और जोड़ भी देती है, कलम से लिखी गई चिट्ठी मन के भाव को बयां करती है, कलम से निकले शब्द ही प्रेम व्यक्त करने का जरिया है। वहीं पे एक साथी लिखते हैं, जो काम धरने प्रदर्शन अनशन और आंदोलन से नहीं होते हैं, वे काम कई बार कलम की ताकत यानी कि लेखन विचारों और कानून से हो जाते हैं। कलम की इस अद्भुत शक्ति से प्रमुख उदाहरण में वैचारिक क्रांति, कानूनी बदलाव और जनमत निर्माण शामिल है।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
0: लीजिए अब आपको सुनवाते हैं जंजीर फिल्म का गीत मन्नाडे की आवाज। गुलशन बावरा का ने इसे लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: मेरी जिंदगी, ओ यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी।
1: जी हाँ, तो ईमानदारी से लिया गया शब्द ईमान इसमें शामिल है। एक साथी लिखते हैं, सच कहें तो सुरीला सफ़र के इबारत ने कुछ लिखने को प्रतिदिन प्रेरित करती है। लिखने की जुनून को पुनः जागृत करने का विविध भारती का शुक्रिया। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि विविध भारती आपको जागृत करती है और उसके बाद आप लिखते भी हैं। तो आप इसी तरह अपनी टिप्पणियां लिखते रहें, अपने दिल की बात विविध भारती से साझा करते रहें, यानी कि हमसे साझा करते रहें। एक साथी लिखते हैं, लिखने से दिल का आधा बोझ हल्का हो जाता है। जी हाँ, ये सच में बिल्कुल आपने सही लिखा है। अक्सर कई बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे दिल में होती हैं लेकिन हम बयां नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अपनी बात को साझा करें किसी से, मगर विश्वास नहीं होता, या तो फिर हमें लगता है कि सामने वाला हमें समझेगा नहीं। और कभी कभी यह हमारी गलत फहमी भी होती है, हो सकता है सामने वाला हमें समझ भी ले, तो बयां भी कर सकते हैं। और यदि आप बयां नहीं कर पा रहे हैं तो उसे कहीं उतार लें, कहीं लिख लें, मन पर ना उतारें किसी भी किसी की बात जो आपके दिल को ठेस पहुंचाए। तो ऐसी किसी बात को मन पर लिख

बाहर गए हैं, कोई अच्छी बात पसंद आए किसी की, तो मैं उसे झट से शॉर्ट में लिख लेती थी ताकि बाद में उसे विस्तार से उस पर विचार लिखे जा सके। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। डायरी आपके पास ना हो लेकिन फोन पर नोटपैड तो आपके पास होता ही है, तो उसमें कहीं नोट करके लिख लें ताकि जब आप लिखने बैठें तो उन शब्दों से आपको वो विचार फिर से याद आ जाए और आप उसे अच्छे से लिख सकें। तो अगर ये टिप काम आ जाए तो ट्राई करके देखिएगा। और अब फिलहाल आपको सुनवाते हैं बाबुल फिल्म का गीत, तलत महमूद की आवाज, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद अली का संगीत।

जी हाँ, तो शब्द था मिटाना, कई साथियों ने बिल्कुल सही पहचाना। अरे वाह, ये तो तुकबंदी बन गई। चलिए आगे, एक साथी ने लिखा है, पेंसिल की असंख्य गलतियां माफ है, उसे रबर से मिटाया जा सकता है, परंतु कलम पर बोझ बहुत है क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं, उससे जो लिख दिया गया तो उसे मिटाया नहीं जा सकता, अतः कलम का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। किसी ने लिखा है, कई महान क्रांतियों की शुरुआत भड़काऊ नारों से नहीं बल्कि शक्तिशाली लेखों और किताबों से हुई थी। मजबूत लेख और दस्तावेज सरकारों को नीतियां बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कलम विचारों को दूर दूर तक पहुंचाती है, जिससे लोगों की सोच बदलती है। जी हाँ, सोच को बदलने के लिए कलम बहुत बड़ा काम करती है। तो आइए इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम पाकीज़ा, लता मंगेशकर की आवाज, कैफ भोपाली ने इसे लिखा है, गुलाम मोहम्मद।

जी हाँ, शब्द था असर, आप लोगों ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है, मैं कक्षा दसवीं में था जब मुझे एक प्रेम पत्र लिखना था। जब मैं कागज कलम उठाई तो दिमाग और दिल इतना धड़क रहा था कि क्या क्या लिखूं, लेकिन एक पीरियड में मैंने अपने दिलों दिमाग की सारी बातें कागज पर उतार दी। मन इतना तरोताजा हो गया कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं रही और फिर मैंने उसे भेज दिया। अब ये तो अधूरी कहानी हुई, आगे तो बताइए क्या हुआ, क्योंकि अभी क्या स्थिति है और आगे क्या हुआ ये भी तो आपको बताना चाहिए, वरना हमारे साथी कैसे समझेंगे इस अधूरी लिखी कहानी से। तो इसे पूरा कीजिए और तब तक सुनिए ये अगला गीत, फिल्म का नाम नया दौर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

किसी साथी ने लिखा है, मैडम जी सॉरी टू से जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अब तो पेन कलम का लिखा भी मिटा सकते हैं, वाइटनर है, करेक्शन पेन जो उपलब्ध हैं, तो अभी के लिए वंस अगेन सॉरी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगी, करेक्टर जो करेक्शन करने के लिए वाइटनर आता है या फिर जो एडिट किया जा सकता है, उससे आप कहीं कहीं कागज़ पर या फिर सोशल मीडिया पर लिखा हुआ एडिट या वाइटनर लगाकर उसे मिटा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बात किसी के मन पे लग जाए तब उसे आप कभी नहीं मिटा पाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपनी कलम का इस्तेमाल बहुत ध्यान से सोच समझ कर करिए। इसी के साथ आज की इस सुरीला सफ़र कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं राघव चैतन्य की आवाज में फिल्म थप्पड़ से।

अनुराग सैकिया का संगीत शकील आजमी और सना मोहिद्दीन के लिखे बोल राघव चैतन्य की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म थप्पड़ से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म लूडो से, आवाज है अरिजीत सिंह की।

जाएंगी। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल 3 अगस्त को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती से शुरू होगी, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। इसके लिए 20 काउंटिंग टेबल बनाई गई है और करीब 350 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मीडिया के लिए भी अलग से मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहाँ मतगणना की ताजा जानकारी उपलब्ध होगी। प्रदेश में इस साल उच्च शिक्षा में दाखिले का नया रिकॉर्ड बना है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अब तक 5,24,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने कॉलेजों में प्रवेश लिया है। यह पिछले साल की तुलना में करीब 66,000 अधिक है। विभाग ने बताया कि ऑनलाइन ई प्रवेश व्यवस्था, दस्तावेजों के त्वरित सत्यापन और कॉलेजों में हेल्प डेस्क जैसी सुविधाओं से प्रवेश प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में देवास जिले में खेती को और आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनकी आय बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग व बागवानी जैसी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यों को करों के हिस्से की अतिरिक्त किस्त जारी करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के तहत प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि से प्रदेश के विकास कार्यों और जन कल्याण योजनाओं को और गति मिलेगी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद भी किया। अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर हल्का रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि 4 और 5 अगस्त से मॉनसून फिर सक्रिय होगा। इसके बाद प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने 4 अगस्त को छतरपुर, पन्ना, सतना, सीधी और शहडोल समेत कई जिलों में, जबकि 5 अगस्त को रीवा, मऊगंज, टीकमगढ़ और निवाड़ी सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार के जन्मदिन के अवसर पर जिले में खंडवा का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 2 से 4 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी में गड़बड़ी रोकने के लिए कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी वेयर हाउस से मूंग की निकासी अब केवल SDM की लिखित अनुमति से ही हो सकेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के

साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास

0: हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
0: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
0: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाएं नहीं।
0: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाएं नहीं। जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए, ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
1: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज़ ऑन AIR और हमारे

0: में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी ओडिशा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए गए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरल, माही, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार

0: को पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
1: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहु खेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्र ध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए आगाज करते हैं श्री 420 इस फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र की शब्द रचना है और शंकर जयकिशन की धुन।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नया दौर फिल्म से गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिर लुधियानवी ने सिलखा था ओपी नैयर का संगीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं जश्न फिल्म का ये गीत, स्वर आशा भोसले का, आर कृष्ण ने इसे लिखा है और रोशन का संगीत।

पेइंग गेस्ट। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर, सॉरी क्षमा कीजिए, आशा भोसले की आवाजों में। मजरूह सुल्तान

लहर लोडनिया लहके मृदंग ठनका छत छत छत छत नागिन ते ते सगन नदादा किट छत छत छत सगन सच सच सगन का सगन का किट सच सच सच सगन का जी सगन नदा ताधा किट सच सगन का ताधा सगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: तुम सा नहीं देखा।
1: इस गीत के साथ ही अब सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत,
0: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हाजिर हूँ नेहा आगर कर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में आज मैं पहली बार खतों को लेकर बैठी हूँ यहाँ पर आप लोगों से जुड़ने के लिए, आपके नामों के द्वारा, आपके खतों के द्वारा। तो कार्यक्रम का आगाज करेंगे, पहले सुनिए ये छोटा सा संदेश।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

फिर नियम और शर्तें तो आपने सुन ही ली, तो आगाज करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। आज आपको मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए पहले देखते हैं किसका खत शामिल किया जा रहा है। ये जो लिखा है खत हमें, ये लिखा है जालंधर पंजाब से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। तो आपको सुनवा रहे हैं इनकी पसंद पर डोली फिल्म का गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। और इसी गीत को ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से सुनना चाहा है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया ने। तो आइए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं रजिंदर कृष्ण का लिखा ये गीत।

ये पहला गीत था आप लोगों की फरमाइश पर. चलिए, जिन्होंने पसंद किया है उनके नाम है शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि पाटिल, सृष्टि पाटिल और समस्त परिवार. शिंदे चौक दक्षिण कस्बा सोलापुर महाराष्ट्र से इन्होंने फरमाइश की है. साथ ही इस गीत को सुनना पसंद किया है गांव कोटड़ा बहादुर से, यानी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से, तूफान दांगी, मिस्टीना दांगी और लक्ष्य बाबू ने. ये गीत है फिल्म यारा दिलदारा से. उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, जतिन ललित का संगीत.

मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दर्द फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की। नक्श लायल पुरी ने इसे लिखा है, खयाम का संगीत। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी और मिसेस कीर्ति सोलंकी ने। इस गीत को सुनना पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

और लीजिए अब आपको सुनवा देते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आवारा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और शंकर जयकिशन का संगीत है। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है अब्दुल फादर खत्री, शिरीन बानो खत्री, अब्दुल अजीज खत्री और अफीयत खत्री ने। इसी के साथ इस गीत को सुनना पसंद किया है कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। तो चलिए इन सभी की फरमाइश पर सुना जाए ये गीत।

0: अपना देश इस फिल्म से गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इस गाने की फरमाइश हमें तेलंगाना से भेजी मोहम्मद बुरहानुद्दीन फजान लल्ला फरहान लल्ला समायरा अजमीन गुड़िया ने, और इस गीत को सुनना पसंद किया जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा देवेंद्र सिंह फूल वाले ने। और आज का ये जो हमारा सफ़र था मनचाहे गीत का, ये अब यहीं पर संपन्न होता है। आपके खतों का इंतज़ार हमें ज़रूर रहेगा, तो अपने खत भेजते रहिए और हमसे जुड़े रहिए इन खतों के ज़रिए। और आज ये कार्यक्रम मैंने पहली बार पेश किया है, तो यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। दिल में कोई बात ना रखें, अपनों से हमेशा अपने दिल की बातें साझा करते रहें तो दिल हल्का रहेगा। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम से, नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने नाटक तोहफा। दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी दिन अंग्रेजी हुकूमत के कैदखाने में बिताए थे। मुगलिया सल्तनत के इस आखिरी चराग को उसके अपने घर की हवाओं ने गुल किया, लेकिन अंग्रेजी कमांडर ने जो तोहफा दिया वो बादशाह तो क्या, पत्थर का कलेजा हिलाने के भी काबिल था। आइए इसी वाकये पर आधारित ये ड्रामा सुनिए, तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर, रूपांतर जोहरा मिर्जा और निर्देशक हैं लोकेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए नाटक तोहफा।

0: पहरेदारों पर भी यकीन करने के लिए अक्ल इजाजत नहीं दे रही है।
1: तो फिर इंतजार किसका है? जितना जल्द हो सके इस जगह को खैराबाद करें। पता नहीं क्यों कुछ अजीब सी घुटन महसूस कर रहे हैं हम।
0: हमने चंद लम्हों के लिए यहाँ कयाम किया है अलीजा।
1: क्या कह रहे हैं बख्त खान?
0: ये नक्शा अपने साथ लेकर आया हूँ, मुलाहिजा फरमाएं और हुक्म करें। हम अब अलीगढ़ के रास्ते की तरफ नहीं जा सकते। फिरंगियों ने वो रास्ता बंद कर रखा है।
1: ठीक है, हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं। आगरे से पूरब होकर चंबल के बीहड़ों में जाएं, या भरतपुर के रास्ते मेवाड़ की तरफ।
0: मेरे ख्याल में मेवाड़ की तरफ जाना हमारे लिए ज्यादा मुफीद होगा।
1: आपको यकीन है भरतपुर हमारी मदद करेगा?
0: एलची रवाना कर दिया है आलीजा, भरतपुर से अनकरीब यहाँ पहुँचने ही वाला होगा।
1: ना बदौलत को अपने सिपह सालार पे यकीन कामिल है। आप जो भी चाहें करें, लेकिन जल्द से जल्द करें।
0: बस मेरे शाह, मैं आनन फानन गया और सारा बंदोबस्त करके आनन फानन हाजिर होता हूँ।

0: दादाजान।
1: दादाजान की जान, आओ आओ, बोलो बेटे रुखसाना।
0: अब आप ही फैसला फरमाएं।
1: किस बात का फैसला बेटे?
0: हम दादी जान से बार बार कहते हैं।
1: क्या?
0: कि हमें चांदनी चौक हवाखोरी के लिए भेजिए, मगर वो सुनते ही नहीं है।
1: अभी तो शब है बेटे, और रात के वक्त सैर को नहीं जाया करते।
0: लीजिए, दादी जान भी आ गई।
2: मेरे सरताज, इसे किसी तरह से समझाइए।
1: कह तो रहा हूँ मेरे बेटे, हम सुबह सैर करने चलेंगे और फिर
0: आगे फरमाइए ना, खामोश क्यों हो गए आप?
1: हम क्या कह रहे थे?
0: हम जानते थे यही होगा, आप बहुत सी बातें भूल जाते हैं। दादा जान, क्या रात भर हम यही रहेंगे?
1: हाँ बेटे, हम यही रहेंगे।
0: हमारी सारी कनीजें कहाँ गई?
1: अपने अपने घर।
0: मगर क्यों?
1: अल्लाह का ऐसा ही हुक्म है बेटे।
0: अल्लाह ऐसा हुक्म क्यों देते हैं? हमें यहाँ गर्मी लगती है, कोई हमें पंखा झलने वाला भी नहीं है।
1: कोई बात नहीं, आपकी दादी जान आपको पंखा झल देंगी।
0: हमें कपड़े कौन पहनाएगा?
1: दादी जान।
0: खाना कौन खिलाएगा?
1: दादी जान।
0: दादा जान।
1: हाँ।
0: दादी जान क्या कोई फरिश्ता है जो सारे के सारे काम अंजाम फरमाएंगी?
1: चलो थोड़े बहुत आपके काम हम भी कर देंगे बेटे।
0: आप? दादा जान।
1: हाँ।
0: आप?
1: क्यों, हम नहीं कर सकते क्या?
0: दादा जान।
1: हाँ।
0: आपको तो हुक्के के लिए, खासदान के लिए, उगालदान के लिए, पापोश पिन्हाने के लिए अलग अलग खादिम चाहिए, और आप?
1: बेटे रुखसाना, ये वक्त बड़ी जालिम शय होता है, ये किसी से कुछ भी करवा लेता है बेटा।
0: खैर दादा जान, इस सिलसिले को यही खत्म करें।
1: हाँ।
0: और फिलहाल हमें कोई किस्सा सुनाएं।
1: बहुत खूब बहुत खूब, हम आपको किस्सा सुनाते हैं। एक था बादशाह, घोड़े पे सवार, हाथ में चमकती हुई तलवार। वो
0: जिधर से गुजरता था जलजला सा आ जाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया। दादा जान, ये किस्सा इतनी बार आपने सुनाया है कि बिल्कुल हिफ्ज हो गया है। दादा जान, ये घिसे पिटे किस्से आप अपने पास ही रहने दें, मैं अम्मी।
1: खतरनाक खूंखार तूफान, सियाह आंधियों के थपेड़ों ने सब कुछ तितर बितर कर दिया।
2: मेरे सरताज, किस्सा किसे सुना रहे हैं?

0: रुखसाना तो कब के यहां से जा चुकी है।
1: रुखसाना चली गई। मलिका, आपकी आवाज इस कदर गमजदा क्यों हो रही है?
0: यूं महसूस होने लगा है जैसे कुदरत की सारी नियामतें वीरान हुई जा रही हों। चमना का पानी बदरंग और सियाह लगने लगा है।
1: मलिका ए आलिया, कभी जमुना के बारे में ऐसे अल्फाज भूल से भी अपने लब पे न लाएं। पानी तो दुनिया के हर दरिया में बहता है, लेकिन दरियाए गंगा और जमुना में आबे हयात बहता है। जमुना कभी भी बदरंग और बदमजा नहीं हो सकती।
0: संग तराशों के फन को शाही रुतबे ताज खिलत से नवाजने वाले सल्तनत मुगलिया के चश्म चराग शहंशाह शाहजहां ने इसी जमुना के रास्ते लाल किले में अपने कदम रंजा फरमाए थे।
1: हाँ मलिका आलिया, हम उन्हें शहंशाह शाहजहां के वारिस हैं जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े आलिमों और हुनरमंदों को एक झांकर लाल किला तामीर करवाया और जमुना के रास्ते किले में तशरीफ लाए। और एक ये बदनसीब जफर रात के अंधेरे में उसी लाल किले को दुश्मनों के नरगे में उनके रहमो करम पे छोड़ के पीछे के दरवाजे से उसी जमुना के रास्ते से भागकर इस वीरान अंधेरे मकबरे में पनाह ले रहा है।
0: मेरे सरताज, ये मकबरा उन्हीं खुशबख्त शहंशाह हुमायूं का है जो अपने दुश्मनों से शिकस्त खाने के बाद दोबारा सल्तनत हासिल करके तख्त नशीन हुए थे।
1: हाँ मलिका आलिया, पत्थर की इन दीवारों से जब कभी हाथ मस हो जाता है तो सारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूं महसूस होता है जैसे कोई बुजुर्ग पुरुष थपथपा के कह रहा हो, हमने हिंदुस्तान में रहकर ऐसी ऐसी नायाब चीजें हासिल की जो शायद फरिश्तों को भी नहीं मयसर। उन्हीं में से बेश कीमत चीज है जज्बे हुब्बुल वतनी। मुल्क पर कुर्बान हो जाने का जुनून ही तो है कि आज भी हमारी झुकी कमर में फौलाद सी सख्ती और खुलती बंद होती आंखों में आफताब के शोले दहकते रहते हैं।
0: मेरे सरताज, ऐसा लग रहा है जैसे अनजानी ताकत ने हमें अपने हाथों को खिलौना समझ लिया हो।
1: उम्र का लंबा हिस्सा हमने गुलाबों और इत्र अंबर की महक में डूबे भावों में गुजार दिया। ये तो पाक परवरदिगार का मौजिजा है कि इस ढलती उम्र में सल्तनत मुगलिया की शान और शौकत बरकरार रखते हुए अपनी मादर वतन पर कुर्बान होने का मौका अता फरमा रहा है।
0: कोई आ रहा है।
1: आप पर्दे में हो जाएं।
2: आलीजा,
1: क्या खबर लाए बख्त खान?
2: आलीजा, सारी दिल्ली पर फिरंगियों ने कब्जा कर लिया है। लाल किला अंग्रेजी फौज की गिरफ्त पहुंच चुका है। आलीजा,
1: हमारी गलत आदतों का अंजाम यही होना था बख्त खान। अफसोस, हमारी आंखें कैसा मंजर देख रही हैं। हम शिकस्त खुर्दा लाचार, फिरंगी के पास फतेह के अंबार।
2: आलीजा, हमारी ये भी बदनसीबी है कि ऐसे नाजुक वक्त पर भी हम मुगल, पठान, मराठा और राजपूतों में बट के रह गए हैं।
1: हमने सुना था वक्त खान, बुरा वक्त और मुश्किलें इंसान को एक कर देती हैं, लेकिन नहीं, तकदीर में फिरंगियों के हाथों हमें तबाह ताराज होना ही लिखा है। हमें शिकस्त का ही मुंह देखना होगा शायद।
2: हर किस नहीं आलीजा, हरगिज नहीं। इस सरजमीन को हमारे आबाओ अजदाद ने अपने खून से सींचा है। हम अपनी मादर वतन को फिरंगियों की चारागाह बनने नहीं देंगे। जंगल बियाबानों पहाड़ों की गुफाओं में पनाह लेंगे और इन नाहंजारों के साथ जंग जारी रखेंगे।
1: बख्त खान, इस शाह की उम्र 80 बरस की होने को आई, शेर व शायरी लिखने वाले इन हाथों में कुव्वत कहाँ कि खौफनाक तूफान को रोक सकें। बस एक शाही मोहर, एक कोरा दस्तावेज है हम।
2: शाही मोहर की वक्त आज भी कम नहीं हुई है आलीजा। आप जहां कयाम फरमाएंगे हिंदुस्तान की बादशाहत वहीं रहेगी।
1: तारीख बताती है कि मुगलों ने हिंदुस्तान की सरजमीन को फतेह किया, मगर हक यह है कि हिंदुस्तान ने मुगलों को जीता। शहनशाह बाबर ने जिस दिन जमुना का आप पिया, उस दिन अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध भूल गए। हिंदुस्तान की मिट्टी उनकी वालिदा बन गई।
2: बजा फरमा रहे हैं आलीजा, इस मादर वतन की इज्जत को दिन दूनी रात चौगनी करने में कोई दकीका उठा नहीं रखा। ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतें तामीर करवाई, शालीमार और निशात बागात लगवाए, मंदिरों के घंटों और मस्जिदों की अजानों को एक जैसा एहतराम करने की कोशिशें की, गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद डाली।
1: खरीसी तहजीब और तमद्दुन इत्तहाद को तहस नहस कर देना चाहता है ये फिरंगी। हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना चाहता है ये फिरंगी। लेकिन जब तक एक भी हिंदुस्तानी जिंदा है, उसकी तलवार फिरंगी के खिलाफ उठी रहेगी।
2: आलीजा, यहां से कूच की तैयारी हो चुकी है। आप मलका आलिया को मुत्तला फरमा दें, मैं पालकी दरवाजे पर लगवा कर अभी हाजिर खिदमत होता हूं।

0: कौन लौटाए बख्त खां?
1: जी नहीं, इलाही बख्श आली जहां की खिदमत में कोर्निश बजा लाता है।
0: अरे कहां की बादशाहत, कहां के आली जा, मकबरे में पनाह लेने वाला आली जा कैसे हो सकता है?
1: ऐसा ना फरमाए, सरकार तो आज भी हिंदुस्तान के शहंशाह हैं।
0: हाँ, एक ज़ईफ बेकसो लाचार शिकस्त खुर्दा शाह जो अपने अज्जा के महलों से रात की तारीकी में भाग निकला और अब जंगल बियाबानों में भटकने जा रहा है।
1: ये क्या फरमा रहे हैं मेरे सरकार?
0: हाँ इलाही बख्श, बख्त खान ने सारा बंदोबस्त कर लिया है, हम भेष बदल कर निकल रहे हैं। अब हमारा कयाम यहां मुनासिब नहीं। सुना है लाल किले पर फिरंगी कब्जा कर चुके हैं।
1: बजा फरमाया, मैं आपको तलाश करता हुआ कुछ अर्ज करने हाजिर हुआ हूं। आप हमारे शाह ही नहीं, अजीज भी हैं, और ये मेरा फर्ज है कि सही वक्त पर सही सलाह देना।
0: क्या सलाह देना चाहते हैं आप?
1: आप भागने के बजाय गोरों की फतह कबूल फरमा लें।
0: इलाही बख्श, आप समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं?
1: अच्छी तरह से आलीजा, चमकते सूरज को सूरज कहना गुनाह नहीं है। फिरंगी फतह याब हुए हैं और हमारे हिस्से में शिकस्त आई है, हमें कबूल कर लेना चाहिए।
0: आप चाहते हैं हिंदुस्तान के ताज तख्त को फिरंगियों के कदमों के सुपुर्द कर दूं?
1: फिरंगी आपके इंतजार में नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपनी अक्ल और शुजात से हिंदुस्तान का ताज तख्त हासिल कर लिया है। हमारी अक्लमंदी इसी में है कि गोरों की मातहती कबूल कर लें और ठाट से पेंशन लेकर चैन की जिंदगी गुजारें।
0: ए पाक परवरदिगार, तमाम आलम में अपना इकबाल बुलंद रखने वाला सल्तनत मुगलिया का शाह जफर फिरंगियों के दिए हुए रद्द मजालिम खैरात पर बाकी की उम्र गुजारेगा।
1: अस्ताखी माफ हो आलीजा, आप भाग कर जाएंगे भी किधर? मुल्क पर गोरों का कब्जा हो चुका है, अपने बेकसूर बच्चों और मलिकाए आलिया के बारे में तो तसव्वुर फरमाए।
0: क्या फिरंगी हमें इज्जत बख्शेंगे?
2: आलीजा, क्या सुन रहे हैं मेरे कान? तशरीफ ले चले, सवारी तैयार है।
3: बख्त खान, आलीजा ने बियाबानों पहाड़ों में भटकने के बजाय फिरंगी की हुकूमत कबूल फरमाई है। इनकी जानो माल और इज्जत की जिम्मेदारी मैंने ली है।
2: मक्कार गद्दार फरेबी इलाही बख्श, तुम यहां तक गिरोगे मैंने सोचा भी ना था।
3: बख्त खां, जबान को लगाम दो,

0: तलवार म्यान में रहने दो, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वरना इसके पानी से तारुफ करा देता। आली जा, लम्हा भर भी यहाँ ठहरना हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
1: बादशाह, हम बहुत थक गए हैं, टूट चुके हैं। हमारे अज्जा ने फिरंगी का लोहा मान लिया है। एक अकेला बख्त खां और ये ज़ईफ बादशाह जफर।
0: सरकार, देर न फरमाए, तशरीफ ले चले।
2: बख्त खां, बादशाह तनहा नहीं है, अहलो आयाल के बारे में भी सोचना हमारा फर्ज है।
0: मेरे सरकार, एक एक लम्हा कीमती है।
1: बख्त खां, हमें मलिका आलिया और अपने फर्जंदगान से मशवरा कर लेने दो।
0: सरकार, क्या ये आखिरी फैसला है?
2: बख्त खां, तुम सिर्फ एक सिपहसालार हो, हदें तोड़ने की कोशिश ना करो।
0: आप खामोश हैं अलीजा। इलाही बख्श, तुम जीत गए। आप निकला इलाही बख्श, थूकता हूं तुझ पर। मैं जमुना में नाव पर आली जा आपकी राह देख रहा हूं।
1: अक्ल काम नहीं कर रही, लगता है रेतीले मैदान में हम खोए जा रहे हैं।
2: नहीं नहीं आली जा, हम सही रास्ते पर हैं।
1: ये कैसा शोर है? ये कैसा शोर है इलाही बख्श?
2: वो आ गए।
1: तुम हंस रहे हो? कौन आ गए?
2: फिरंगी, मैं देखता हूँ।
1: मलिका आलिया,
3: मेरे सरताज,
1: हम आखिरी दाव हार गए। फिरंगी ने हमें घेर लिया है।
3: बख्श खान को बुलवाएं।
4: बक्त कैन, बक्त कैन गुजरा वक्त हो गया, उसी वो अब नहीं आएगा। बादशाह की खिदमत में हटसन आया है।
1: मलिका, आप पर्दे में तशरीफ ले जाए। इलाही बख्श कहाँ है? उसने हमसे कहा था।
4: वो हमारा खास आदमी, तुम्हारा एड्रेस पता वही दिया, तुमको भागने से उसी ने रोका।
1: मक्कार, इलाही बख्श,
4: चीखने से क्या फायदा? तुम हमारा कैदी, प्रिजनर। इलाही बख्श पाएगा इनाम और तुमको मिलेगा सजा।
1: किस जुर्म की सजा मिलेगी हमें? इलाही बख्श ने तो कहा था।
4: What did he say?
1: अंग्रेज हमारी इज्जत करेगा।
4: इज्जत, मर्डर का इज्जत। तुमने, तुम्हारा फौज ने अंग्रेजों को मारा है।
1: हमने उन लुटेरों को मारा जो हमारा मुल्क लूटकर हमारी आजादी कुचल देना चाहते थे।
4: बागी का मिजाज अभी तक ठीक नहीं हुआ। Do you know, बादशाह? तुम जानता है, मौत का बदला मौत होता है। अंग्रेज सात समंदर पार करके हिंदुस्तान आया और तुमने उसको मारा। हम भी तुमको तुम्हारी कंट्री से, तुम्हारे वतन से दूर ले जाकर मारेगा।
1: हमें मौत से न डराओ फिरंगी, हम वतन परस्तों के लिए मौत एक महबूब होती है। दुआएं दो गद्दार इलाही बख्श को,

0: के साथ ही आया है। सोल्जर अल्बर्ट बादशाह की खिदमत में तोहफा गिफ्ट पेश करो। बादशाह हम बाहर जाता है, तुम अपना बेगम के साथ तोहफा कबूल करो।
1: या रब्बुल आलमीन, ये क्या हो रहा है, क्या रख गया है ये फरंगी इस तख्त में।
2: मलिका, यकीनन ये शाह जफर के साथ कुदरत का कोई खौफनाक मजाक है। तश्त से खनपोश तो हटाए। अच्छा हुआ आप बेहोश हो गई। हम अकेले इस गम को सहेंगे। हमारे कलेजे के टुकड़े फर्जंद मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान के सर कलम करके बतौर तोहफा फिरंगियों ने हमें भेजा है। तो जहां के मालिक तू ही फैसला कर कि हमारे लख्त जिगरों के सर हैं या हिंदुस्तान की आजादी के कटे हुए गले। मेरे बच्चों, गमों से चूर ज़ईफ बेबस बेकस ये बाप तुम पर फातिहा पढ़ने के बजाय ये ऐलान करता है कि हिंदुस्तान फिरंगी से इस वैश्याना बेरहमी का बदला लेगा। जरूर लेगा, जरूर लेगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं

0: तोहफा, अभी आपने ये नाटक सुना। मूल कहानी मधुकर गंगाधर की थी और रूपांतर जोहरा मिर्जा का। नाटक निर्माण में सहायिका थी चित्रलेखा जैन। तकनीकी सहायता विनायक तडवलकर ने प्रदान की। निर्देशक थे लोकेंद्र शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम भूमिकाओं सहित इस प्रकार हैं: बेगम जीनत महल, बिरजिस दोस्त, रुखसाना शहनाज अख्तरी, इलाही बख्श कमल शर्मा, बख्त खां क्यू एन कश्मीरी, हडसन किशोर कपूर और बहादुर शाह जफर विनोद शर्मा। नाटक तोहफा विविध भारती के मुंबई स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
4: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
4: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कॉमिक क्रिएटर है।
5: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुना।

0: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज की मेहमान।
0: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये है विविध भारती, उजाले उनकी यादों के। उजाले

0: निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की दूसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का तीसरा भाग।
1: ये तो स्पर्श की बातें हुई, हालांकि स्पर्श के बारे में इतनी सारी बातें हैं और वो आपने अपनी आत्मकथा में बहुत विस्तार से लिखी हैं, पर इंटरव्यू में हम चूंकि संक्षिप्त बात कर रहे हैं तो हमने स्पर्श की तमाम बातों को स्पर्श किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहा है एक छोटी सी चीज और करते हैं, फिर चश्मे बद्दूर की तरफ बढ़ते हैं।
2: ओके।
1: स्पर्श का स्मिता कनेक्शन थोड़ी सी बुरी बात
2: फिर है। मायूस किस्सा है, बताती हूँ
1: जी,
2: बताती हूँ। ये जब मैं दिल्ली छोड़कर और अपनी नौकरी छोड़कर और अपनी क्या कहते हैं टेडी जिंदगी छोड़कर मैं एक स्ट्रगलर के रूप में बंबई में हाजिर हो गई फिल्म, क्योंकि फिल्म बनानी थी, अब नजरों के सामने वही था और फिल्म की राजधानी बंबई, तो बंबई आना लाजमी था, तो बंबई पहुंच गई और इत्तफाकन मुझे बहुत अच्छा ये मिला। वहाँ दामू जवेरी नाम के बहुत बड़े गुजराती थिएटर के जाने माने वंडरफुल पर्सन, तो दामू भाई ने मुझे बिकट वाट वही वाट ये म्यूजिकल नाटक डायरेक्ट करने का ये सौंपा मुझ पर। हाँ, दैट वाज फिडलर ऑन द रूफ का वेंकटेश माडगुलकर ने किया मराठी अनुवाद। तो एनीवे वो मैं कर रही थी, लेकिन उसके पहले बम्बई पहुंचते ही अब नाटक तो करना ही था, नाटककार थे तो, और तब स्मिता मिल गई और ओमपुरी मिल गया।
1: वाह।
2: और ओमपुरी तो बहुत ही स्ट्रगलर था उन दिनों, मतलब कुछ भी डेला भी उसने नहीं कुछ तब तक किया था, और स्मिता का नाम जरा जरा हो रहा था क्योंकि टेलीविजन में वो निवेदिका थी वगैरह वगैरह, और शायद शाम के साथ एक आध फिल्म शुरू हुई, लेकिन स्मिता का जरा सा नाम हो रहा था, ओमपुरी का नहीं था, मेरा भी नहीं था बम्बई में। हम तीनों ने मिलकर सोचा कि कुछ थिएटर किया जाए, और मेरे पास महेश एलकुंसवार का बहुत बेहतरीन नाटक था वासना कांड, जो मैंने दिल्ली में खेला था, कुसुम हैदर ने रोल किया था उसमें, लाजवाब रोल किया था बहुत, और वो प्रोडक्शन भी खुद नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन हुआ हमारा, और लोग दंग रह गए, बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं कि निस्तब्ध हो गए शो देखने के बाद, ऐसा सन्नाटा सा हुआ ऐसे, इट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। तो एनीवे मैंने कहा कि मुंबई में ये करते हैं, और एनसीपीए के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में हमने ये नाटक किया। अब मेरे इतने साल हो गए इन तीनों चारों फील्ड्स में काम करते, टेलीविजन, स्टेज, थिएटर, फिल्म, रेडियो, लेकिन व्यवहार किस चीज सिखाते हैं ये अभी तक मुझे नहीं समझ में आया
1: जी।
2: इसको भी मैं मेरे नाना को और मेरी माँ को मैं दोष देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुझ पर इतना वो किया कि ये बहुत पैसे के बारे में सोचना बहुत बुरी बात है, तुम अपना काम करो, काम में आनंद लो, काम में मजा लो, लोगों को देखो, लोगों को समझो, लोगों से प्यार करो वगैरह, पैसा क्या चीज है। और कभी उन्होंने मेरी तनख्वाह कितनी है उनको नहीं मालूम था आखिर तक, कितना माँ ने पूछा ना नाना ने कभी भी पूछा कि कितने पैसे, मतलब पैसों की बात ही नहीं होती थी, और मैं अनाड़ी के अनाड़ी रह गई। तो मुझे लगता था काम चलाने लायक कुछ मिले तो ठीक है, गुजारा हो जाएगा, लेकिन इस नाटक के लिए पैसा तो चाहिए ना स्टेज करने के लिए, तो वो कुछ ढेला भी नहीं था किसी के भी पास, ओम तो स्ट्रगलर, स्मिता बिचारी नहीं नहीं आई हुई, फिर हमने किसी तरह इधर उधर जुगाड़ करके पता नहीं कैसे किया, लेकिन वो नाटक हमने किया। और उस दरमियान मेरी स्मिता से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई, और उसकी एक वजह ये थी कि हम दोनों को बिल्लियां बेहद पसंद, स्मिता अपनी बिल्लियों के बारे में बताए, मैं अपनी बिल्लियों के बारे में, और ओम सुनता रहा सुनता रहे, तो हम बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए। फिर मैंने स्मिता को बताया, और ये तो मेरे पास था ही पटकथा इसकी थी, मैंने कहा स्मिता ऐसे ऐसे कहानी है मैंने लिखी हुई, एंड देयर इज अ लवली रोल फॉर यू एंड आई वुड लव यू टू रीड दैट पटकथा। तो स्मिता ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, पढ़ूंगी ना, हाँ, और बात वहां तक रह गई। फिर चार पांच दिन बाद मैंने फिर कहा स्मिता तुम पढ़ोगी ना, हाँ हाँ पढ़ूंगी, और फिर मुझे ऐसे लगा कि ये आउट ऑफ पोलाइटनेस ये हां हां कर रही है उसको कोई सचमुच की दिलचस्पी नहीं है इसमें और वो बेचारी इतनी शरीफ है कि वो मुझे नहीं कहना चाहती कि तू क्या लिखेगी मुझे नहीं पढ़नी तुम्हारी कहानी वगैरह तो ये तो कहेगी नहीं और थी वो थोड़ी सी अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि शायद ये ऐसा तो नहीं समझ रही कि हमारी दोस्ती का मैं नाजायज फायदा उठा रही हूं क्योंकि हमारी दोस्ती है मैं अपनी फिल्म के लिए उसको मैं गले में डाल रही हूं ऐसा तो नहीं होना चाहिए बिकॉज़ I had my own self-respect, naturally. मैंने कहा उसको ये नहीं लगना चाहिए, ये गलत होगा। फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं, let's wait. उसको अब पूछने दो, दो-तीन बार तो मैंने जिक्र किया है, अब उसको पूछने दो कि सही अगर है कहाँ, कमबख्त तेरी फिल्म पढ़ने तो दो। वो कुछ नहीं, एक नहीं, दो नहीं, स्मिता से कुछ भी पूछताछ नहीं हुई और फिर मैं मन में समझ गई कि इसको इंटरेस्ट नहीं है और तब तक ये नसीर की बात हुई थी शबाना की बात हुई थी और शबाना को जब कहा तो शबाना ने ये 4 फुट ऊंची छलांग लगाई हाय मुझे एक जप्पी मारी का सही फैंटास्टिक ओ यस यस वाओ मतलब बिल्कुल उल्टा जो एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट तो शबाना ने इतना मुझे मतलब मैं तो आसमान में जाना बाकी था खुशी से इतना शबाना ने उसमें कहा दिलचस्पी तो फिर शबाना तय हो गई और फिर धीरे धीरे इधर से सुनाई देने लगा कि स्मिता नाराज है स्मिता ने कहा कि सई ने तो मुझसे बात की थी मैंने कहा बात तो सच है मैंने बात की थी लेकिन उसने आगे नहीं ना बात कुछ की तो मैं अकेली कब तक बात करती रही लेकिन उससे मेरी बात नहीं हुई फिर एक पार्टी में पूना में वो मुझे अच्छी तरह याद चाय पार्टी और सुभाष औसट करके हमारे कॉमन दोस्त थे स्मिता के बड़े जो चित्रकार हैं खुद सुभाष के घर पार्टी थी तो स्मिता थी इतने दोनों बात स्मिता तो मैंने कहा चलो आज मैं बात करूंगी इससे तो मैं पास गई मैंने कहा स्मिता नाराज हो तो उसने मुझे बड़ी ठंडी निगाह से देखा उसने कहा हाँ और पीठ And that was it. That was the last conversation we had. फिर कभी हमारी ना मुलाकात हुई ना बातचीत हुई ना मैं उसे समझा पाई कि क्यों ऐसा मैंने नहीं पूछा मेरी अपनी तरफ से कुछ मैं अपनी ये करती ना तरफदारी तो वो नहीं करने को मिली और वो चल बसी और मुझे ये आज तक बहुत अफसोस होता है कि ये बड़ी ज्यादती हुई
1: बिल्कुल ये थोड़ी दुखद बात है स्मिता की याद में एक गाना सुनते हैं और एक ऐसी फिल्म का जिसमें स्मिता और शबाना दोनों साथ में थे
2: अच्छा अच्छा
1: महेश भट्ट की फिल्म अर्थ
2: हाँ हाँ अरे वाह
1: है ना सुनते
3: झुके

0: हाँ उसको लिया और naturally at that time दीप्ति was dying to make a good film. सेम विथ फारूक सेम विथ रवि ने तो कुछ भी नहीं किया था. मेरे कहने पर रवि को ले लिया, सिर्फ मेरे कहने पर. मैंने कहा नहीं नहीं इसको तो लेने. कुछ दो तीन लोगों के लिए मैं अड़ गई थी. एक वो रवि बासवानी था और दूसरी लीला मिश्रा थी.
1: क्या
0: मैंने कहा ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए. दादी अम्मा मुझे कोई तुम चाहे जो भी कहे उनका तुम किराया दोगे. तो वह हंस के कहता है हाँ ओके बाबा ले लिया उसको. क्योंकि बाकियों को तो रवि को बेचारी को 3,000 पूरी फिल्म का उसका मेहनत आना.
1: राकेश बेदी
0: वो नहीं मुझे मालूम क्योंकि वो गुल ने लाया था राकेश को.
1: लेकिन उसने कहां से किस तरह कास्ट हुए थे?
0: फारूक ने गमन की थी ना
1: जी, गमन मुजफ्फर अली की,
0: मुजफ्फर की. और फिर देखा था उधर उधर. फारूक अच्छा एक्टर तो था ही, थिएटर करता था. तो गुल ने वो जरूर देखा होगा, जाके चुपचाप उनके प्लेस देखे होंगे, इधर देखा होगा उधर. वो तो बहुत करता था. फिर व्हेन ही वाज कन्विंस्ड कि यस ही इज अ वेरी कल्चर्ड एंड अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो उनसे बात की और फारूक भी मान गए खुशी खुशी. और फारूक के साथ भी मेरी बड़ा अच्छा दोस्ताना हुआ. बहुत प्यारा आदमी था, बहुत ही नेक और प्यारा इंसान.
1: दो फिल्में और बहुत वो आगे बात करेंगे कि कैसे हाँ, कथा में हाँ, नसीर और फारूक आपसे लड़ाई करते थे कि कैसे रोल दिए है ना, वो आगे बात करेंगे. गाना सुनते हैं

0: सईद जाफरी का किरदार कहां से आया और ये पूरी फिल्म में आप ये देखिए कि कितना महत्वपूर्ण पक्ष बन गया।
1: हाँ हाँ सईद का ना बहुत बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो था ही उस लायक ही, वाज अ ट्रेमेंडस एक्टर विद अ मेजर पर्सनालिटी, बिग पर्सनालिटी, एंड ही वाज वेरी सिंसियर टुवर्ड्स हिज रोल, टुवर्ड्स हिज मिशन। और वो भी अब गुल की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सईद को पकड़ा कि वो वेस्ट एंड से लंदन में करते थे थिएटर और फिल्में बीबीसी के लिए इधर उधर, और वो अब चाहते थे यहाँ बॉलीवुड में आजमाना कि क्या कुछ बन सकता है क्या। वो देखने आए थे सईद, और गुल ने बराबर अपना जाल फंसा और सईद को पकड़ा लिया। और अब अच्छा प्रोड्यूसर तो था ही गुल, मतलब नाम उनका अच्छा था, तब तक स्पर्श के बदौलत मेरा भी थोड़ा सा नाम हुआ था, तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी इन द फिल्म। एंड तब तक वो एक कैरेक्टर बन गया था पान वाले का। हाँ, उसने कहा फिर मुझे सईद ने, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? जैसे अरे वहां के पान वाले देखेंगे,

0: हाँ पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक मिल
1: एक और आ
0: गया एक
1: गया
0: और आ गया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं फिर मैं उनके साथ, और फिर हम दोनों दिन भर वो देखता रहे हर ठेले में जाके उनके साथ बैठना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनकी बातें सुनना। उनके कुछ कुछ लफ्ज भी वो लिखते थे, पुरानी दिल्ली वाले जो जुबान थी ना दिल्ली की वो भी उन्होंने उठाई और कमाल का ये किया। और फिर अपने नाम पे वो बहुत ही वो थे स्ट्रिक्ट कि नाम अच्छा चाहिए मेरे रोल को। तो फिर हमने फुफन और याकूब और लच्छन और ये वो, हाँ कहते ना घंटी नहीं बजी, नहीं नहीं घंटी नहीं बजी। और फिर हमने कहा कि जाओ अब तुम अपने आप ही ढूंढ लो, अब हमारे नाम खत्म हो गए। फिर एक दिन सुबह सुबह मुझे फोन आया काफी सुबह, मैंने कहा हेलो आदाब मैं ललन मिया बोल रहा हूँ तो वो नाम मिल गया। तो क्या रोल किया सईद ने, हाँ बहुत बहुत ही मजा आ गया। एंड द होल थिंग वाज वंडरफुल। लीला मिश्रा भी क्या
1: क्या शानदार,
0: कमाल की एक्ट्रेस है, वंडरफुल
1: बिल्कुल
0: पर्सन,
1: बिल्कुल
0: बहुत बहुत।
1: सही जी। जब चश्मे बदूर की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है पहले शूटिंग लोकेशंस की बात करते हैं। जितनी खूबसूरती से दिल्ली आपने दिखाया है और वो पूरा माहौल आपने जिंदा किया है, वो लोकेशंस कैसे ढूंढी थी और उससे जुड़ी कुछ
0: वो
1: दिलचस्प
0: ढूंढना
1: बातें?
0: क्या था यूनुस, वो तो सामने आ खड़ी होती थी कि
1: अच्छा
0: अरे हमें ये तो इधर नहीं देखा,
1: हाँ
0: हमको शूट करो। क्योंकि चाहे आम सड़क हो कोई दिल्ली की, या चाहे पुराना बाजार हो, पुरानी दिल्ली का कोई माहौल हो, या कोई खूबसूरत सा बाग हो, गार्डन हो, चाहे लोधी गार्डन हो, चाहे तालकटोरा गार्डन हो, चाहे जो भी, और इतने खूबसूरत सब नजारे होते थे कि क्या ले क्या नहीं, कैमरा पगला जाता था सचमुच इसलिए वो कोई मुसीबत ही नहीं हुई। और एक तो खंडहर दिल्ली के जो पुराने टूटे फूटे फोर्ट्स वगैरह, वो क्या मतलब बात बहुत ही वो थी, दुकानें छोटी छोटी। और फिर बरसातियां, वो बरसाती भी अपने आप में बड़ी प्यारी चीज होती थी है
1: जी
0: ना,
1: जी
0: तो वो भी हमें बहुत सुंदर बरसाती मिली। और घर भी इतने अच्छे मिले, फॉर दैट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू रवि बासवानी, क्योंकि रवि तो पक्का दिल्ली का बंदा था, दिल्ली में
1: जी
0: रहने वाला, और उसके पीआर बोलो तो इतना अफाट जाल था, विस्तृत जाल था उसके दोस्ताने का। तो एक से बढ़कर एक रवि ने लोकेशंस लाए। नसीर का घर जो था वो दैट वाज प्रोफेसर आर्याज लिटिल बंगलो विथ ब्यूटीफुल गार्डन ऑल अराउंड इट एंड अ वेरी क्यूट लिटिल हाउस इन बिटवीन, जो लगे बिल्कुल कि हाँ ये प्रोफेसर का घर होगा, सुंदर
1: बिल्कुल।
0: सा
1: और
0: छोटा
1: वो
0: सा,
1: जिस तरह से
0: हाँ
1: वो किचन
0: बड़ा
1: चाय बनाते
0: टेस्टफुली
1: हैं,
0: किया हुआ। फिर शबाना का मतलब कविता का जो होता है फ्लैट बरसाती पे ऊपर, हाँ अगेन टेरेस है चारों ओर, उस पे छोटे छोटे पौधे लगे हुए, उसका इकबाना उस पे लगाया हुआ, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत सा मिल गया, दोस्तों का था वो एक घर। और तीसरा रहा वो मंजू जो कविता की दोस्त होती है, उनका घर एक शानदार है जो संकन लिविंग रूम है उसका, वो तो बहरहाल एक खुद आर्किटेक्ट थे बड़े जाने माने मशहूर दिल्ली के, उनका अपना घर था जो
1: वाह
0: उन्होंने हमें शूटिंग के लिए दे दिया। तो ऐसे एक एक एक एक होकर वो लोकेशंस बहुत सुंदर बने, और इसलिए दिल्ली जो दिखी चश्मे दूर में वो निहायत खूबसूरत दिल्ली थी, बड़ा प्यारा हसीन सा शहर। किसी ने मुझे कहा कि तुमने तो ये एड फिल्म बनाई सही दिल्ली के लिए, मैंने कहा नहीं ये मेरा लव लेटर था दिल्ली को
1: क्या प्यारी बात है, वाह। एक चीज ये है कि जो कमर्शियल सिनेमा है उसके प्रति प्यार की एक निशानी
0: हाँ
1: चश्मे बदूर में आती है, और वो आती है जब वो ड्रीम सीक्वेंस जैसा है जहां पर एक के बाद एक गाने आते रहते हैं,
0: हाँ
1: जो आपने पूरा का पूरा पैरोडी
0: हाँ
1: बनाई
0: मजाक
1: है।
0: उड़ाया था यार, रवि जो गाते हैं रवि
1: जी
0: और दीप्ति मिलके,
1: जी
0: हाँ
1: वो कमाल है जिसमें एक के बाद एक गाने आते हैं, कभी
0: जी या
1: परवीन बाबी का गाना आ जाता है तो कभी पुराने गाने चले आते
0: कभी
1: हैं,
0: जीनत
1: कभी
0: अमान का आता है,
1: जी
0: हाँ
1: जी
0: कभी देवानंद का, और वो
1: क्या
0: रवि
1: कमाल,
0: ने
1: देवानंद
0: वो
1: वाला तो अद्भुत
0: किया भी उसने वो ढीली ढाली चाल उसकी,
1: जी
0: और कभी दिल चाहे या माथा यारा
1: मैंने
0: मैं
1: तो हाँ
0: तोहा
1: कह
0: कर,
1: दी,
0: हाँ वो भी दीप्ति और रवि ने गाया, जो वो बहुत मजे मजे
1: शीशा हो या
0: का,
1: दिल उसमें तो जो
0: हाँ
1: दीप्ति लगी
0: ये वो
1: है
0: बहुत अच्छा किया रहा है उसने, बहुत सुंदर
1: जी
0: किया रीना रॉय का, बहुत खूबसूरत, तो वो करने में मजा भी बहुत आ गया, बहुत।
1: जी ये फिल्मी गानों से आपका प्यार भी दिखाता है।
0: एक बात बताऊं वो जो

0: में ये था ना आ जा
1: तीसरी
0: इसका
1: मंजिल
0: तीसरी मंजिल वाला गाना, तो वो दीप्ति से वो करवा रहे थे और दीप्ति ने थोड़ा सा इस सिलसिले में परेशान किया, अगर कहीं पूरे मेरे दीप्ति के साथ जो ताल्लुकात हुए हैं उसमें अगर कहीं हमारी थोड़ी सी नोक झोंक हुई तो उसमें वो चाहती नहीं थी वो गाना गाए और ये करे इस तरह कुछ वीक पहने वगैरह, पता नहीं क्या उसके बीच बीच में कभी भूत सवार होता था, कभी कम ही लेकिन कभी कभी होता था। तो फिर गुल ने तब के डांस मास्टर जो इंडस्ट्री के बड़े माने हुए विजय ऑस्कर करके दोनों थे, तो उसमें से ऑस्कर को रखा उन्होंने और ऑस्कर का ये काम था कि दीप्ति से
1: डांस करवा ले
0: तो वो एक सन एंड सैंड में कमरा बुक किया था गुल ने और वहां हमारा दिन भर चलता था, तब VHS का जमाना था
1: जी।
0: तो VHS एक मंगवाया मशीन और VHS कैसेट थी जिसमें ये तीसरी मंजिल वाला गाना बार बार हमने इतनी बार वो सुनाया। उसमें डांसर्स भी हैं, एक तो आशा पारिक नाचती है और उनके साथ एक फाइल होती है दाएं बाएं हाँ आठ आठ लोगों के, आठ मर्द इधर आठ मर्द उधर और नाचने वाले सब, तो वो हम बार बार देखते थे और मैं ऑस्कर को बहुत बार समझाती थी क्या चाहिए। मुझे लगता है कि ये मेरी बुरी आदत है, हालांकि तब किसी दोस्त ने या कलाकार ने कभी नहीं मुझे कहा, लेकिन अब बच्चे कहते हैं मुझे कि तुम वही एक बात इतनी बार बताती हो कि आदमी तंग आ जाता है, ये मुझे अभी वो कहते हैं। तो उस हिसाब से मैं बार बार बेचारे ऑस्कर को बताती रही कि ऑस्कर ये ऐसा चाहिए, देखा ना ये कैसे आठ जने नाच रहे हैं, ये देखा ना ये, तो ऑस्कर ऐसा मुझे चाहिए वगैरह। और वो बड़ा प्यारा बड़ा पोलाइट आदमी, हाँ हाँ सही है सब कुछ सही, हाँ जी जी बिल्कुल यस यस सही श्योर सही कहता रहे। फिर एक दिन मुझे लगता है ऑस्कर का भी दिल भरा है, वो उब गया वो भी और उसने फिर वो रोका VHS मशीन, ने कहा सही ये आठ जनों की लाइन देख रहे हैं ना जो मर्द नाच रहे हैं दाएं तरफ, मैंने कहा हाँ, उसमें से तीसरा आदमी देखो पहचानती हो वो मैं हूँ मैंने कहा क्या हाँ मेरे करियर की शुरुआत इस गाने से हुई है और तुम क्या मुझे बार बार बता रही हो ये करो वो करो वो करो, मैं चुप। फिर मैंने कहा जो करो मैं नहीं कुछ कहने वाली, तो इतनी मजे की बात होती है।
1: वाह वाह वाह क्या बात है। इस फिल्म में मंगेश देसाई का एक बहुत बड़ा योगदान है,
0: जी, बहुत
1: उसका जिक्र हम करना चाहेंगे।
0: ये जब फिल्म पूरी हो गई और तब आपको तो मालूम है कि ट्रैक्स बनते हैं, आखिरकार जब बिल्कुल फिल्म बनने को आती है, मतलब जैसे ढक्कन उतारना होता है और भाप को निकलने देना होता है, तो ये सारे ट्रैक्स फिर एक ट्रैक पे जुड़े जाते हैं। तो हम राजकमल में पहुंचे क्योंकि तब से जो बादशाह था रीमिक्सिंग का या साउंड रिकॉर्डिंग का बादशाह था मंगेश देसाई
1: जी।
0: मतलब इतने वो मशहूर थे कि हर कोई हर जना चाहे कि मंगेश देसाई का सिक्का हमारे फिल्म पे लगना चाहिए रिकॉर्डिंग, और यहाँ तक कि सत्यजीत रे भी कोलकाते से उनका टाइम लेते थे, उनका शेड्यूल देख के उनका टाइम बुक करके वो खुद अपनी फिल्में लेके पहुंच जाते थे बम्बई राजकमल में। हाँ
1: जी।
0: इतना मंगेश जी का नाम था। तो अब स्पर्श में जाहिर है विद द काइंड ऑफ मनी दैट बासु वाज गिविंग अस एंड द काइंड ऑफ कटिंग कॉर्नर्स वी वर डूइंग, तो ये सवाल ही नहीं था। हमारा ट्रैक इतना भद्दा था कि मैं क्या बताऊं, मतलब एक जगह तो अब कहने में कोई बात नहीं है, लेकिन तब मैं कभी नहीं कहा ये किसी को नहीं बताया कि कहीं कहीं जगहों पर पायलट ट्रैक भी हमने इस्तेमाल किया है विच इज अनहर्ड ऑफ, ये कभी कोई नहीं करता। फिल्म वाला जो किसी नाम का फिल्म वाला हो वो कभी नहीं चाहेगा कि पायलट ट्रैक, मतलब भद्दा होता है नहीं, वो सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है और फिर वो डबिंग किया जाता है, लेकिन डबिंग के लिए पैसे ही नहीं थे। तो एक दो जगह बिल्कुल हमने कि अब क्या करें अब रहने दो पायलट ट्रैक नहीं पता चलेगा करके हमने दो तीन जगह स्पर्श में पायलट ट्रैक रखा। तो किसी ने कहा इनके पास जाओ मंगेश देसाई के पास, तो मैंने कहा पिटाई करवानी है मंगेश देसाई, तो उनका गुस्सा बहुत मशहूर था कि वो अगर भद्दा काम उनके पास ले जाओ ना तो वो ऐसे रीलों के डब्बे फेंकते थे बाहर ठक से एकदम पूरा रील का रील बाहर, तो शर्म नहीं आती कैसे काम लेके आए हो मेरे पास। मैंने कहा वो मंगेश जी रील तो नहीं मुझे भी बाहर फेंक देंगे तो मैंने कहा उनके पास मैं कैसे किस मुंह से जाऊंगी नहीं जाऊंगी, तो नहीं गए। फिर हमने जैसा तैसा गया, हमें भी बहुत अच्छे मिले फिर बॉम्बे लैब में तब थे खन्ना साहब कर वेरी वेरी नाइस कॉडिस्ट, तो उन्होंने काम किया। एनीवे फिर चश्मे बदूर तो गुल ने कहा कि जरूर मंगेश जी के पास जाना चाहिए, उन्होंने फिर डेट वेट पकड़ के हम लोग मिलने गए, तो मंगेश ने मुझे देखा हुआ? कहते फिल्म लेके आई है। पहली फिल्म लेके कैसे नहीं आई? तो फिर मैंने बिल्कुल कह दिया उनको साफ साफ, मैंने कहा मंगेश जी सुना है अच्छा काम नहीं हो तो आप बाहर रिले फेंकते हैं। तो मैंने, हमारा इतना भद्दा था साउंड का सारा पूरा सिलसिला कि मैंने हिम्मत ही नहीं की आपके सामने आने की। अच्छा ठीक ठीक चलो तो फिर बैठ जाओ, दोपहर से काम शुरू करते हैं। और फिर काम शुरू हो गया हमारा। और क्या बताऊं कि ऐसा मेल जो, मतलब शायद ही मेरा किसी के साथ इतना मेल हुआ हो किसी व्यक्ति के साथ, किसी कलाकार के साथ, कि मतलब इट वाज फैंटास्टिक एब्सोल्युटली। एक बताती हूँ मैं बहुत प्यारा किस्सा, वो जो चश्मे बदूर जिन्होंने देखे है उनको वो मालूम है कि वो जो दो दोस्त होते हैं वो लड़की के मिलने के चक्कर में बाहर पड़ते हैं। बड़ी बातें तो करते हैं कि हम यूं करेंगे वो करेंगे, और एक को तो बेचारे को वो समझती है कि ये प्लम्बर है और बेसिन दिखाती है बाथरूम वाली कि ये देखो चोक हो गई है, पानी नीचे नहीं जा रहा तो आप कुछ करो, और वो वहां से फिर भाग जाता है बड़ा पानी पानी होकर, शर्मिंदा होकर निकल जाता है। दिन भर फिर वो इधर उधर मटर गश्ती पार्क में दिन बताता है, क्योंकि ऐसा मुंह लेके घर कैसे जाएगा, घर मतलब कमरे में दो दोस्तों को मुंह कैसे दिखाएगा ना। तो वो फिर शाम को जाके फिर बड़ी गप्पे हाँकता है कि यों क्या त्यों क्या। हाँ, और फिल्म में एक असली किस्सा है जो कि वो जाता है, वो कहती है अरे आइए आइए कितनी देर आपका इंतजार कर रही थी। तो पहले तो खुश होता है कि हाँ मेरा इंतजार, कि ये देखो ना बाथरूम में कैसे पानी वगैरह वगैरह। और दूसरा जो किस्सा है फिर ये बताता है कि अरे फिर हमने पार्क में गए और फिर वो एक बड़ा तालाब है वो उसमें नैया एक थी और वो नैया में ये दोनों बैठ के टिपिकल फिल्मी गाना गाते हैं, इस नदी को मेरा आयना मान लो, इंदु ने बहुत सुंदर गाना लिखा। तो वो दोनों ये ड्यूएट गाते दो गाना, तो वो भी किया, मतलब वो जो उसकी फालतू की कहानी है मनगढ़ंत वो भी फिल्म आई थी। तो मंगेश जी ने कहा कि सही ऐसा करते हैं, वो दोनों बार बगीचे में तो जाके बैठता है, तो क्यों ना ऐसा करे कि पहली बार जब मतलब असलियत है, शर्मिंदा होता है बेचारा, तब हम बैकग्राउंड पे कौवा डालेंगे काँ, काँ, काँ। और दोबारा जब वो ये शोरो शायरी वाली और फला निमका ये बड़े प्यार मोहब्बत वाले किस्से सुनाता है, तब हम कोयल डालेंगे बैकग्राउंड पे। क्यों, कैसे रहा? मैंने कहा ओह गजब, मैंने कहा कैसे रहा, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया मंगेश जी क्या बात है, मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। फिर काम हमारा चालू हो गया और वाकई में उन्होंने कौवे ढूंढे, फिर कोयल ढूंढी और वो साउंड ट्रैक पे आया, इतना मजे का लगा। और फिर करते करते जब हम सुन रहे थे एकदम से उन्होंने रोक दिया रिकॉर्डिंग प्लेबैक, तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहते हैं सही हम दोनों इतने खुश हैं, लेकिन शायद किसी के समझ में भी आएगा कि नहीं क्या पता, कि शायद ही किसी के जो बहुत ही समझदार कलाकार किस्म का आदमी हो उसके समझ में आए, लेकिन आम आदमी के समझ में आएगा कि नहीं क्या पता। कोई बात नहीं, तुम और मैं हम तो खुश है ना, इसी को कहते हैं कला का आनंद। हमने तो ये आनंद खूब लिया, कोयल कौवा ये वो, बहुत खुश रहे हम, तो दिस इज इट वर्थ इट। तो यू नो इट वाज ब्यूटीफुल लाइक दिस। और दूसरी एक छोटी सी बात, उन्होंने कहा कि वो दोनों बंदे जो दोस्त उसके रवि एंड राकेश बेदी, वो ये करते हैं बेचारे हीरो को अपने फारूक को कि वो लड़की बेकार है और वो हमारे साथ भी घूमी है क्या वो क्या, उसको बहुत ही वो करते हैं। फिर वो इतना मायूस हो जाता है सिद्धार्थ कि वो फिर उसके साथ झगड़ा करके वो उनकी बातचीत बंद हो जाती है वगैरह वगैरह। और फिर ये दोनों, क्योंकि है तो बेचारे अच्छे वो बुरे थोड़ी ना है, तो वो उनको फिर बहुत अफसोस होता है कि अपना दोस्त बेचारा किस कदर बुरी हालत में है। तो अब क्या करें, वो दोनों बहुत मायूस है और वो मद्रासी कैफे में है, डोसा वोसा इडली कुछ खा रहे है, कॉफी पी रहे है, और रेडियो पे गाना चल रहा है। तो मंगेश जी ने कहा कि ये रेडियो पे गाना तो हम लगा रहे हैं उस सीन को, लेकिन इसमें अनाउंसमेंट भी होगी तो क्या मजा आएगा, है? वो होता है ना कि आपकी पसंद वाला
1: जी।
0: मैंने कहा वेरी गुड आइडिया, ये जरूर जरूर। कहते फिर तुम ऐसे करो कि अच्छी डबर को बुलाओ और उससे अपन अनाउंसमेंट करवा लेंगे, वो बोलो, वो खास तरीका होता है उनका। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है, मैंने रेडियो में काम किया है, मुझे मालूम है। वो ओके, फिर दोपहर के बाद करेंगे, लंच के बाद। फिर लंच हो गया, मैंने कहा अच्छा आई तुम्हारी डबर? मैंने कहा हाँ आई, कहाँ है? तो मैंने कहा नहीं वो मंगेश जी मैं खुद ही करके देखती हूँ, तो उनका चेहरा इतना सा हो गया और मैं साफ साफ पढ़ पाई कि ये डायरेक्टर लोग ना समझते हैं कि सब कुछ वो कर सकते हैं, ये वो ये सब उनके जरूर दिमाग से गुजर गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं क्या है, वो एक तरीका होता है, उसका एक खास ये होता है वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं मंगेश जी, ऐसा करो कि आप देख लो, नहीं है तो बिल्कुल आप कह दो कि ये नहीं बात बनी नहीं, और फिर मैं कल सबसे पहले बुलाती हूँ, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगी कि नहीं नहीं मुझे ये ले लो। अच्छा चलो, फिर बड़ा बेमन से फिर मुझे स्टूडियो में धकेला उन्होंने, फिर मैं हेडफोन लगाए क्या, और फिर मैंने वो पढ़ा और बड़े नटखट ढंग से पढ़ा, बल्कि बीच में गलत भी किया और माफ कीजिए वगैरह ये भी कह के आगे गई जी, जी। और फिर वो सारा जुमरी तलैया और ये सब डाला और पूरी तरह मतलब उस अंदाज से, अब वहां इतना टाइम जो गुजारा था आकाशवाणी में तो यूं ही तो थोड़ी ना गुजारा था, तो वो मैंने सारा पूरा का फर्स्ट टेक ओके हो गया और फिर वो भारी भक्कम दरवाजा खोल के मैं जैसे बाहर आई, दरवाजे में मंगेश जी ने दोनों हाथ जोड़े, कहते हैं मोहतरमा तुम तो कमाल की चीज निकली, कहते वाह क्या बहुत खूब।
1: तो, क्या बात है, लेकिन ये एक तरह से ट्रिब्यूट टू विविध भारती हो गया।
0: बिल्कुल, अब विविध भारती पे जो मुलाकात दे रही हूँ तो कुछ बात तो करनी चाहिए ना, जो वो अच्छी बातें याद है वो तो जरूर शेयर करनी चाहिए
1: जी,
0: है नहीं?
1: बिल्कुल, इस फिल्म का संगीत भी बहुत मायने रखता है।
0: हाँ बहुत बहुत सुंदर है ना, बहुत संगीत और गीत भी। हाँ गीत मतलब देखो, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि राइटर डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट, इनका अगर आपस में खूबसूरत मेल हो जाए तो क्या बात है। जैसे अब इंदु जी को मैंने कहा कि इंदु ऐसा है को वो बताती है कि मैं फला जगह संगीत क्लास के लिए जाती हूँ और वो उसका बराबर जहन में उसको एब्सॉर्ब करता है और वो वहाँ पहुँच जाता है, और मैंने कहा वो अपने सुंदर मोटरसाइकिल है उसकी एक काली सी, तो गाना कुछ ऐसा करो कि जो उसमें मजा आ जाए कि तो वो साथ जुड़ जाए। तो फिर काली घोड़ी द्वार खड़ी, और काली घोड़ी मतलब उसकी मोटरसाइकिल, और वो काली घोड़ी पे गोरा सैया चमके,
1: क्या शानदार लाइन है,
0: और वो इतना, और चकित भई सगरी नगरी, तो वो बस स्टॉप पे लोग सब ऐसे ऐसे देखते कि अरे ये कहाँ गई, अगर मतलब पूरा वो बैठ गया इतना, मतलब ये होता है जब मेल होना लिरिसिस्ट, फिर राजकमल का म्यूजिक और फिर गाने वाले और फिर मेरे एक्टर और मैं,
1: कमाल ये गाना सुनते
0: जी क्या बात।

0: जैसा गाना जो पटकथा के अंदर इतना ज्यादा एम्बेड हो गया। हाँ। ये जो बात आपने बताई कि मोटरसाइकिल और वो और इंदु जी ने जिस तरह से उस कहानी में उस गाने को पिरोया, एक कालजयी गाना बन गया। राजकमल जी को भी बड़ा श्रेय जाता है इतने बढ़िया गाने बनाने का।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: राजकमल जी ने अपना श्रेष्ठ काम किया इस फिल्म में
1: मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, इसमें कोई शक नहीं। और वो भी कितना अच्छा और कितना नेक गाना है ना, कहां से आए बदरा, इतना दुख भरा, इतना ये। और वो तो टीचर तो गाए चले जाते हैं क्योंकि उनको क्या लेना देना, लेकिन ये रो पड़ती है गाते गाते
0: जी, आंसू बह रहे हैं, माहौल आप बनाते हैं उसमें।
1: और उसके भी अंतरे जो है म्यूजिकल बीच के है प्रीलूड्स, उसमें फिर इसको दिखाया है कि ये भी उदास बेचारा दीवाना जैसे घूम रहा है सिद्धार्थ, तो वो गाने का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल हो गया। आई लव यूजिंग सॉन्ग्स टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड।
0: बिल्कुल, ये तो कथा में भी आता है। हाँ, उसकी बात आगे करेंगे। बल्कि एक बहुत ही तेज तर्रार गाना इस फिल्म में था और वो था प्यार लगावत। वो तो एकदम अलग शैली का गाना है।
1: हाँ, वो भी अगेन वही बात है कि जब म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर इनका आपस में मेल हो और समझौता हो और एक दूसरे को समझे और एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करे दोनों, तो क्या होता है ये गाना साबित करता है। क्योंकि मैंने फिर ये कहा राजकमल को कि ये तीनों जने गाना गाते हैं मोटरसाइकिल पे घूमते, हाँ तीनों मुस्टंडे, तीनों अवलिया हैं, अपने अपने अलग ढंग के आदमी। मैंने कहा वो क्यों एक जैसा ही गाएं?
0: बिल्कुल,
1: हाँ वो अपना अपना गाने दो ना उनको। तो राजकमल ने कहा मतलब क्या? मतलब मैंने कहा ये कुछ और गा रहा है, वो कुछ और गा रहा है, वो कुछ, मतलब उनका सुर भी और होगा, उनके लफ्ज भी और होंगे। कहते नहीं नहीं तो बड़ा झमेला नहीं हो जाएगा। मैंने कहा कोशिश करके देखते हैं, और कोशिश की उन्होंने और क्या कमाल की। वो जो है ना प्यार लगावट प्रेम मोहब्बत, हाँ। वो तीनों अलग अलग अपना गाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हाँ?
0: बिल्कुल,
1: और इतना वो मजे का लगता है। दैट्स व्हाई वो जो आज भी लोग कहते हैं कि वो फिल्म आज भी फ्रेश है, ताजगी है उसमें, ये ऐसे गानों की वजह से तो है।
0: बिल्कुल, तो ये गाना इस इंटरव्यू में प्यार
1: लगावट सुनोगे। ओके।

0: मैं एक चीज पर और ध्यान खींचना चाहता हूं और वो है ओपनिंग सीक्वेंस ऑफ चश्मे बद्दूर। जिस तरह से फिल्म ओपन होती है वो बड़ा शानदार बना है।
1: नामावली,
0: जी नामावली, जिसमें वो एनिमेशन वगैरह है।
1: जी वो उसका पूरा पूरा क्रेडिट आप राम मोहन को दे दो। राम मोहन एंड ही डिड कथा एंड ही डिड चश्मे बद्दूर दोनों।
0: हाँ, और कथा में वो चूहा बिल्ली,
1: हाँ यस टाइगर और ये वो, और कथा में भी तो जैसा हमारा निर्माता का जब आता है तो सुरेश जिंदल को आप देखा है कभी, ये बाल उनके बिल्कुल लगे जैसा लायन है सींग। तो वैसे उन्होंने सींग बनाया उसके लिए, तो वो बिल्कुल लगे ये बराबर सुरेश जिंदल है। और डायरेक्टर के लिए उन्होंने बिल्ली मतलब मैं और वो नाखून ऐसे करके जाती है, तो मतलब इतना। और दीप्ति के लिए खूबसूरत सी गिलहरी और कान में उसके वो फूल जसवंती का फूल। और विनी के लिए, विनी का इंट्रोडक्शन था फिल्म में, तो एक अंडा ऐसा फूटता है और अंदर से छोटा सा चूजा बाहर निकलता है, चू चू चू चू चू, नया परिचय विनी परंस पे। और सैनी हमारा गुस्से वाला कैमरामैन, वो टाइगर आता है शेर करके कैमरा लेके, ऐसे बहुत बहुत मजे के ये। और बीच बीच में जाहिर है कि कछुआ और खरगोश इनकी रेस तो फिर चलती रहती है, चलती रहती है।
0: बिल्कुल, तो उसमें सारे अलग अलग
1: क्या। और चश्मे बद्दूर में तो और भी कमाल किया कि उन्होंने एक्चुअल फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए, गांधी जी, बर्ट्रेंड रसेल वगैरह ऐसे लोग लेके, मतलब एक तरह की ये हिमाकत ही हुई ना। ऐसे लोगों को लेके उन्होंने इतना खुश मिजाज बनाया पूरा टाइटल किस्सा कि क्या बताओ।
0: उसमें फिर आपका हाथ आता है जिसमें नेल पॉलिश लगी है लाल रंग की।
1: बिल्कुल।
0: तो वो सुंदर है, लेखक निर्देशक है ना, इस तरह से पूरा फिर आपका नाम आता है। सुंदर, मतलब वो ओपनिंग भी कमाल की थी। वीरेंद्र सैनी का जिक्र हमेशा बहुत जगह आया बातचीत में और वो आपके तकरीबन स्थायी कैमरामैन रहे।
1: उन्होंने स्पर्श और चश्मे बद्दूर और कथा सैनी ने की, फिर दिशा के साथ वो नहीं आए। बट सैनी अच्छे कैमरामैन में थे, दोस्त भी बहुत अच्छे थे, एंड ही वाज वन पर्सन हु वुड कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कभी भी उन्होंने मुझे अच्छा लगे इसलिए कुछ नहीं कहा।
0: कोई टकराव होता था?
1: बहुत बार। बहुत बार, दिन में एक दो बार तो जरूर होता था। लेकिन बहुत सही आदमी था, बहुत काम से लगाव वाला आदमी था और बहुत मतलब अच्छे दिन गुजारे हमने, बहुत आर्टिस्टिक ढंग के काम किए और बहुत अच्छा रहा वो सब पूरा माहौल, और उसमें सैनी का बहुत हाथ था।
0: जी जी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले।
3: उजाले उनकी यादों।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: धुआं धुआं से एक ख्वाब को हमने मचलते देखा है, एक चांद को जमीन पर चलते हमने देखा है। कतरा कतरा पिघली थी जब चांदनी, उसे तुम्हारे रूप में ढलते हमने देखा है। आंखों के काजल से खींची हैं ख्वाबों की लकीरें, लबों की सुर्खियों से रंग भरे हैं ख्वाबों में। तूने यादों के मौसम को सजाया है इस चिलमन में और लिख दिया है मोहब्बत दिल की मीनारों पर।
1: ये जो चिलमन है

सितारों की रोशन रात है, दामन में खिले हैं फूल बेहिसाब, नूर की बूंद है तू या है मुजस्सिम चांदनी, आफताब की किरण है या है मोहब्बत की रोशनी, आंचल तेरा महकता साया, संगमरमर की है तेरी काया, तेरे पलकों की साए में दिल को पनाह मिलती है, जब उतरती है तुम्हारी यादें दिल के आंगन में तो धड़कनों में कई हसरतें पलती हैं, पैरहन का अंदाज तुम्हारा जैसे चांदनी ओढ़ी हो चांदनी, जैसे तुझ में सारा नूर सिमटाया, दूर उस मोड़ पर जब भी नजर आती है तो दिल कह उठता है, लो चांद निकल आया।

बादलों पर चलकर चांद में ढलकर एक हुस्न मेरे सामने है, आफताब में नहाया हुआ सा, कुछ कहकशा में समाया हुआ सा। न जाने कब से इन नजरों को ख्वाहिश थी तेरे रूबरू दीदार की, न जाने कब से हसरत थी तेरे हर अंदाज को पलकों की झालरों में समेट लेने की। तेरी उम्मीद मेरी जिंदगी है, तेरी आरजू मेरा अरमान है, तू खूबसूरत तस्वीर है मेरी मोहब्बत की। हाँ ये सच है, तू ही मेरी जान है।

अंतराल के बाद आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। वो तेरी एक याद पुरानी, जैसे हो चांदनी रात सुहानी। वो तेरे मेरे प्यार की बातें, जैसे हो कोई परियों की कहानी। कुछ ख्वाब सुनहरे, कुछ वादे पक्के, तेरे साथ चलने के इरादे सच्चे। संजो कर साथ ले जाऊं तेरी सारी यादें। तुम चली गई हो जब से, तन्हा है हर मोड़ मोहब्बत के रास्तों का, मेरी हसरतों का, मेरे जज्बातों का। मेरी ख्वाहिशों में तेरे अरमान जिंदा रहेंगे सदा। तेरी महफिल में मैं रहूं ना रहूं, तेरे साथ रहेंगी सदा ये मेरी वफा। तुम अगर

अगर कभी चांद को देखकर मेरी याद आ जाए तो बस एक कतरा मुस्कुरा देना, मैं वहीं कहीं मिल जाऊंगा, सितारों की चमक में, ठंडी हवाओं की चुवन में, रात की खामोशियों की सरगम में, हर पल तेरे एहसासों के समंदर में। जब भी तेरी आंखें आसमान को तलाशेंगी, मैं किसी टूटते तारे की दुआ बनकर उतर आऊंगा। जब भी तेरा दिल तन्हा होगा, मैं तेरी धड़कनों में एक मीठी सी सदा बन जाऊंगा। चांद की चांदनी, सितारों की रोशनी हर रात तेरा पता बताती रहेगी। तू बस सदा मुस्कुराती रहना, मेरी मोहब्बत तुझे हर पल गले लगाती।

लब खामोश हैं मगर निगाहें सब कह जाती हैं। तू सामने होता है तो मेरी धड़कनें मुस्कुराने लग जाती हैं। कितनी ही बार चाहा कि तुझसे सब कुछ कह दूं, मगर हर बार मेरी शर्म मेरी मोहब्बत से जीत जाती है। तू पूछे तो कह दूं तुझसे, मेरी हर दुआ में तू शामिल है, मेरे हर ख्वाब की पहली सुबह और हर रात की आखिरी दुआ भी तू ही है। मैंने तुझे चाहा है बिना किसी शोर के, जैसे चांद चुपचाप रात को रोशन करता है, जैसे खुशबू बिना आवाज के फूलों में महकती है। अगर कभी मेरी आंखों में देखोगे तो अपना ही अक्स पाओगे, मेरी हर मुस्कान के पीछे बस अपना ही नाम गुनगुनाता पाओगे। ना कोई वादा ना ही चांद सितारों की सौगात, बस इतना ही चाहता है दिल मेरा, जिंदगी भर जलता रहे मेरे दिल में तेरे प्यार का दिया।

0: सुनो, गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दोनों ओनिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: मैं अजय देवगन, मेरे कपड़ों पे दाग तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इनका स्ट्रेस नहीं लेता, क्योंकि मेरे घर में है सफाई का एक्सपर्ट तनमन डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया। जाग ही जाग, सफाई बेदाग, तनमन है तो कपड़े साफ ही रहेंगे।

मैं अजय देवगन, मेरे कपड़ों पे दाग तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इनका स्ट्रेस नहीं लेता क्योंकि मेरे घर में है सफाई का एक्सपर्ट तनमन डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया। जाग ही जाग, सफाई बेदाग, तनमन है तो कपड़े साफ ही रहेंगे।

मैं अजय देवगन, मेरे कपड़ों पे दाग तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इनका स्ट्रेस नहीं लेता क्योंकि मेरे घर में है सफाई का एक्सपर्ट तनमन डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया। जाग ही जाग, सफाई बेदाग, तनमन है तो कपड़े साफ ही रहेंगे।

फिल्म संगीत का आनंद अभी आप उठा रहे थे श्रोताओं। अब वक्त हो रहा है कार्यक्रम लोक संगीत का, तो आइए चलते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

0: बहू जी मम्मी जी इस घर के कुछ नियम हैं जैसे जैसे कि यहां कैश की परंपरा नहीं है तो लेन-देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं ओ जैसे यूपीआई से
1: अच्छा
0: हां और सुनो एक और नियम है
1: वो क्या है मम्मी जी
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी यूपीआई से मिलेगी
1: हां भी ना मम्मी जी
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान
0: हर लेन-देन अब है आसान

मैं अजय देवगन, मेरे कपड़ों पे दाग तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इनका स्ट्रेस नहीं लेता क्योंकि मेरे घर में है सफाई का एक्सपर्ट तनमन डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया। जाग ही जाग, सफाई बेदाग, तनमन है तो कपड़े साफ ही रहेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब वक्त है कार्यक्रम संध्या वंदन का।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संध्या वंदन। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है, शाम के 7 बजने वाले हैं। तो आइए श्रोताओं, अब जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से और सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे।

0: संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 सप्ताह का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
0: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, छात्र मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन समझौतों में से एक के अंतर्गत चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक प्रौद्योगिकी आधारित पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद और ऑस्ट्रेलिया के रीबाउंड संस्था के सहयोग से लागू की जाएगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर में प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। केरल में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की परिकल्पना से प्रेरित सोल्जर थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं की 78 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। अभी आप समाचार सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से और अब वक्त है संदेशों का।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मैं अजय देवगन, मेरे कपड़ों पे दाग तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इनका स्ट्रेस नहीं लेता, क्योंकि मेरे घर में है सफाई का एक्सपर्ट तनमन डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया। जाग ही जाग, सफाई बेदाग, तनमन है तो कपड़े साफ ही रहेंगे।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, 22 स्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून दिल की आरती
3: सुरीली संदली।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन। रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी

0: डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत।
1: पता है कौन दे रहा है? ब्याज कितना है?
2: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
2: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। अगले 100 सप्ताह तक चलेगा अभियान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को नशा मुक्त मध्य प्रदेश की दिलाई शपथ। राज्यपाल ने नशा मुक्ति अभियान में जन भागीदारी का किया आह्वान। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल, सभी तैयारियां पूरी और प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर हल्का रहने की संभावना। 4 और 5 अगस्त से मॉनसून फिर होगा सक्रिय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और अगले 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब देश का युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। उन्होंने परिवारों से बच्चों के साथ खुलकर संवाद करने और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों और पुनर्वास केंद्रों की मदद लेने की अपील की।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के मिनट में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से इस अभियान में शिरकत की। उन्होंने उपस्थित युवाओं व नागरिकों को नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री ने सभी से हर प्रकार के नशे से दूर रहने और स्वस्थ, जागरूक व सशक्त समाज के निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
2: ये एक विभाग का काम नहीं, ये समूचे समाज का काम और खास करके आप सब पढ़े लिखे युवाओं से इस बारे में अपेक्षा की जा सकती है कि हमारे प्रदेश को, हमारे देश को नशा मुक्त करना है तो निश्चित रूप से हमको ठोस कदम उठाना पड़ेंगे, मन का संकल्प भी कड़ा करना पड़ेगा। आज नियंत्रण करते हैं, निश्चित रूप से इस युद्ध में हम जीतेंगे। भारत सरकार की ओर से 2029 तक सभी प्रकार के नशों से मुक्त करने का संकल्प लिया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ के अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया। उन्होंने उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और कहा कि अभियान की सफलता के लिए हर व्यक्ति, परिवार और समाज की भागीदारी जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज सभी को नुकसान पहुंचाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 5 अगस्त तक ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। दौरे के पहले दिन वे कटक के जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति भुवनेश्वर, बरहामपुर और तप्तपानी में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी और मां कंधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल जिले के बेरसिया में लगभग 50 करोड़ की लागत से बने शासकीय सांदीपनी ठाकुर लाल सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांदीपनी विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के साथ भारतीय शिक्षा परंपरा का समन्वय किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। राजधानी भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक ब्रिक्स देशों का संस्कृति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। इस दौरान संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी और रविंद्र भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल जनजाति संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, वन विहार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का भी भ्रमण करेगा। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती से शुरू होगी, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। इसके लिए 20 काउंटिंग टेबल बनाई गई है और करीब 350 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मीडिया के लिए भी अलग से मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहाँ मतगणना की ताज़ा जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित 84 महादेव दर्शन यात्रा का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर यादव ने कहा कि यह यात्रा श्रद्धा, साधना और सनातन परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान शिव समरसता, करुणा और लोक कल्याण के प्रतीक हैं। वहीं कल श्रावण मास के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल चंद्र मौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे। सवारी शाम 4 बजे महाकाल मंदिर से शुरू होकर रामघाट पहुंचेगी, जहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती होगी। इसके बाद सवारी विभिन्न मार्गों से होते हुए शाम करीब 7 बजे मंदिर लौटेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के विद्योदय तीर्थ में आचार्य श्री 108 समय सागर महाराज के चतुर्मास कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एक दिन का विधानसभा सत्र आयोजित कर आचार्य श्री को प्रवचन के लिए आमंत्रित करेगी, ताकि जनप्रतिनिधि और अधिकारी उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार गौ संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर आचार्य श्री समय सागर महाराज ने कहा कि अहिंसा, दया और परोपकार ही मानवता का सच्चा धर्म है। इंदौर में राजस्थान के जैसलमेर सड़क हादसे में शहीद हुए मेजर हमजा आरिफ को आज पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ उनके सेफी नगर स्थित घर लाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अंतिम दर्शन किए। इसके बाद पूरे सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। इमली बाजार कब्रिस्तान में सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। मेजर हमजा आरिफ की 1 महीने पहले ही शादी हुई थी और जैसलमेर में सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था। अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर हल्का रहने की संभावना है। हालांकि 4 और 5 अगस्त से मॉनसून फिर सक्रिय होगा। इसके बाद प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 4 अगस्त को छतरपुर, पन्ना, सतना, सीधी और शहडोल समेत कई जिलों में, जबकि 5 अगस्त को रीवा, मऊगंज, टीकमगढ़ और निवाड़ी सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 10वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 पदक जीते। इनमें बॉक्सिंग के 10 पदक शामिल हैं, जिनमें 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक हैं। एथलेटिक्स में सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जुयाल और प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक जीते। सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने ट्रिपल जंप में कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रदर्शन के बाद भारत के कुल 39 पदक हो गए हैं, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बैतूल जिला मुख्यालय पर कल 3 अगस्त को कृषि उपज मंडी बडोरा में महोत्सव आयोजित होगा। मंदसौर कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने शहर में निर्माणाधीन विकास कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। आगरमालवा कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीना ने कल जिले के सालरिया स्थित कामधेनु गो अभ्यारण्य में गो शेडो एवं भूसा भंडार गृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नर्मदापुरम जिले में दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष अभियान को तेज कर दिया है। पिछले 10 दिनों में 57 नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: Akashwadi at 90.
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मैं अजय देवगन, मेरे कपड़ों पे दाग तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इनका स्ट्रेस नहीं लेता, क्योंकि मेरे घर में है सफाई का एक्सपर्ट तनमन डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया। जाग ही जाग, सफाई बेदाग, तनमन है तो कपड़े साफ ही रहेंगे।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, 22 की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून दिल की आरती
3: सुरीली संदली।

अब हम शुरू करते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। जो कार्यक्रम भैया रो आज हम लेके आए हैं, आज को विषय हम आपको बता दें, आज को विषय खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य। विशेषज्ञ हमारे आज के हैं डॉक्टर

0: अमरजीत सिंह जो कि स्टूडियो में मौजूद हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार आपको भी।
0: किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं ये सजीव फोनिंग कार्यक्रम है। आप टेलीफोन नंबर नोट कर लें, भोपाल का एसटीडी कोड 0755 टेलीफोन नंबर है 2660902। आप टेलीफोन लगाएं और हमारे जो आज के विशेषज्ञ हैं उनसे विषय से संबंधित आप सवाल करें। खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य, ये हमारा आज का विषय है। और जैसा कि हमें संकेत मिल रहा है, किसान भाई लाइन पर है, उनका टेलीफोन ले लेते हैं हम। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, शुभ नाम बताएं अपना। हाँ जी,
2: हेलो
0: जी, आप शुभ नाम बताएं और आप ये भी बताएं कि क्या सवाल है आपका आज का।
2: नेत्राम खोजा बोल रहा कुड़िया।
0: नेत्राम खोजा।
2: हाँ जी
0: नेत्राम जी, आप जिले का नाम बताएंगे अपने, जगह का नाम। जगह का नाम बताएं, कहां से, किस जिले से लगाया आपने फोन।
2: हम लगाए नेत्राम खोजर कोठिया।
0: ये किस जिले में पड़ता है
2: जी?
0: डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जिला कौन सा है, राज्य कौन
2: नहीं पड़ रहा।
0: अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपना शुभ नाम आपने बता दिया नेत्राम जी, आपका सवाल क्या है?
2: आपकी आवाज नहीं आ रही।
0: आवाज हमारी नहीं आ रही, आपकी तो आवाज बड़ी आ रही है हम तक। अब आ रही है? हाँ, तो अब आप बताएं कि आपका सवाल क्या है। आप अपने रेडियो की आवाज कम करिए पहले।
2: नहीं रेडियो से हम दूर है।
0: दूर है, हाँ तो अब आप सवाल पूछिए।
2: सवाल यह है जी, मैंने लगाए थे भटा मटा के पेड़ जी।
0: हाँ
2: तो वे भटा के पेड़ सूख रहे हैं,
0: बता रहे हैं डॉक्टर साहब।
1: हाँ बिल्कुल, आपने जो कहा बैगन टमाटर और ये तो भटा बैगन जिसको बोलते हैं, ये जहाँ पर नमी की मात्रा थोड़ा अधिक हो या पानी लग रहा होगा वहाँ नीचे से ऊपर तक पौधा सूख जाता है। कभी कभी कीड़ा काट देता है जड़ को, एक जो जिसका सिर भूरा और शरीर सफ़ेद होता है, तो देख लीजिए अचानक अगर सूखा है तो कीड़ा ने काटा है, नहीं तो पानी लगने से या अधिक नमी होने से ये सूखता है। तो ये दोनों परिस्थिति में अगर धीरे धीरे करके सूखा है तो एक फफूंद नाशक का पानी का जल निकास अच्छा कर लें और एक फफूंद नाशक थायरम या बेबिस्टिन का घोल बना करके छिड़काव कर दें।
0: तो नेत्राम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया और जानकारी ली। और हो सकता है यही समस्या हमारे जो दूसरे किसान भाई है उनकी उन्होंने जो बैगन लगा रखे हैं उनमें भी आए, तो ज़रूर जो है जो दवाई डॉक्टर साहब ने जो नुस्खा बताया है उसका आप उपयोग करें। अच्छा डॉक्टर सिंह साहब, इस समय फसलों की क्या स्थिति चल रही है?
1: देखिए आपने अच्छा भाई, इस समय अगर देखा जाए तो अपना मध्य प्रदेश खरीफ फसलों में और मुख्य तौर से सोयाबीन तो खड़ी ही है, बहुत एरिया में क्षेत्रों में लगाया जाता है, लेकिन धान है, मक्का है, ज्वार है, अरहर है और खरीफ में मूंग उड़द भी लोग लगाते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ बहुत दिनों के बाद वर्षा हुई है उसमें जान आ गई है और बढ़वार अच्छी हो रही है।
0: बढ़वार अच्छी हो रही है। डॉक्टर साहब मैं आपको रोक रहा हूँ, हमारी बातचीत जारी रहेगी। एक किसान भाई है लाइन पर, हम बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
3: हाँ जी नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: जी आप शुभ नाम बता दें, स्थान बता दें, फिर आप सवाल करें।
3: निगरम और जामा जिला सागर मध्य प्रदेश से विभिन्न कटारे बात कर रहा हूँ सर।
0: कटारे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल करें।
3: जी सर, मक्का के बारे में जानना चाह रहे थे कि जो मक्का में खाद देने का कार्य चल रहा है तो यूरिया के अलावा और कौन कौन से खाद हम दे सकते हैं, और क्या अलग अलग देने चाहिए या फिर यूरिया में मिला के भी दे सकते हैं?
1: नहीं बहुत बढ़िया कह रहे हैं। और मक्का में देखिए यूरिया तो शुरू में देना ही है, 20-25 दिन का अगर मक्का हो गई है तो यूरिया देते हैं और 2-3 किस्तों में देते हैं, जो भी सिफारिश की गई है मात्रा उसको 2-3 भागों में बांट देना चाहिए। और एक निदाई अगर निदा अधिक दिखाई दे रहे हैं तो जो बड़े बड़े निदे हैं तो इस समय अब डोरा चलाना तो मुश्किल है, लेकिन आप हाथ से निकाल करके यूरिया का ही एक छिड़काव करें और कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है।
0: तो इस तरह से विपिन जी आप जो है उपयोग करें। और जैसे कि विपिन जी ने पूछा, इसके अलावा जो देसी जो हमारी खादें हैं उनका उपयोग भी कर सकते हैं ना?
1: नहीं देखिए देसी खाद तो हर जगह कभी भी उपयोग करें, और अच्छा। देसी खाद बुआई के समय करेंगे तो सबसे अच्छा उपयुक्त तो समय रहता है और सही उसकी उपयोगिता होती है। और जैविक खाद ये जो गोबर की खाद बना लें या कंपोस्ट खाद बनाएं या केचुए वाली खाद है वर्मी कंपोस्ट बना, ये सब बढ़िया है, लगा सकते हैं अगर डालते हैं तो सबसे बढ़िया, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इसकी मात्रा अधिक है।
0: किसान भाई लाइन पर है तो हम उनका टेलीफोन लेते हैं।
2: हेलो
0: जी नमस्कार, सजीव फोन इन कार्यक्रम, हेलो।

0: जी
1: सभा में
0: सर,
1: आपका फोन लग चुका है, आप अपना सवाल करें, नाम बताएं पहले।
0: जी सर, उमा शंकर पटेल बोल रहा हूँ, पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से।
1: उमा शंकर पटेल पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से। पटेल साहब आप सवाल करें।
0: सर सर मुझे ये जानना है कि एक तो मक्के के बारे में जानना है सर, कि वो मक्का थोड़ी बढ़ नहीं रही है सर, पता नहीं उसमें क्या हो गया है, मैंने खाद भी डाल दिया है। और एक एक सवाल हुआ है सर, कि मेरी जो बैगन है ना, बैगन में वो कीड़े कीड़े से लगते हैं, वो बड़ा वो भी नहीं बढ़ पा रहा है।
2: बिल्कुल, ये देखो दोनों चीज है, मक्का में जो आपने कहा खाद तो डाला है, लेकिन अभी जब भी खाद की बात हो रही है, गोबर की खाद है या केचुए वाली खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इसको डाले होते तो और अच्छा था, लेकिन आपने कौन कौन सी खाद डाला और उसमें असर नहीं हो रहा है। देखिए खड़ी फसल में तो इस समय हम जब भी खाद मिले तो उसकी मात्रा थोड़ा अधिक रहती है, और डालना पड़ा जाएगा तो कोई फायदा ही होगा, नुकसान ही होगा। जैविक खाद जो भी आपके पास है, और केचुए की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस समय बढ़वार नहीं हो रही है तो यूरिया को डालना जरूरी है। जो भी हमारी सिफारिश है उसको हम लोग कहते हैं कि दो तीन भागों में बांटना चाहिए, शुरू में 20-25 दिन पर डाल दें, निदाई निकाल करके फिर एक बार करके, और मिट्टी चढ़ा दें और पानी रुकने न दें। देखिए पानी बरसात की फसल है, पानी रोज सुबह शाम गिरे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पानी अगर खेत में रुकता है तो वो नुकसान करता है, तो ये इसका भी ध्यान रखते हुए इस समय में जो समझ रहा हूँ यूरिया का देंगे, वो भी डाल करके या मिट्टी चढ़ा दें तो और फायदेमंद है। बैगन में देखिए, बैगन अगर नर्सरी लगाए हैं तो दो तरह से, एक तो कीड़ा ऊपर से छेद कर देता है, जैसे कि हम लोग फली और छेदक कीड़ा के नाम से जानते हैं, ये भी ऊपर वाला भाग मुरझाता है, नीचे के पत्तियां बिल्कुल अच्छी रहती है लेकिन ऊपर के भाग मुरझा जाता है, लटक जाता है, तो उस समय आप देखेंगे तो वहां पर कीड़े का छेद दिखेगा, और ऐसी जगहों पर आप उस ग्रसित भाग को तोड़ करके अलग कर दें, बल्कि खेत में न छोड़ें, बाहर ले आकर के जमीन में दबा दें और खेत से बाहर रखें, और ऊपर से एक कीटनाशक का छिड़काव कर देंगे, चाहे जो भी आपके पास क्लोरपाइरीफास हो या क्लोरोनेंटरीप्रोले है दवा, वो नामों से बिकता है बाजार में, इनमें से कोई भी एक कीटनाशक का छिड़काव कर।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर पटेल जी, आपने सागर मध्य प्रदेश से टेलीफोन लगाया है, डॉक्टर साहब ने बखूबी आपके दोनों सवालों के जवाब दिए। अगले किसान भाई का हम टेलीफोन ले रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, आप शुभ नाम बताएं।
3: सर मैं दीपचंद साहू बोल रहा हूँ सर, ग्राम मन्नी टोला से।
1: साहू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल करें।
3: सर मैंने मिर्ची की फसल लगाई हुई है सर, तो उसमें कीड़ा काट रहे पूरे पत्ते में।
1: अच्छा, कितने दिन की फसल है?
3: आज तो 3 महीने हो गए सर वो।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है, 3 महीने की हो गई। यार इल्ली आपने देखा, इल्ली काट रही है, कुछ और देखा आपने कि नहीं? इल्ली देखा कि चलते फिरते हरी छोटी छोटी इल्लियां काट देती हैं उसे, या कभी कभी
3: फुद्दी लगी हुई है सर उसमें।
2: हाँ फुद्दी लगी है वही, तो देखिए इसमें तो मैं एक ही कहूंगा कि कीड़ा है, फूल फल आ रहे हैं अभी, तो आप एक कीटनाशक का उपयोग करें, और कीटनाशक में इस समय मैं कहूँगा बाजार में तो कई नाम से बिकती है, कंपनी का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन नोट कर लें, क्लोरेंट्रीनिलीप्रोले, ये 18.5 SC की आती है, बाजार में बहुत बढ़िया है, सभी लोग जानते हैं। अब केवल आपको समझने की बात है, किसान से वो दुकानदार से कहते दे देंगे वो, और इसको 100 से करीबन 150 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़काव कर रहा है, और पानी की मात्रा 500 लीटर प्रति हेक्टर रखें, गोल बनाकर छिड़क दे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी दवा है, अच्छी मतलब कीटनाशक है, और आदमियों को कम नुकसान करती है।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपचंद साहू जी, आपने टेलीफोन लगाया, और मिर्ची में जो कि कीट पतंगे लग रहे हैं, जो फुद्दी टाइप की जो चीजें बताई है वो लग रही हैं, तो उनका निदान डॉक्टर साहब ने बताया है, और धीरे धीरे और भी सवाल आएंगे कई तरह के, तो हमारे किसान भाइयों को जो है जागरूक रहना है इसके लिए, और फिर मिर्च ही नहीं बल्कि जो भी हमारी खरीफ की फसलें हैं इस समय लगी हुई है उनमें भी कई तरह की बाधियां हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा इस समय विशेष रूप से किन कीड़ों का प्रकोप हो रहा है?
2: देखिए अगर सब्जियां लगा रहे हैं तो ये तो इल्ली पत्ती भक्षक इली आप लोग पहचानते ही हैं, एक तना छेदक भी इली आती है, जैसे बैगन में आप समस्या बता रहे हैं सूख रही है, तो दो तरह की बात होती है। अगर पूरा तना पूरा पौधा सूख रहा है नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे पीले होकर के सूख रहा, तो ये मान के चलिए कि कोई ना कोई फफूंद का प्रभाव या बैक्टीरिया जिसको कि हम जीवाणु कहते हैं इसका असर होता है। और एक कभी कभी एक जिसको सफेद गिटार के नाम से जाती है वो जड़ को काट देती है, तो ये बारिश कम होती है और जमीन थोड़ी वो होती है तो उसमें ये प्रकोप बढ़ता है। तो ये कौन परिस्थिति है उसको देखते हुए यदि उसमें फफूंद जैसे लग रहा पानी अधिक हो गया है या पानी रुक गया है नमी की मात्रा अधिक है तो ये फफूंद का कारण हो सकता है या जीवाणु।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये फफूंद का कारण हो सकता है, अपन और चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक किसान भाई का हम टेलीफोन लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
4: अंबिका प्रसाद उपाध्याय, ग्राम रतौना, जिला सागर।
1: उपाध्याय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सजीव फोन इन कार्यक्रम ग्राम सभा में, आप सवाल करें।
4: क्या है कि मैंने सोयाबीन बोया था और एक महीना 8 दिन का हो गया है।
1: अच्छा सोयाबीन जी।
4: अच्छा 20 दिन में हमने कचड़ा मार दवाई डाल दी थी, तो जो जो चौड़ी पत्ती का है वो मुरझा तो गया था, फिर उसमें हो गई है, मैंने पलकन फिर आ गई है, तो अब क्या करें सर?
2: देखिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने, मैं यही कहना चाह रहा था कि इस समय सोयाबीन में बहुत दिनों के बाद जो बारिश हुई है तो उसमें बढ़वार हो रही है, अच्छी बढ़वार हो रही है। अब इस समय आप निदा नाशक की भी बात न करें क्योंकि एक महीने की फसल हो गई है, विपरीत असर पड़ता है। और दूसरी चीज है कि चूंकि बढ़वार हो रही है तो सोयाबीन खूब बढ़ने लगता है, छोटे छोटे जो नीदा है वो तो दब जाएंगे, लेकिन जो फसल से थोड़ी ऊंची ऊपर आ गई है, उसकी ऊंचाई से ऊपर आ गई है, उनको हाथ से निकालिए। हाथ से निकालने के बाद जो उसकी जड़ से जो मिट्टी है उसको झटक दीजिए, मतलब मिट्टी छुड़ा दीजिए झटक करके, और फिर अगला भाग जो मुलायम है उसको पैर से दबाते हुए और जड़ को ऊपर थोड़ा अपने आप हो जाएगा और दबा दीजिए। हर हालत में फायदेमंद है, अधिक बारिश होगी तो सड़ करके खाद का काम करेगी, कम बारिश होगी तो उसमें नमी बनी रहेगी, और तीसरी चीज है कि आपको अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल पत्ती के अंदर जो ये नीदा ऊपर आ गए हैं वो भी फसल से ऊपर है, उन्हीं को निकालिए और झटकिए, झटक करके मिट्टी एक तरफ कीजिए और दोनों नायलों के पक्तियों के बीच में उसको दबाते जाइए पैर से, तो हर हालत में कम बारिश में ये नमी को रोकेगी, अधिक बारिश में सड़ करके खाद का काम करेगी और फसल अपने आप छोटे पौधे नीदा को खरपतवार को दबा देगी। आप अधिक नीदा नाशक डालने की कोशिश न करें।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब ने ये बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि ज्यादा नीदा नाशक का उपयोग करना उचित नहीं है। एक किसान भाई लाइन पर है, फिर उनका टेलीफोन अपन लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
5: जी नमस्ते सर, प्रणाम करता हूँ, संतोष कुमार राव बात कर रहा था, आदिवासी बाहुल क्षेत्र उमरिया मध्य प्रदेश से।
1: संतोष कुमार जी सवाल करें आप।
5: जी सर, मेरा प्रश्न माननीय महोदय डॉक्टर साहब से ये रहा कि सर हमारे यहाँ जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यहाँ पे कोदो कुटकी की फसलें ज्यादातर लेते हैं, साथ में मकई और उड़द की फसलें ली जाती है। और सर से मेरा प्रश्न रहा कि जैसे हम लोग जैविक खादों का उपचार करते हैं सर, तो जैसे जो कोदो और कुटकी की फसलें होती है सर, ये उमतम अगर देखा जाए तो जो जैविक मतलब खाद होती है उसका उपचार करते हैं, और आपके अनुसार यदि हो सके तो इसके अलावा कोई खाद का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, कृपया बताने की जानकारी।
2: आपने बहुत बढ़िया चीज, आप बहुत जानकारी रखते हैं, तो जैविक खाद तो वही है, आपका गोबर की खाद है, केचुआ के बर्मी कंपोस्ट है, ये भी जैविक खाद है और बहुत बढ़िया काम करता है, बशर्ते हम तैयार करें, तैयार करके समय पर डाल दें। कोदो कुटकी खूब हम लोगों को उपयोग है और आज तो उसी का जमाना है, लोग 5-star होटलों में इसकी डिमांड कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छी चीज है, हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं पर पहले से हम लोग उपयोग कर रहे हैं, इसका फायदा तो गिनाने के कहेंगे तो बहुत फायदे फायदे हैं, तो आप उपयोग करें जैविक खाद। और देखिए ऐसे में अगर कीड़ा, एक तो इसमें कोदो कुटकी में कीड़े भी कम लगते हैं, बीमारी भी कम लगती है, लेकिन अगर इस तरह की शिकायत होती है तो नीम की खली आती है उसको अगर खेत में डाल दें तो भी, नहीं तो नीम निमोली आप समझ रहे, नीम की बीज को पाउडर बना करके लोग बनाते हैं और 30-35 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से डाला है, पानी का घोल करीबन 500 लीटर पानी लगेगा प्रति हेक्टर, प्रति हेक्टर आप समझ रहे, एक हेक्टर में 2.5 एकड़ होता है या 5 बीघा होता है, तो समझने के लिए हम लोग हेक्टर की बात कर रहे हैं, हेक्टर का जमाना है, लेकिन इसको आप नीम मोली का पाउडर बना करके छिड़केंगे तो हर तरह से चूसने वाले कीड़े, पत्ती भक्षक कीड़े, अन्य चीजों का भी नियंत्रण होगा, तो उसका जरूर उपयोग करें। निमोली आप गांव में उस क्षेत्र में निमोली तो समझते हैं, निमोली बीज का होता है, पाउडर बना करके छिड़क के घोल बना करके, मात्रा वही है कि या तो 10 लीटर में 500 आधा किलो करीब घोल बना सकते हैं या मोटे

0: 30 किलो प्रति हेक्टर, 30-35 किलो हो जाए तो कोई नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। प्रति हेक्टर मतलब कि आप समझ रहे हैं कि एक एकड़ में कितना लगेगा, 16 किलो करीब लगेगा।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद संतोष कुमार राव साहब, आपने उमरिया मध्य प्रदेश से टेलीफोन लगाया। अगले किसान भाई का हम टेलीफोन ले रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं।
2: हेलो सर जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, आप शुभ नाम बताएं, अपना स्थान भी बता दें।
2: अशोक कमल नाम देव, ग्राम पोस्ट पापेट, तहसील सागर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बोल रहे सर जी।
1: अशोक जी सवाल क्या है आपका?
2: सर जी गिलकी की पौधे, मतलब गिलकी लगी है तो एक पीला पीला सा गोला गोला कीड़ा बैठता है तो पत्तों को काट देता है और बोलों को भी काट देता है सर जी।
1: अच्छा अच्छा,
0: बिल्कुल आपने देखा है, नजदीक से देखा है। इसको हम लोग फली से वो कहते हैं मक्खी फली, या अंग्रेजी में इसे फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। और ये जहाँ सबसे अच्छी वो है कि ये छोटे जो मुलायम लगते हैं फल, उसी में ये छेद कर देती है और वहाँ अंडा रखती है। अंडे से छोटे छोटी इलियां निकलती हैं, जो गंदी जगहों पर इली सफेद हल्के पीले रंग की होती है, ये वहां पर मिलती है, उसके कारण वो फल टेढ़ी हो जाते हैं। तो आप पहचान के लिए इसको हम फल मक्खी के नाम से जानते हैं। और इसका जो पौड़ होता है, अपने घर की घरेलू मक्खी जैसे है, घरेलू उसी समूह की उसी परिवार की है, लेकिन ये देखने में सुनहले रंग की होती है और अपने घर वाली काली होती है या गहरे नीले रंग की होती है, तो ये अलग है। और ये सुबह 8-10 बजे बहुत सक्रिय रहती है, उड़ करके चारों तरफ उड़ती रहती है। तो इसके अगर आप पहचान लें और ये है तो एक हम लोग कहते हैं कि यदि ऐसी जगहों पर आप नीम के जो हम बात कर रहे थे मूली पाउडर बना करके छिड़क देंगे तो शुरुआत में ये मक्खी दूर रहेगी, अंडे नहीं देगी और नुकसान नहीं होगा। यदि हो गया है तो हम 20 प्रलोभन बनाते हैं। एक 20 प्रलोभन मतलब मक्खी उससे आकर्षित होती है, पौड़ नर और मादा दोनों आकर्षित होते हैं और उसमें आकर के मर जाते थे। इसके लिए आपको 10 लीटर पानी में 1 किलो पुराना गुड़, गुड़ हो और पुराना हो तो और अच्छी बात है, तो 1 किलो गुड़ लगेगा और उसी में 50-100 ग्राम शीरा आता है, इसको मिल जाए तो और अच्छी बात है। और ये उसी में कोई भी कीटनाशक चाहे मेलाथियन हो या प्रोफेनोफास हो, इसको मिला करके 50 मिलीलीटर माने 50 ml, और इसको बना करके जगह जगह रख देंगे तो वो मादा जो पौर मादा है या नर है आकर्षित होंगे, वहां खाएंगे चाटेंगे और मर जाएंगे। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। और छिड़काव के लिए तो मैं कहूंगा कि कोई भी कीटनाशक इस अवस्था में जब फल लगने लगे तो नहीं करना चाहिए, यही जैविक विधियां ही अपनाना बहुत बढ़िया है। और नीम के तेल भी आता है बाजार में, उसको भी आप घोल बना करके एक छिड़काव कर देंगे तो ये आपको इतनी नीम की खल और पाउडर बनाने में तो जो परेशानी होती वो नहीं होगी। बाजार में 40-50 ऐसे प्रोडक्ट उपलब्ध है। 1 लीटर पानी में करीबन 3-5 मिलीलीटर मैंने ml दवा लगेगी और छिड़क दीजिए, बहुत बढ़िया नियंत्रण होगा। कई जगहों पर लोग केला जो होता है ना पका हुआ केला, पूरा पका हुआ, उसको मसल करके जगह जगह रख दीजिए, उससे भी आकर्षित होती है। तो ऐसे मसल करके केले को उसमें कीटनाशक डाल दिया, कीटनाशक में इस समय जो भी खासतौर से मेलाथियन हो तो और अच्छी बात है। देखिए मेलाथियन मिल रहा है लेकिन कई नामों से बिक रहा है, या नहीं तो प्रोफेनोफास डाल दें या क्यूनारफास डाल दें।
1: तो बहुत बढ़िया जानकारी अशोक नामदेव जी आपके सवाल पर डॉक्टर साहब ने दी है। और कोशिश यही रहती है हमारी कि सवाल एक करने वाला हो लेकिन उसके फायदे अनेक किसान भाई उठाएं। तो बहुत सारी बातें जैविक उपाय जो है डॉक्टर साहब ने बताए और ये किसान भाई का हम टेलीफोन ले रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले निवेदन है आप अपने रेडियो की आवाज धीमी करेंगे।
3: हेलो।
1: हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है, आप अपने रेडियो की आवाज धीमी करें। और अब आप शुभ नाम बताएं अपना, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम नंदिनी पटेल है, मैं पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
1: नंदिनी पटेल जी पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से आपने टेलीफोन लगाया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खेती किसानी में क्या समस्या आ रही है इस समय?
3: हमारे यहाँ है ना, क्या बोलते हैं, वो सोयाबीन लगा उसमें कीड़े पड़ गए हैं तो उसकी दवाई बताइए।
1: सोयाबीन में कीड़े लग रहे हैं उनकी दवाई, बहुत ही सामयिक सवाल पूछा है आपने नंदिनी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं।
0: और सोयाबीन खेत में गए होंगे आप तो पत्ती खाने वाली इली है या रिंग बनाती है एक वो है या रस चूसने वाले कीड़े जो फुतुंगे उड़ते रहते हैं, तो कौन सा कीड़ा दिखा आपने? पत्ती खा रही है। तो देखिए मैं तो यही कहूंगा कि अभी सोयाबीन है और सबसे जैविक नियंत्रण की बात चल रही है, तो जैविक नियंत्रण का नाम कर ले और लिख ले तो और अच्छी बात है। बाजार में जैविक कीटनाशक भी मिल रहा है और नहीं तो खेतों में अगर चिड़ियों को बैठने के लिए जगह बना दे, खुटिया गाड़ दे जिसमें कि टहनियां बहुत हो और फसल से एक हाथ ऊंची हो, तो बहुत से चिड़िया बैठेगी उन इलियों को बिन बिन कर खा जाएगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक एक ये जो चिड़िया होती है ना, आप खेत में जाते हैं देखते हैं, बहुत भुजंगे मैना और ये गौरैया ये सब चिड़िया आती हैं और एक चिड़िया दिन भर में 40-45 इली खा जाती है। तो ये करके देखें, नहीं तो बाजार में जैविक कीटनाशक जिसको कि हम लोग बीटी के नाम से भी जानते हैं या ब्यूबेरिया आधारित जो जैविक कीटनाशक उसका करते हैं, ये दो रूप में पाउडर में भी मिलता है और द्रव में भी मिलता है। तो एक किलो या एक लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़कना है और सोयाबीन अब बड़ी हो गई है तो 500 से 600 लीटर पानी लगेगा एक हेक्टर, माने एक हेक्टर का मतलब 5 बीघा, बीघा बहुत पुरानी बात है, एकड़ की बात करें तो 2.5 एकड़ लगता है। तो उस हिसाब से घोल तैयार करके इसको एक छिड़काव कर देंगे तो शुरुआती में जो छोटी छोटी इलियां हैं उन रोगग्रसित हो जाएंगी और मर जाएंगे और नुकसान कम होगा। और रासायनिक नियंत्रण के तो अभी हम पक्ष में नहीं है, ये शुरू में जैविक नियंत्रण ही करें।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद, नंदिनी पटेल ने टेलीफोन लगाया और डॉक्टर साहब आपने भी बहुत बढ़िया जानकारी दी। और जैसे कि हमें संकेत मिल रहा है अगले किसान भाई लाइन पर है, चलिए उनका टेलीफोन लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप शुभ नाम बताएं।
4: जयराम जी साहब।
1: जयराम जी की आप अपना शुभ नाम बताएं।
4: जगत सिंह चड़ार, ग्राम पेपलिया वराई, तहसील बेगवन, जिला राय से।
1: चड़ार साहब क्या सवाल है अपना?
4: सोयाबीन फूलगांव है
1: जी। हाँ हाँ।
4: और ऐसी कोई सी दवाई है कि अच्छे एकदम पूरा फूल जाए?
0: नहीं देखिए, ये बहुत प्रतिक्रिया जो आपने शुरू में कर दिया है, सोयाबीन अच्छी बढ़वार हो रही है और फूल आ गया है, तो जो भी आपने शुरू में जो भी खाद डाला है या जैविक खाद डाला है वही काम करेगा। अब अलग से कोई टैनिक या इस तरह की छिड़काव करने की बात न करें, वही ताकत में फूल अच्छे आएंगे और वही फूल में अच्छे फल लगेंगे, फलियाँ लगेंगी। और अब केवल आपका ध्यान जाना चाहिए कि कोई इली न नुकसान करे, पत्ती भक्षक इली कभी कभी पत्ती खाने के छोड़ करके फलियों खाना शुरू कर देती है। आपने हरी अर्धकुंडलक इली, नाम जैसा नाम है हरी होती है, आधा कुंडली बना के चलती है, ये बहुत नुकसान करती है, पत्ती खा करके छोड़ करके फूल को भी खाने लगती है और आप लोग भी पहचानते हैं इसी इली को कुंडली बनाकर चलती है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें तो पहले ही कहा कि एक देखिए कहने में तो बहुत हल्का लगता है, किसान भाई इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि चिड़ियों को बैठने के लिए जगह बनाएं, खुटिया लगाएं, अंग्रेजी का टी अगर समझते हैं तो उस तरह से, नहीं तो साधारण खुटी लगाएं जिसमें टहनियां हो और फसल से एक हाथ ऊंची हो, इसमें बहुत चिड़िया आकर के बैठेंगी। आप भी देखे होंगे खेतों में बहुत से बकुले मैना काली भुजंग ये गौरैया सब खूब चहल पहल करती है केवल इली पकड़ने के लिए, तो उनको जगह मिलेगी बैठकर खाने के लिए और वो खुटी पर बैठेंगी, इली पकड़ेंगी खाएंगी और फिर जाएंगी फिर पकड़ेंगी फिर खाएंगी। तो ऐसे हाँ बहुत बढ़िया है, करके देखिए बहुत फायदा मिलेगा। और एक हेक्टर में देखिए, हेक्टर का जमाना में हेक्टर हेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो एक हेक्टर में 40-45 खुटी ऐसा जगह जगह दूरी पर गाड़ देंगे, बहुत बढ़िया नियंत्रण होगा। नहीं तो निदान ये कीटनाशक तो बाजार में बहुत है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर इली है, कई तरह की इली है, पत्ती भक्षक के अलावा चने की इली भी कभी कभी आ जाती है, हरी कुंडला भूरी हरी कुंडला की इली और कई तरह की इलियां खाती हैं, तो इनमें एक बाजार में उपलब्ध है जो चने को भी, चने की इली का नाम चने की इली है लेकिन ये सोयाबीन पर भी आ जाती है और फूल के समय आती है, फलियां बनते हो, इमामेक्टिन बेंजोएट, ये रासायनिक है। अंत में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सब करने के बाद भी आप चाहते हैं कि छिड़कना है तो ये इमामेक्टिन बेंजोएट के नाम से आता, लिख लिया इमामेक्टिन बेंजोएट 5SWSG का, एक दानेदार रूप में आती है, तो 180 ग्राम या 200 ग्राम बहुत हो जाएगा, 180 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से पानी

0: पानी है तो पानी में वो जो हम छिड़कते हैं ना वहां कंजूसी कर जाते हैं। पानी बहुत अरे साहब ये तो बहुत पानी लग बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने करके देखा है कि बढ़वार अच्छी हो गई है तो 600-800 लीटर पानी लग जाता है एक हेक्टर मतलब 2.5 एकड़ में, और 5 बीघा करीब हुआ, और नहीं बढ़वार कम है तो 500 लीटर भी पानी कम से कम लगता ही है सोयाबीन में।
1: बिल्कुल सही बात है। तो काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई डॉक्टर साहब, आपने विस्तार से जो है हमारे जो श्रोता थे अभी चिड़ार साहब जिन्होंने टेलीफोन लगाया था उनको आपने विस्तार से जानकारी दी, और होना भी यही चाहिए, हर श्रोता यही चाहता है कि उनकी जो है जो भी समस्याएं दूर हो, क्योंकि वक्त काफ़ी कम है, चलते चलते 2 सेंटेंस में आप हमारे किसान भाइयों को सामूहिक तौर पर जागरूक जरूर करें।
0: देखिए सोयाबीन अपनी मुख्य फसल है, सोयाबीन प्रदेश के नाम से जानते हैं, और सोयाबीन में अब फूल आने लगे हैं, तो कोई भी इस तरह के निदा नाशक की तो बात ही नहीं करें, बहुत निदा हो गए हैं तो हाथ से निकाल करके वही 2 पंक्तियों के बीच में दबा दें। तीसरी बात कि सीधे कोई भी छिड़काव करेंगे तो फूल पर असर पड़ता है, तो फूल को बचाएं और अलग से कोई भी टॉनिक या इस तरह की चीज डालने की जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल सही बात है। तो किसान भाइयों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि और फिर इस समय जो है खास तौर से अगर आपको खरपतवार नियंत्रण करना है तो जो डॉक्टर साहब ने जो भी उपाय बताए हैं वो उपाय जरूर करें, उससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपको जो है खरपतवार का नियंत्रण होगा, दूसरा जो है वो खाद का काम भी करेंगे। डॉक्टर साहब काफी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, स्टूडियोज में आए, हमारे श्रोताओं को आपने बखूबी जवाब दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बात को सुना।
1: जो किसान भाइयों ये तो था हमारा आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, विषय हमने रखा था खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य, विशेषज्ञ थे डॉक्टर कंवर जी सिंह, इस कार्यक्रम का संयोजन किया था चंद्रशेखर शर्मा ने, अब महेश सोनी को दिया गया नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा आकाशवाणी भोपाल से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जन भागीदारी से नशा मुक्त युवा और विकसित भारत के संकल्प पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी में उप महानिदेशक आनंद प्रकाश तिवारी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशीत कुमार।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद प्रकाश तिवारी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से। तिवारी सर, आपका स्वागत है।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: जैसा कि हमने सुना प्रधानमंत्री जी को, आज की एक नशा मुक्त अभियान उन्होंने शुरू किया है और ये एक बहुत बड़ा संदेश आज के युवाओं को, खास करके जेन जी को उन्होंने दिया है। कैसे देखते हैं इसे आप?
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नशा मुक्त भारत का संकल्प लगातार दिया जाता रहा है, आज भी प्रधानमंत्री जी ने दिया है और हम सभी

0: लोग इस लक्ष्य के लिए समर्पित हैं। वस्तुतः भारत के लिए सबसे बड़ा कार्य और कार्यक्रम यदि हम कहें तो नशा मुक्त भारत बनाने के संकल्प को सजोना, जीना और पूरा करना है। वजह यह है कि अगर हमारा भारत नशा मुक्त नहीं होगा तो स्वस्थ नहीं होगा, और अगर स्वस्थ नहीं होगा तो ऐसे विकसित भारत को भी लेकर हम सभी भारतवासी क्या करेंगे। तो पूरे भारतवासी इस संकल्प को जिए, और हम लोग चूंकि सरकार के कार्य को कर रहे हैं तो हम सभी लोग इसे पूरी तन्मयता से जन भागीदारी के साथ लगातार करें। मेरा तो यही विचार है और मेरा यही विश्वास है, और हम लोग इसी के लिए कार्य भी कर रहे हैं।
1: जी तिवारी जी, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। और प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाओं के बारे में बताया है, खास करके अलग अलग हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी एक है कि 100 हफ्ते तक हर रविवार को सुबह में एक शॉर्ट टर्म अवेयरनेस ड्राइव जो पहले चलता था उससे हटकर ये एक हर हफ्ते एक सतत रूप से एक अभियान चलाया गया है, जहां पर कि युवाओं का आह्वान किया गया है कि वो कुछ न कुछ एक्टिविटी ऐसी करें जिससे कि उनका जो नशा के प्रति अगर किसी भी प्रकार का अगर उनका झुकाव हो रहा है तो उससे वो हट सके। इससे पहले कि आप बताएं इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप्स।
1: तिवारी जी कैसे देखते हैं इसे आप?
0: ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया एक बड़ा आह्वान है, और मुझे लगता है कि जो हमारी रचना धर्मिता है, जो हमारी सृजनशीलता है, जो हमारी कलात्मक प्रतिभाएं हैं, वो एक सकारात्मकता समाज को, मन को, व्यक्ति को, सबको जो है प्रदान करती है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने व्यक्ति की सकारात्मक प्रतिभा को बाहर ला करके और एक सकारात्मक विचार और सकारात्मक समाज बनाने के लिए आह्वान किया है। जो भी शिक्षण संस्थान हैं, जो हमारे युवक हैं, हम सभी लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, हम सभी लोग जरूर इस आह्वान को जीवंत करने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम इस अभियान को ज्यादा बड़ा बना सके, इसे जीवंत कर सके, इसे इसके वास्तविक मूर्त रूप तक ले जा सके, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहा है।
1: जी तिवारी जी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम इस आह्वान में देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने एक मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन की बात की है, जो कि इस अभियान को और भी ज्यादा बल और गति देगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, सिविल सोसाइटी है, इंडस्ट्री बॉडीज हैं, और 125 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन वो साथ में आएंगे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे देखते हैं इसे?
0: माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अलोंग विद कंप्लीट सोसाइटी का सपना सामने रखा है, और अभी नशा मुक्त भारत के लिए आपने देखा होगा कि 26 जून को माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट भी जो है रिलीज किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो लक्ष्य और उद्देश्य है नशा मुक्त भारत, उसे प्राप्त करने के लिए जितने भी संबंधित विभाग है, हमारा समाज, शिक्षण संस्थान, युवा, अलग अलग मंत्रालय और स्वयंसेवी संस्थाएं, साथ में जो सांस्कृतिक सामाजिक संगठन हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ऐसे सभी लोग जिनका समाज में किसी न किसी रूप में, क्षेत्र में, किसी कार्य में प्रभाव है, उन सभी को जोड़ करके एक सामूहिक भागीदारी के साथ हम लोगों ने एक संकल्प पत्र, एक रोड मैप स्पष्ट लक्ष्यों के साथ जारी किया, जिसमें बड़े स्पष्ट लक्ष्य दिए गए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको लेकर के, सबको जोड़ करके चलने के लिए आह्वान किया। और अगर हम देखें तो लगातार पिछले कुछ समय में तमाम ऐसी आवश्यकताएं सामने दृष्टिगोचर हुई हैं, जिसको दृष्टिगत करते हुए समाज में हमारा यह संकल्प और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम सभी लोगों के लिए एक उद्देश्य बड़ा समीचीन है। और इसे न केवल हम स्वस्थ युवा के रूप में देखें, स्वस्थ भारत के रूप में देखें, इसके बड़े दीर्घकालिक जो है आयाम है, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी है, सांस्कृतिक रूप से राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है, इसमें सभी लोगों को जोड़कर सामूहिक भागीदारी का भी भाव है और इसमें एक संकल्पित सक्षम और स्वस्थ युवा को आगे बढ़ाने का लक्ष्य निहित है। तो मुझे लगता है कि ये सभी लोग मिलकर करेंगे और ऑलरेडी अगर हम देखें तो हम लोगों ने इस पर कार्य प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप प्रारंभ भी किया है और आगे हम इसे और उनके सपनों और उनके लक्ष्यों तक प्राप्त करने और पहुंचने का प्रयास करेंगे।
1: आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इस मौके पर क्या कहा।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: तिवारी जी, हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने युवाओं का बड़ा आह्वान किया है कि कैसे ड्रग्स से, नशीले पदार्थों से अलग रहना। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस दिशा में क्या काम कर रहा है?
0: हम लोग राष्ट्र में सभी को जोड़ करके नशा मुक्त भारत को बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं और अभी जैसा कि हमने आपको बोला कि नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 अभी हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी के हाथों से उसका विमोचन देखा है और उसमें जो लक्ष्य है, सभी लोगों को जोड़ना है, सभी राज्यों को जोड़ना है, समाज के हर अंग को जोड़ना है, हम सभी विद्यालय को लेकर, सभी समूहों को लेकर, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, शिक्षा मंत्रालय के साथ, अगर आप देखेंगे तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड अन्य सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर के एक नोडल एजेंसी के रूप में राज्यों के साथ हम सहभागिता और उनके द्वारा एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ हम लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। एनसीबी एक नोडल के रूप में काम कर रही है और एनसीबी के लक्ष्य स्पष्ट है कि नशा मुक्त भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करना है और हम गृह मंत्रालय की एजेंसी के रूप में राज्यों से कोऑर्डिनेट करते हुए, सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए हम लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हमने 3 वर्ष में एक स्पष्ट योजना और रूपरेखा सामने रखी है और इस योजना को प्राप्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संदेश है उसके साथ हमारा जो काम करने का प्रयास है उसमें और गति आएगी।
1: जी तिवारी जी, प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, कल्चरल आर्ट्स, स्ट्रीट प्ले जिसे नुक्कड़ नाटक भी कहते हैं, ये सारी चीजों को उन्होंने समावेशित किया अपने भाषण में ताकि युवाओं को नशे से अलग रखा जा सके। हम यहाँ ये समझना चाहेंगे तिवारी जी कि जो युवा इस नशे के लत में पड़ चुके हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए और इसके अलावा क्या किया जा सकता है और आपकी एजेंसी क्या कर रही है इस दिशा में?
0: सरकार ने एक नए दृष्टिकोण से कार्य किया है और विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच आप इसे कह सकते हैं, कानून में बदलाव पर भी कार्य किया जा रहा है, साथ में पूरे भारत में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना अगर देखेंगे तो उसका जो स्टैंडर्ड है उसको बेहतर से बेहतर बनाना, जो लोग नशे के आदि हो चुके हैं वो जाएं, इसके लिए एक सशक्त अभियान को आगे बढ़ाना, राज्यों की और केंद्र की सामूहिक भागीदारी से इसे पूरा करना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस दोनों इस पर कार्य कर रहे हैं। हम यह भी तय कर रहे हैं कि वहां पर जो लोग जाएं उनका सुधार हो और हमारा कानून का ढांचा कुछ इस प्रकार का बने जिससे कि उस सुधार को गति दी जा सके। तो न केवल आधारभूत संरचना में बदलाव बल्कि उसके नियामक प्रक्रियाओं में बदलाव, समाज की धारणा में बदलाव और शिक्षण संस्था और सभी जगहों पर मांग में कमी के लिए लगातार प्रचार प्रसार अभियान के द्वारा आमूल चूल परिवर्तन के लिए सरकार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है और इस दिशा में नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट के चारों जो स्तंभ हैं, इन चारों स्तंभों में सभी चीजों को संपूर्ण रूप से परिभाषित किया गया है और इस पर हम स्पष्ट लक्ष्य के साथ एक सुस्पष्ट समय सीमा के साथ कार्य कर रहे हैं जिससे यह एक निश्चित समय सीमा में हम लक्ष्यों को प्राप्त कर पूरा कर सकें।
1: तिवारी जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर का अगर कोई बच्चा नशे का शिकार बन गया है तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में उसके घर वाले इस चीज को छुपाते हैं और ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि परिवार वाले या उसके आसपास के जो लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, वो आगे बढ़कर इस चीज के लिए नहीं आते हैं। तो इसका प्रचार प्रसार, रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात करें या और भी कुछ ऐसे जो कार्यक्रम जो चला रही है सरकार, इसके बारे में प्रचार प्रसार के लिए और हम क्या कर सकते हैं?
0: इसके प्रचार प्रसार के लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि लगातार हमारे प्रचार प्रसार के माध्यमों में इस विषय की चर्चा करना और इस विषय से संबंधित विज्ञापन जारी करवाया जाना। दूसरा, शैक्षणिक संस्थाओं में इस पर लगातार चर्चा किया जाना। तीसरा, गांव पंचायत के स्तर पर और नगर पंचायत के स्तर पर भी जो हमारी संस्थाएं हैं उनको जोड़ना। पुरस्कार नीति को भी सामने ले आना, जैसे शिक्षा मित्र और जैसे इस प्रकार के तमाम जो है स्वास्थ्य मित्र हैं, इसी तरह से जो हमारे आशा कर्मी हैं और जो हमारे ग्राम पंचायत के स्तर पर हमारे कर्मी हैं उनको जोड़ना इस अभियान से। इसके अलावा परिवारों को जोड़ना, एक आंदोलन के रूप में NSS, NCC, आशा कर्मी और इस प्रकार के सभी लोगों को जोड़ते हुए एक सुस्पष्ट योजना के तहत इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी के मन में कोई विभ्रम की स्थिति ना रहे और लोग आए। नशा मुक्ति मित्र, हमारे माई भारत स्वयं सेवक, आशा कर्मी, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यानी कि पूरी तरह से ग्रास रूट लेवल तक जा करके लोगों को सजग करना, परिवारों को उसके लिए तैयार करना और मन के दुर्भाव को हटा करके हम उन्हें अपने स्वास्थ्य केंद्रों तक ले आए यह सुनिश्चित करना, यह हमने लक्ष्यों में रखा है। लगातार इस पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा हम अपने जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसके आधारभूत संरचना में उन्नयन का भी कार्य किया गया है और वो निरंतर जारी है, जिससे वहां पर उनको उचित और उन्नत सुविधा और चिकित्सा दी जा सके। तो यह एक पूरा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसमें न केवल सुधार है बल्कि सुधार के बाद मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, परिवर्तन, खेल और एक पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ डिजाइन किया हुआ एक ऐसा हमारा इकोसिस्टम है जिसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति, बच्चा, युवा जो अगर नशे का शिकार होता है तो वह 1930 पर कॉल करे। हमारे जो सामाजिक न्याय मंत्रालय की साइट है उस पर अप्रोच करे, NCB की मानस हेल्पलाइन पर अप्रोच करे और वहां से वह तुरंत सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है।
1: जी जी तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे जन भागीदारी से नशा मुक्त युवा और विकसित भारत के संकल्प पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB में उप महानिदेशक आनंद प्रकाश तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशीत कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
4: सुर्खियों में
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। प्रस्तुति है आकाशवाणी बैतूल की।

श्रोताओ, हमारा देश विविधतापूर्ण है। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा देखते ही बनती है। कल कल बहती नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पर्वत, घने वन और सुंदर वन्य जीव, इन्हीं के बीच बसे हैं हमारे वन ग्राम और वनवासी भाई बहन। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनजातीय आबादी वाला राज्य है। यहाँ 46 से अधिक अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। मुख्य जनजातियों में भील, गोंड, कोरकू, बैगा, सहारिया और भारिया प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में देश की जनजातीय जनसंख्या

0: लगभग 14.7% निवास करता है। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराएं और भाषाएं हैं। कर्मा नृत्य गोंड, बैगा, उराव जनजातियों का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। भील घरों की दीवारों पर पिथौरा चित्रकला एक पवित्र परंपरा है। जनजातियां प्रकृति पूजक होती हैं और वृक्षों के समूह में सरना देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो फसलों की रक्षा का प्रतीक है। हर त्योहार, विवाह और खुशी के मौके पर सामूहिक नृत्य करने का प्रचलन है। जनजातीय महिलाओं के लिए गोदना सौंदर्य और सामाजिक स्थिति का प्रतीक है। फसलों की कटाई के समय नई फसल को देवी देवताओं को समर्पित करने की परंपरा भी है। विभिन्न रंग बिरंगी पोशाकें और आभूषण इन्हें प्रिय होते हैं। जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए और इन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयासरत हैं। इसी तारतम्य में केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, और इस विषय पर आज हमारे साथ हैं श्री दुर्गादास उइके, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय मामले भारत सरकार। उइके साहब, आपका हम अपने आकाशवाणी केंद्र पर स्वागत करते हैं।
1: जी धन्यवाद।
0: जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि सभी वर्गों का विकास हो, उसी तारतम्य में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना लागू की गई है, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये योजना क्या है।
1: सर्वप्रथम तो सभी श्रोताओं का मैं अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। सौभाग्य है देश का कि देश का नेतृत्व यशस्वी और संवेदनशील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और आपका प्रश्न प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान से जुड़ा हुआ है।
0: जी,
1: तो मैं आपको बताऊं, यह अभियान जिसे अब धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के रूप में विस्तारित किया गया है। देश के दूरस्थ जनजाति गांवों में समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित करने का यह राष्ट्रीय मिशन है।
0: जी,
1: यह अभियान भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रेरणा से शुरू किया गया है, जिन्हें धरती आबा के रूप में समूचे भारतवर्ष में जनजाति समाज के भाई बहन उनको सम्मान देते हैं।
0: जी,
1: धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना चालू की, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। इसके माध्यम से हमारे जनजाति समाज के 63,843 गांव कवर होंगे।
0: जी,
1: 5 करोड़ से अधिक जनजाति समाज के हमारे भाई बहनों को इससे लाभ मिलेगा। यह केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि जनजाति समाज के जीवन स्तर को सुधारने का एक पावन पवित्र अभियान है, आत्मनिर्भरता का आंदोलन है, सम्मान और प्रगति का ये एक अवसर है, और इसके माध्यम से समूचे भारतवर्ष में लगभग 12.5 करोड़ भाई बहन हमारे रहते हैं, जिसपे उनके समग्र विकास की ये आधारशिला के रूप में ये योजना है।
0: उइके जी, इस अभियान के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से?
1: इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य, जैसे 100% जो बुनियादी सुविधाएं जनजाति समाज के भाई बहनों को मिलनी चाहिए।
0: जी,
1: यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सड़क है, बिजली है, पानी है, उनकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसका कैसे विस्तार हो, और उनके कौशल विकास के साथ में उनको रोजगार की उपलब्धता, उसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजाति समाज के युवाओं का कौशल विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी, पोषण और सामाजिक सुरक्षा, सरल शब्दों में यदि कहें तो हर जनजाति गांव विकास का केंद्र बने, यही यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है।
0: तो जैसा भी आपने बताया कि ये हमारे जनजाति भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास में इस अभियान का क्या योगदान है?
1: यह अभियान मूलतः जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, उनके गरीबी में कैसे कमी हम लाए, उनका कैसे समग्र विकास हो, स्थानीय स्तर पे कैसे रोजगार बढ़े, और रोजगार के निमित्त तो वो निकटवर्ती जिलों और प्रदेशों में पलायन करते थे
0: जी,
1: तो उनका पलायन कैसे रुके, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारने में यह अभियान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अनुमानित प्रभाव लगभग लाखों परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ, इसमें 63,845 गांव में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और जनजाति युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
0: जी, हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो ये एक ऐसा राज्य है जहां पर काफी जनजातियां निवास करती हैं, और हमारे बैतूल की बात करें तो यहां भी जनजाति बहुल ये जिला है। तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर यह योजना कितने जिलों में लागू की जाएगी?
1: पूरे देश में मध्य प्रदेश जो जनजाति जनसंख्या के मामले में अग्रणी राज्य है, यह अभियान मध्य प्रदेश के 51 जिलों के लगभग 267 विकास खंडों के 11,377 जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में चरणबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से इस अभियान को चलाया जा रहा है।
0: और बैतूल जिले की यदि हम बात करें तो इस अभियान की कितनी प्रगति हुई है?
1: मेरा अपना संसदीय क्षेत्र बैतूल हरसूद है और बैतूल जिले में इस अभियान के तहत लगभग चिन्हित 554 ग्रामों में 12,104 आवास स्वीकृत किए गए हैं। सभी ग्रामों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के द्वारा लगभग कार्य पूर्णता की ओर है। मध्य प्रदेश जल निगम परियोजना की लगभग 82 समूह जल प्रदाय योजना ये स्वीकृत है। 3,90,321 करीब ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं और 99 ग्रामों के विद्युत विहीन 617 घरों में विद्युत उपलब्ध कराई गई है। लगभग इसमें 40 करोड़ रुपए की लागत से 10 नवीन छात्रावास भवन स्वीकृत किए गए हैं और बैतूल में इस योजना के अंतर्गत लगातार प्रगति दर्ज की जा रही है।
0: उनके जी, बैतूल जिले में कितने लाभार्थी हैं जिनको पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान का लाभ दिया जा रहा है?
1: इस अभियान से बैतूल जिले में लगभग 4 लाख से अधिक ग्रामीण भाई बहनों को इससे लाभान्वित किया जा चुका है।
0: अभियान के तहत जनजाति गाँव में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे और ग्रामवासियों को कैसे प्रेरित किया जाएगा इसकी ओर आने के लिए?
1: इस अभियान के अंतर्गत मूलतः पक्की सड़कें कैसी बने, बिजली, सोलर व्यवस्था, जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आंगनवाड़ियां एवं स्कूल उन्नयन, आजीविका मिशन के तहत रोजगार, साथ ही ग्रामों को प्रशिक्षण, जागरूकता और सहभागिता के माध्यम से युद्ध स्तर पर प्रेरित किया जा रहा है।
0: और एक बात जो देखी जाती है कि हमारे ग्रामीण अंचलों में शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो बुनियादी आवश्यकता है, तो क्या इस अभियान के तहत ग्रामीण अंचलों को स्कूल और स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं उनको भी बेहतर बनाया जाए?
1: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में शिक्षा और स्वास्थ्य तो मुख्य केंद्र बिंदु है और इस अभियान के तहत भवन विहीन एवं जर्जर शालाओं के प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा भेजे गए हैं। 10 नवीन 100 सीटर छात्रावासों की स्वीकृति लगभग प्राप्त हो चुकी है। अर्थात छात्रावासों में आवश्यकता अनुरूप मरम्मत के कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही 23 छात्रावासों के अधीक्षक भवन निर्मित किए जा चुके हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास खंड स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता, भवनों का निर्माण और जो ऑफिशियल जो स्टाफ है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ उसकी भी उपलब्धता की दिशा में युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है।
0: ओके जी, एक और मुश्किल देखी जाती है कि जो हमारे जनजातीय भाई बहन रहते हैं वो कुछ पहुंच विहीन क्षेत्रों में भी निवास करते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए कुछ उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है? क्या पहुंच मार्ग बनवाए जाएंगे? किस तरह उनको विकास की ओर मोड़ा जाएगा?
1: आजादी के बाद तो लगभग 62 वर्षों तक जनजातीय क्षेत्र है उसको भी बहुत शीघ्र दूर करने की दिशा में केंद्र सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है।
0: ओके जी, एक अंतिम प्रश्न की ये जो महत्वाकांक्षी योजना चल रही है इसका लाभ लेने के लिए हमारे जनजातीय भाई बहन कितने उत्सुक होते हैं?
1: आपको विदित हो कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार हमारी बहन, हमारे परिवार की माता श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बना और जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विविध प्रकार की योजनाएं गतिशील है और खासतौर से जब यह अभियान के निमित्त आपका प्रश्न है तो यह अभियान केवल सरकारी योजना नहीं है
0: जी,
1: बल्कि यह जनजाति गौरव को पुनर्स्थापित करने का ये अनुपम, अद्वितीय और असाधारण प्रयास है। जब अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति आगे बढ़ेगा तभी भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र बनेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है, हम सब उसमें सम्मिलित है कि देश के 140 करोड़ भाई बहन मिलकर हम 2047 तक हमारे राष्ट्र को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और धन्यवाद। जय हिंद।
0: श्रोताओं, डगर विकास की इस कार्यक्रम में आज हमने प्रधान

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। विषय था प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। प्रस्तुति थी आकाशवाणी बैतूल की। प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण चौरे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका स्वागत है। सुनिए ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार। केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
3: आवाम की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
1: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
4: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
5: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
6: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
1: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
7: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
8: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल

0: तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षक क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
1: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो एरिना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी बांस और सैंडी थोम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi river recedes. Rainfall intensity decreases in Keralam, bringing relief to people. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight. Ahmedabad to receive baton at closing ceremony, marking India's formal transition as host of the centenary 2030 edition. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
3: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी

0: And Nasha Mukt Bharat is only and only baseline to get the goal of Vikasit Bharat. This is only urge to youth of the country. Let us join hand together and make Bharat as Nasha Mukt Bharat, Vikasit Bharat.
1: Thank you so very much, Mr. Tiwari, for having joined us and shared your views on the subject.
0: Thank you so much.
2: You were listening to a discussion on Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, a people's movement against drug abuse. The participants were Anand Prakash Tiwari, Deputy Director General, Narcotics Control Bureau, and Nishit Kumar, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: Spotlight.
4: ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आजाद हिंद फौज के गीतों की ऐतिहासिक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्ता पर केंद्रित रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर। शोध और आलेख वसुधा बैनर्जी, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर।
5: साल 1942, दूसरे विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी थी। भारत अब भी गुलाम था, लेकिन अपने वतन से हजारों मील दूर जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के अटलांटिक होटल में इतिहास एक नई करवट लेने वाला था। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद भारत के ख्वाब को पहली बार एक धुन मिली।

0: 11 सितंबर 1942। पहली बार जनगण मन के बुलंद स्वर यूरोप के ब्रास बैंड और स्ट्रिंग्स के साथ गूंजे। ये सिर्फ एक संगीत प्रस्तुति नहीं थी, ये उस मुल्क की आवाज थी जिसका जन्म अभी होना बाकी था। जलावतन भारतीयों के बीच यूरोप की धरती पर आजादी पहली बार सुरों में ढल रही थी। ये निर्वासन में जन्मी आजादी की एक ऐसी सिंफनी थी जिसने आगे चलकर करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ और तेज कर दी।
1: There was an orchestration done of the tune of Jana Gana Mana by the Hamburg Radio Orchestra.
0: Dr. Sugato Bose, Adhyaksh, Netaji Research Bureau.
1: It was played as India's national anthem for the first time at the inauguration of the Deutsche Indische Gesellschaft, which is the German Indian Society, on the 11th of September 1942. And it was a beautiful orchestration. It was beautifully played. And Netaji himself clearly interacted with the musicians and the conductor. We have a beautiful photograph in the Netaji Museum at Netaji Bhavan in Kolkata, which shows Netaji addressing the gathering in Hamburg. And behind him, we see the orchestra and the musicians with their musical instruments.
0: इसके कुछ ही महीनों बाद इतिहास ने एक और असाधारण अध्याय लिखा। जर्मनी से दक्षिण पूर्व एशिया तक करीब 90 दिनों की एक बेहद खुफिया और जोखिम भरी पनडुब्बी यात्रा और फिर 1943

0: समय सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर।
1: 3 जुलाई 1943 को जब नेताजी सिंगापुर पधारे, उस समय पूर्व एशिया में इतनी खुशी हुई कि तमाम पूर्व एशिया के रहने वाले 35 लाख हिंदुस्तानियों ने और आजाद हिंद फौज के जवान और सरानों ने गीत गा के उनका स्वागत किया। वो गीत क्या था

0: इस गीत को मुमताज हुसैन साहब ने लिखा और इसका स्वर मैंने दिया।
1: नेताजी जानते थे जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ी जाती, वो लोगों के दिलों और जहन में भी लड़ी जाती है, और वहां तक पहुंचने का सबसे असरदार रास्ता था संगीत। वो हौसला था और संघर्ष का एक सशक्त हथियार भी। 21 अक्टूबर 1943 आजाद हिंद की आरजी हुकूमत के ऐलान से ठीक पहले नेताजी ने आबिद हसन से कहा कि जनगण मन का एक हिंदुस्तानी रूप तैयार किया जाए। वो अपने सैनिकों से हिंदुस्तानी में बात करते थे, साथ ही तमिल में उसका समानांतर अनुवाद भी सुनाया जाता था। आबिद हसन ने मुमताज हुसैन से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के जनगण मन के 5 में से 3 पदों का हिंदुस्तानी रूप लिखवाया और कैप्टन राम सिंह ने उसकी धुन को सवारा, और इस तरह जन्म हुआ आरजी हुकूमत आजाद हिंद के कौमी तराने का।

0: प्रख्यात कवि और प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बताते हैं कि ये गीत किस तरह विविधता में एकता के उस भाव को स्वर देता है जिसकी बुनियाद पर नेताजी अपना भारत गढ़ना चाहते थे।
1: जो एक एकता की भावना है, आपसी मेलजोल है, वो बहुत मूल्यवान है। और हम देखते हैं ना, आजाद हिंद फौज के जो तीन नायकों पर जो मुकदमा चला, तो उसमें एक कर्नल सहगल, एक कर्नल ढिल्लन और एक जनरल शाहनवाज, तो एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान, तो ये भी एक अनूठी चीज है। तो उसमें जो एक पंक्तियां आती है वो भी मैं सुनाना चाहूंगा कि सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी वाणी, और हर सूबे के रहने वाले हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के सब गोद में तेरी आके गूंथे प्रेम की माला।
0: इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इतिहासकार और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर सुगतो बोस।
2: नेताजी जब आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर बने, उन्होंने बताया कि जो सब प्रोफेशनल सोल्जर थे आजाद हिंद फौज के, वो ज्यादा आए थे पंजाब से, लेकिन बहुत सिविलियन रिक्रूट आए थे तमिलनाडु से। सबको तो एक करके आजादी का जंग लड़ना है, इसीलिए उन्होंने बताया कि जो आईएनए ऑर्केस्ट्रा था वहाँ बहुत अच्छा एक लिरिसिस्ट था मुमताज हुसैन, और कैप्टन राम सिंह आईएनए ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर बना, वो एक साथ बहुत गाने बनाया। सबसे जो इंस्पायरिंग गीत था वो है कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा, वो जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तो एक साथ सब ये गाते गाते वो इंडो बर्मा फ्रंटियर पार होके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया इम्फाल।

गजलों को स्वरबद्ध करने की चुनौती जयदेव ने खूब निभाई। आइए एक के बाद एक जयदेव की स्वरबद्ध कुछ गजलें सुन लें।

गजलें हों या कविताएं, जयदेव की संगीत रचना का विस्तार हर विधा तक पहुंचा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के कुछ पद उन्होंने संगीतबद्ध किए, इन्हें गाया मन्ना डे ने।

0: धारे ना ना ना बीच धारे न जाओ शाम पैया परू बीच धारे न जाओ शाम पैया।
1: फिल्म घरौंदा की रचना जो साबित करती है कि आधुनिक ढंग के गीत बनाने में जयदेव पीछे नहीं थे।

जयदेव की संगीत रचनाएं हमें सुकून देती हैं, हमारे मन में शांति का एक राग छेड़ देती हैं ये संगीत रचनाएं।

0: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश कुखले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कितनी विराट है ये दुनिया, जाने कहां तक फैला है इस ब्रह्मांड का विस्तार। आसमान पर है तारों से जड़ी विशाल छतरी, दुनिया के इस असीम विस्तार के बाद भी अकेलेपन की धुंध घिरी है चारों तरफ। तन्हाई के इस शॉल को लपेटकर जाने कितने ठंडे मौसम बिता देते हैं अकेले लोग। अकेलेपन की दुनिया में नहीं होते शब्द, वहां नहीं होती मुस्कानें, वहां तो शायद सुर भी नहीं होते, वहां होता है बस सर्द सन्नाटा।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। अब वक्त है फिल्मी नगमों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए

0: बोलो ना कुछ तो।
1: फिर न कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात।

0: फिल्म संगीत का आनंद अभी आप उठा रहे थे श्रोताओं, ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, अब वक्त है समाचारों का। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे, और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुवाई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों